मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56.36 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।

0: सभी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देश भर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में NDA के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और

0: अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले दो दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संवेद सुर में गाए इस देश गान के साथ।

इस नश्वर संसार में एकमात्र ईश्वर ही है जो सर्वव्यापी है, सर्वमंगलकारी है, मंगल भाव व प्रेम का जनक है। प्रेम जो इस जगत का शाश्वत सत्य है, इसीलिए कहते हैं प्रेम ईश्वर का दूसरा रूप है।

0: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम वंदना। स्वर थे पंडित भीम सिंह जोशी, अनूप जलोटा और चित्रा सिंह की। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: विश्व में जितने महापुरुष, संत, महात्मा, सुधारक और युग निर्माता हुए हैं, उनका जीवन सादगी प्रधान रहा है। सादा जीवन और उच्च आदर्श सभ्य समाज के जीवन सूत्र समझे जाते हैं। सादगी से प्रायः तात्पर्य ऊपरी वेशभूषा और रहनी सहनी से होता है, परंतु ये ऊपरी स्वरूप तो आंतरिक सादगी के बिना संभव ही नहीं है। यदि भीतर और बाहर जीवन में सादगी नहीं है तो वो मिथ्याचार कहलाता है। सुख और संतोष प्राणी मात्र का लक्ष्य होता है, सादगी साधन है। हमारे युग में ही लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, न्यायमूर्ति रानाडे, महर्षि अरविंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन आदि महान विभूतियाँ सरलता और सादगी के आधार थे। सच पूछिए तो सादगी और महानता पर्यायवाची शब्द हैं। महात्मा गांधी के जीवन की एक घटना है। तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य के अमेरिका स्थित राजदूत लॉर्ड लोथियन महात्मा गांधी से मिलने वर्धा आश्रम में पधारे। गांधी जी से भेंट के उपरांत पत्रकारों ने लॉर्ड लोथियन से उनके विचार गांधी जी के विषय में पूछे। उनका उत्तर था, महात्मा गांधी ने सादगी को गौरव प्रदान किया और गरीबी को सौंदर्य। प्रातः स्मरणीय अवतार और विभूतियाँ ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य आदि मनसा वाचा कर्मणा सरल थे और सरलता का उन्होंने विश्व को मंत्र दिया। प्रभु ईसा मसीह के वाक्य सदैव प्रेरणा के सूत्र रहे हैं। बच्चों को मेरे पास आने दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हृदय वालों के लिए प्रभु के साम्राज्य में स्थान है। सादगी से समाज में आदर सम्मान तो मिलता ही है, साथ ही सुख शांति और प्रभु प्राप्ति का भी ये अचूक साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार, सूधे मन सूधे वचन, सूधी सब करतूत, तुलसी सूधी सकल विधि, रघुबर प्रेम प्रसूति। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने तो सादगी को ही सज्जनता कहा है। जानो सज्जन की यही एकमात्र पहचान, इनके होते तीन हैं मन वच कर्म समान। गुप्त जी की परिभाषा में तो सज्जनता का अर्थ ही है सादगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भगवान श्री राम के द्वारा शबरी को दिए नवधा भक्ति संदेश में सरलता को उच्च श्रेणी की भक्ति बताया है। नवम सरल सबते छलहीना। भक्त भगवान को सरलता से ही प्राप्त करता है। यही नहीं, दुनिया भी सरलता से ही मिलती है, छल कपट से नहीं। छल कपट से प्राप्त दुनिया टिकाऊ नहीं रह सकती। अंत में विजय सत्य की ही होती है। प्रायः देखा जाता है कि वर्तमान भौतिकवादी युग में इंसान सरलता को छोड़ पेचीदा होता जा रहा है। परिणाम में सुख और संतोष दूर होते जा रहे हैं। कृत्रिम जीवन में मिल ही क्या सकता है सिवाय दुख, दर्द, क्लेश और चिंताओं के। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार, जीवन में सुख और शांति संतोष की नाव द्वारा ही मिल सकती है। जीवन रूपी नाव को चलाने के लिए संतोष रूपी जल की आवश्यकता है। जिस प्रकार बिना

0: जल की नाव चलना मुश्किल है, उसी प्रकार बिना संतोष के जीवन में सुख दुर्लभ है। संतोष जीवन की एक स्थिति है जिसके लिए साधना की आवश्यकता है, और वो साधन है तन मन और वाणी की सरलता। सुख और संतोष शब्दकोश अथवा भाषण की वस्तु नहीं है, ये अनुभव साध्य हैं। इसके लिए दृढ़ आस्था और विश्वास की आवश्यकता है। सादगी में कितना सुख और कितना संतोष है, इसका अंदाज हम महापुरुषों की करनी और कथनी से सहज ही में लगा सकते हैं। कोपीनधारी गोस्वामी तुलसीदास जी के समक्ष धनद कुबेर भी दीन था। तीन टूक को पिन के और भाजी बिन नोन, रघुबर जाके उर्वसे इंद्र बापुरव कौन।
1: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम चिंतन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर में अर्थात सुबह 6:35 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं उत्तरा केलकर। खेती की बातें कार्यक्रम में सुबह 6:45 पर आर के सक्सेना की वार्ता प्रसारित की जाएगी। शीर्षक है शक्तिचलित कृषि यंत्रों के प्रयोग में सावधानियां।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर डॉक्टर दिव्या एस शर्मा की वार्ता प्रसारित की जाएगी, जिसका शीर्षक है दांतों की चमक कैसे बनाए रखें। सुबह 9:25 पर सुनेगा कार्यक्रम गांधी चर्चा। साथ ही सुबह 9:45 पर आनंद लीजिएगा लोक संगीत का। गायक कलाकार हैं उषा शर्मा।

फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी पर केंद्रित है कार्यक्रम आज के कलाकार, जिसे आप सुनेंगे दिन में 11 बजे। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर आधारित है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ कीर्ति, शीर्षक है सबके लिए सस्ती सुलभ न्याय व्यवस्था। दोपहर 1:15 पर घर संसार कार्यक्रम में चर्चा का विषय है न्याय सबका अधिकार। मेरी पहचान में बात होगी स्मृति मंधाना की। फैशन ब्यूटी चटपटी रेसिपी के साथ आनंद लीजिएगा रजिया खान के काव्य पाठ का। दोपहर 3 बजे नश्य किया जाएगा उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। सायंकालीन सभा में शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में चर्चा होगी एआई गवर्नेंस पर। जानकारी दी जाएगी अभिज्ञान ऐप डिजिटल्ड वीडियो जेनरेशन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर। साथ ही सुनेगा रागिनी उपाध्याय की वार्ता, शीर्षक है फेक न्यूज ऑनलाइन ट्रायल और न्याय का संकट। शाम 6 बजे ग्रामीण कार्यक्रम में चर्चा का विषय है ग्रीन इंडियन मिशन। लोकगीत मौसम मंडीभाव के साथ जानेगा नई किस्मों के बीज अनाजों सब्जियों और फलों के विषय में। साथ ही भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी जिसका शीर्षक है ध्यान की उन्नतशील खेती कैसे करें। शाम 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में चर्चा का विषय है बचाएं बच्चों का बचपन। ज्ञान

सेहत टिप्स आज की पाती और फिल्म संगीत के साथ सुनेगा विनोद कुमार अग्रवाल की वार्ता। शीर्षक है यातायात के नियम और सड़क सुरक्षा। विविधा कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा काव्य पाठ का गायक कलाकार हैं शीलेंद्र कुमार वशिष्ठ। महफिले कव्वाली सजेगी रात्रि 8 बजे और रात्रि 10 बजे फरमाइशी फिल्म में गीतों का कार्यक्रम होगा रजनीगंधा। साथ ही रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा गिटार वादन। ये था हमारी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं उत्तरा केलकर, संगीत सतीश भाटिया का।

श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर देखने निकले हैं। पुरवासियों ने जैसे ही ये समाचार पाया, फिर तो नारी पुरुष उन दो राजकुमारों की अनुपम छवि देखने ऐसे भागे जैसे खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। दोनों भाइयों के रूप को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि जीत ली हो। नगर किशोरियां उनके अद्भुत रूप को देखकर जैसे अपने को रोक नहीं पाती। ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो उस मनोहारी छवि को देखकर मोहित ना हो जाए। एक सखी महाराज दशरथ के पुत्रों को बाल राजहंसों का जोड़ा बताती है। श्याम शरीर तथा कमल जैसे नेत्रों वाले कौशल्या पुत्र राम हैं, और वो जिनका गौर वर्ण है किशोरावस्था वाले सौमित्र लक्ष्मण हैं। दोनों भाइयों ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु राक्षसों का वध किया है। श्री राम की छवि देखकर एक सखी के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता है, ये वर जानकी के योग्य है, राजा जनक यदि इन्हें देख लें तो अवश्य ही अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सीता का विवाह इनसे कर देंगे।

0: अभी आप सुन रही थी श्री रामचरितमानस का, गायक कलाकार थी उत्तरा केलकर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वार्ता। शीर्षक है शक्ति चलित कृषि यंत्रों के प्रयोग में सावधानियां। वार्ताकार हैं आर के सक्सेना।
1: किसान भाइयों, कृषि यंत्रों का प्रयोग कृषि कार्य को जल्दी से पूरा करने के लिए किया जाता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम दुर्घटना को निमंत्रण दें। दुर्घटना का अर्थ होता है नुकसान से, और नुकसान के लिए भला कौन समझदार व्यक्ति तैयार होगा। अतः यंत्र प्रयोग से पूरा फायदा उठाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके प्रयोग में सावधानी बरतें और दुर्घटना से बचें। अच्छा कारीगर कार्य प्रारंभ करने से पहले वह अपने यंत्र को पूरी तरह समझ लेता है। अधूरी समझ से जहां यंत्र का समुचित उपयोग संभव नहीं है, वहीं दुर्घटना होने की भी संभावना है। अतः प्रयोग करने से पहले यंत्र की रचना तथा उसकी कार्य प्रणाली को भली प्रकार समझ लें। यदि कोई प्रशिक्षण उपलब्ध हो तो उसका लाभ उठाएं। यंत्र के साथ मिलने वाली निर्देशिका का भी अध्ययन करें तथा निर्माता के निर्देशानुसार ही यंत्र की देखरेख समावेश एडजस्टमेंट तथा उपयोग करें। बच्चे, बूढ़े, अशक्त या नशा किए लोगों द्वारा यंत्रों के प्रयोग से दुर्घटना हो सकती है। यंत्र पर कार्य करने से पहले उसकी पूर्ण सामयिक देखरेख कर लें। इससे यंत्र अच्छा कार्य करेगा और टूट फूट की संभावना भी नहीं रहेगी। कार्य करने वाला व्यक्ति चुस्त कपड़े पहने, क्योंकि ढीले ढाले कपड़े यंत्र में उलझकर दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। यंत्र में लगे सभी सुरक्षा सेफ्टी ढक्कन उपकरणों को यथा स्थान पर लगाकर रखें। यदि मशीन या यंत्र में कोई खराबी हो तो उससे काम न लें। पहले उस अवगुण को ठीक करें या कराएं, और उसके बाद ही यंत्र से काम लेकर दुर्घटना से बचें। यदि रात के समय यंत्र से काम लेना है तो समुचित प्रकाश का प्रबंध करें। फसल की कटाई, गहाई, सफाई करते समय खुली लौ को पास न आने दें, अन्यथा सूखी फसल तुरंत आग पकड़ सकती है। मशीन पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को पास न फटकने दें, वे दुर्घटना के शिकार या कारण बन सकते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करने वाली मशीनों को भली प्रकार से फर्श पर स्थिर कर लें, जिससे वो चलते समय हिले डुले नहीं। इन यंत्रों के पतनालों को ऐसी ऊंचाई पर रखें कि उन पर कार्य करने वाले व्यक्ति को कार्य करने में सुविधा और सुरक्षा रहे। यदि आवश्यक हो तो व्यक्ति के बैठने के लिए उचित स्थान पर ऊंचाई का चबूतरा या आसन बना लें। यदि यंत्र को शक साधन या पट्टा लगाकर चलाया जा रहा है तो पट्टे की लंबाई 7 मीटर से ज़्यादा न रखें, और तथा उसके चारों ओर रस्सी या तारों का ऐसा घेरा बना दें जिससे कोई भी पट्टे के ऊपर या नीचे से ना निकल सके। ट्रैक्टर या कंबाइन मशीन जैसे यंत्रों को निर्धारित सीट पर ही बैठकर चलाएं। अन्य स्थान पर खड़े होकर कार्य करने से दुर्घटना हो जाने की संभावना है। इन यंत्रों पर अतिरिक्त व्यक्तियों को भी चढ़ने न दें। यंत्र की गति को कभी भी निर्धारित सीमा से

बाहर ना जाने दें। अनियंत्रित गति से दुर्घटना हो सकती है। यंत्रों के देखरेख के लिए यदि चालक को अपनी सीट छोड़नी हो तो पहले यंत्र के ऊपर उठे हिस्से को नीचे की स्थिति में लाकर यंत्र को बंद करें और उसके बाद ही हाथ से पुली घुमाकर उसका एडजस्टमेंट करें। सख्त से चलने वाली पुली पर पट्टा चढ़ाने से दुर्घटना हो जाने की संभावना है। किसी भी मशीन में तेल डालने से पहले उसे बंद कर लें। चालू मशीन या गर्म इंजन में तेल डालने से आग लग जाने का खतरा है। गर्म इंजन के जल शीतक में पानी डालने से पहले उसके ढक्कन को हल्का सा घुमाकर भाप निकल जाने दें। उसके बाद ढक्कन खोलकर धीमे चलते इंजन में ही धीरे धीरे पानी डालें, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। किसी भी स्वचालित यंत्रों को ढलान से नीचे लाते समय उसे गियर में ही रखें, नहीं तो यंत्र की गति अनियंत्रित होकर दुर्घटना हो सकती है। यंत्र को कभी भी तेज गति में और चढ़ाई की तरफ नहीं मोड़ना चाहिए, उससे यह पलट सकता है। यंत्र को छोड़ने या पीछे चलाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उस दिशा में यंत्र को ले जाने के लिए पर्याप्त स्थान खाली है, तथा चलाने में पहले चालक का दिशा संकेत अन्य लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। बिजली का कोई भी कार्य सिर्फ प्रशिक्षित व्यक्ति से ही कार्य कराना चाहिए। कोई भी मरम्मत करने से पहले बिजली के प्रवाह को अवश्य बंद कर लें। सभी जोड़ों को मजबूती से कसकर बांधें। तारों के सभी जोड़ों पर विद्युत रोधी फीता लपेट कर अच्छी तरह ढक दें। लाइन में फ्यूज अवश्य लगाएं और सही फ्यूज का ही प्रयोग करें। ज़्यादा मोटे तारों का फ्यूज लगाने से उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। बिजली के यंत्रों का कनेक्शन में अर्थ से अवश्य करें। प्रत्येक यंत्रों के कार्य करने की एक निश्चित क्षमता होती है। यदि उस क्षमता से अधिक कार्यभार डाला जाएगा तो उसकी आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। अतः यंत्र की समान आवाज़ का ध्यान रखें। यदि आवाज़ में कोई परिवर्तन हुआ तो यंत्र रोक कर उसका कारण पता लगाकर उसे दूर करें, अन्यथा खतरा हो सकता है। यंत्र पर कार्य करने वाले व्यक्ति के थक जाने पर उसे आराम करने दें। ध्यान रहें, थक जाए तो काम न करें। थकावट की स्थिति में कार्य करते रहने से भी दुर्घटना हो सकती है। कार्य करते समय आँख नाक मुंह की सुरक्षा के लिए चश्मे, मुंह पर कपड़े आदि का प्रयोग करें। धूल द्वारा होने वाले नुकसान से बचना चाहिए। यदि तेज धूप में कार्य करना हो तो सिर पर भली प्रकार से ढक लें। कार्य समाप्त हो जाने के बाद खुले अंगों व कपड़ों को साबुन से भली प्रकार धो लें। प्राथमिक उपचार तथा आग बुझाने वाले साधनों का को पास सदैव पास में रखें और कभी कार्य करने वाले व्यक्ति को इसकी जानकारी दें, जिससे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत इसका उपयोग किया जा सके। इसी प्रकार किसी भी यंत्र का बंद करने का प्रशिक्षण भी सभी कार्यकर्ताओं को दिया जाना चाहिए, जिससे दुर्घटना की स्थिति में मशीन को तुरंत बंद किया जा सके। जान माल की सुरक्षा के लिए यंत्र पर कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों को जब प्रशिक्षित करें तो उनका बीमा भी करवा लें, जिससे दुर्घटना हो जाने पर की स्थिति में आर्थिक हानि की प्रतिपूर्ति हो सके। स्वचालित यंत्रों में मुख्य रूप से पावर थ्रेशर के प्रयोग में सावधानियां मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला, नट बोल्ट की जांच कर लें और उसको टाइट रखें। सभी मूविंग पार्ट को में ग्रीस लगा दी जाए। सभी बेल्टों को टाइट करें। थ्रेशर की स्थापना का कार्य पर्याप्त करते समय पर्याप्त प्रकाश को रखें और स्थल समतल होना चाहिए। ट्रैक्टर या इंजन को हवा की विपरीत दशा में लगा कर ही थ्रेशर को काट लें। थ्रेशर या लाख के पास कोई जलन वस्तु प्रयोग न करें और ना ही रखें। अग्नि सुरक्षा हेतु कार्यस्थल पर धूल पानी की व्यवस्था की जाए। ढीले कपड़े पहनकर थ्रेशर पर कार्य न करें, ना ही थ्रेशर के चलाते समय आसपास जाएं। औरतों बच्चों को थ्रेशर के निकट न आने दें। नशीली वस्तुओं का सेवन कर थ्रेशर पर कार्य न करें। थकावट तथा अस्वस्थता की दशा में थ्रेशर पर कार्य न करें। सूखी लाख का प्रयोग करें। किन्हीं लाख लगाने से आग लगने की संभावना रहती है। क्षमता के अनुसार परनाला में लाख लगाएं। अधिक

0: दाग लगाने का प्रयास न किया जाए, पन्नाला ISI मार्क का होना चाहिए। पन्नाला लाख पन्नाले में लगाते समय हाथ को अंदर डालकर लाख को बढ़ाने का प्रयास न करें। थ्रेशर के नीचे एकत्र गेहूं आदि को थ्रेशर बंद करने के बाद ही हटाएं। ISI मार्क का थ्रेशर प्रयोग करें। खलियान में लाख इकट्ठा करते समय हाई टेंशन लाइन के नीचे लाख न रखा जाए। थ्रेशर में कहीं आवाज आने की दशा में उसे रोक लिया जाए, उसके दोष को ठीक किया जाए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आज की सक्सेना की वार्ता। शीर्षक था शक्ति चलित कृषि यंत्रों के प्रयोग में सावधानियां। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। हमारा अगला अन्य प्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचारों का।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब स्थलानां यात्रायै निर्गमिष्यति। अत्रावसरे प्रधानमंत्री हरियाणायाः जिंद रेल स्थानके जिंद सोनीपत क्षेत्रयोः भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन संचालित रेलयानाय हरितपताकां प्रदर्शयिष्यति। अनेनैव सह श्रीमोदी जिंदनगरस्थे एकलव्य क्रीडांगणे 17,14,000 कोटि रूप्यकाणां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनञ्च विधास्यति। प्रथमस्य हाइड्रोजन संचालित रेलयानस्य अयं शुभारंभः रेलक्षेत्रे स्वच्छ सतत विकासाय कश्चन महत्वपूर्णः पदक्षेपो वर्तते। जिंदनगरात् प्रधानमंत्री चंडीगढ़ प्रति प्रस्थास्यति। यत्र अपराह्णे पादोन द्विवादने सह 17,14,000 रूप्यतोप्यधिकानां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। अत्रावसरे सह जनसभामपि संबोधयिष्यति। ततः परं प्रधानमंत्री पंजाबस्य जालंधर नगरं प्रति गमिष्यति, यत्र सः 17,45,000 रूप्यकाणां नैकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनञ्च करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कतर देशस्य अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यनेन सह दूरभाषेण संवादम अकरोत्। अथ फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी इत्यस्य निधनं प्रति शोक संवेदनाः प्रेषितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् कतर देशस्य फादर अमीर इत्येतस्य स्थायी रिक्तं भारत कतर देशयोः मध्ये सामरिक सहभागितां सुदृढां कर्तुं अग्रेपि मार्गदर्शनं करिष्यति। असौ भारतस्य प्रति तस्य अतिस्नेहं, कतर देशे स्थित भारतीय समुदायं प्रति तस्य आत्मीय भावं, भारत कतर संबंधान सुदृढीकर्तुं तस्य दृढ प्रतिबद्धतां च स्मृतवान्। जुलाई मासस्य 20 दिनांके आरभ्यमाणात् संसदः प्रावृत सत्रात् प्राक् भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य नेतृत्वयुता NDA इति संयुतिः अद्य सहयोगि दलानां वरिष्ठमन्त्रिभिः सह उपवेशनं करिष्यति। अस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः करिष्यति। अस्मिन्नुपवेशने प्रावृत सत्राय NDA संयुतेः संसदीय कार्ययोजनायाः अन्तिमरूपं निर्धारयिष्यते, अपि च संयुतेः विधायी कार्यसूच्याः, सहयोगि दलानां परस्पर समन्वयस्य अथ सदने विपक्षस्य प्रभावपूर्ण प्रतिपक्षाय एकीकृत कार्ययोजनायाः विषये विचार विमर्शः भविष्यति। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थयास्य वर्षस्य नीट यूजी इत्यस्य पुनः परीक्षायाः परिणामाः उद्घोषिताः। स्नातक स्तरीय चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष सहैव तत्सम्बद्ध पाठ्यक्रमेषु प्रवेशाय 11,00,000 अभ्यर्थिनः अर्हाः अभवन्। सर्वेषाम् अभ्यर्थिनाम् अंकपत्राणि तावत् आधिकारिक संकेतस्थले neet.nta.nic.in इत्यत्र उपलब्धानि सन्ति। केन्द्रीय

0: रविवासरे लंडन नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट इत्येतस्मिन् क्रीडाङ्गणे आयोज्यमाने अन्तिमायां निर्णायक श्रृङ्खलायां परस्परं स्पर्धिष्यतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2,600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3,200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जिंद।
1: जींद के बाद प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमा खाच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। खेलों में हॉकी इंडिया देश भर में हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कल से राष्ट्रीय स्तर पर कोचिंग और ऑफिशिएटिंग एजुकेशन पाथवे कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इस पहल का उद्देश्य कोचों और तकनीकी अधिकारियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाना तथा देश में हॉकी शिक्षा को अधिक व्यवस्थित बनाना है। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को AFC अंडर 17 अगले

0: get ground. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर दिव्या एस शर्मा की वार्ता। शीर्षक है, दांतों की चमक कैसे बनाए रखें।
2: दांतों की चमक मुख्यतया दांतों एवं मसूड़ों की सफाई पर निर्भर करती है। यदि दांतों की सफाई नियमित रूप से होती है तो दांत हमेशा चमकदार रहेंगे। दांत पीले या भद्दे होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे दांत टेढ़े मेढ़े हैं जिससे दांतों की नियमित रूप से सफाई नहीं हो पाती। दूसरा, दांतों में कोई बीमारी है। तीसरे, दांतों पर पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट आदि के लाल काले धब्बे हो गए हों। चौथा, मसूड़ों में पायरिया लगा हो। पांचवा, दांतों में कीड़े लगे हों। छठा, जानकारी का अभाव हो। अब हम आपको एक एक करके सभी कारणों के बारे में बताएंगे। दांत टेढ़े मेढ़े होने पर उनके बीच से सफाई नहीं हो पाती। उंगली से दांतों को साफ करने पर दांत के जिस हिस्से पर दबाव ज्यादा पड़ता है वहां या तो दांत ज्यादा सफेद या घिसा हुआ प्रतीत होता है, जबकि अंदर की तरफ के हिस्से पर परतें चढ़ती जाती हैं जिससे दांत गंदे दिखाई देते हैं। अतएव सर्वप्रथम तो दांतों को टेढ़ा मेढ़ा होने से ही बचाना चाहिए, पर यदि दांत ऐसे हैं तो उन्हें ठीक कराना चाहिए। तीसरी बात, दांत हमेशा ब्रश से ही साफ करते रहना चाहिए। दांतों में पीलापन कभी कभी बीमारियों की वजह से भी होता है। पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने पर सभी दांत पीले हो जाते हैं। जबड़ों में दांत के बनते समय यदि बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है, जैसे डायरिया, टाइफाइड, हैजा आदि, तब भी दांत पीले या आधे अधूरे से निकलते हैं, जिसमें दांत का कुछ हिस्सा सामान्य होता है व कुछ हिस्सा अधूरा बना हुआ। ऐसे दांत मुंह में निकलने पर खाने पीने वाली चीजों से रंग जाते हैं और ब्रश करने पर भी साफ नहीं होते। आजकल बच्चों व नवयुवकों में पान मसाला, तंबाकू आदि खाने के कारण भी दांत काफी काले भूरे रंग के हो जाते हैं। यह ब्रश करने पर भी साफ नहीं होते। इसके लिए सर्वप्रथम तो इनका सेवन ही ना करें। दूसरा, इन्हें साफ कराने के लिए दंत चिकित्सक को दिखाएं। इनके सेवन से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी हो सकती हैं। चौथी वजह, दांतों एवं मसूड़ों में पायरिया की भी हो सकती है। इस बीमारी में दांतों पर पीले हरे रंग की परत जमा हो जाती है और मसूड़ों में मवाद पैदा होने की वजह से दांतों पर हमेशा चिकना चिकना पदार्थ आता रहता है, जो कि मुंह में काफी बदबू भी फैलाता है। पांचवी वजह, दांतों में कीड़े लगे होने की भी हो सकती है। दांतों में कीड़े लगा होने पर वह दांत का हिस्सा काला दिखाई देने लगता है। कभी कभी दांत में चोट लग जाने पर भी दांत कुछ समय बाद काला पड़ जाता है। दांतों के गंदे होने का छठा कारण जानकारी का अभाव भी है। अधिकतर लोग ब्रश भी दो बार करते हैं, दांतों की सफाई का भी ध्यान रखते हैं, पर फिर भी दांतों में रोग लग जाते हैं। इसका कारण है कि उन लोगों को पता नहीं होता कि हमको ब्रश किस ढंग से करना चाहिए और कहाँ कहाँ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसी स्थिति में दंत चिकित्सक को दिखाकर उनसे ब्रश करने का सही तरीका जान लेना चाहिए। कभी कभी कुछ डॉक्टर टेट्रासाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन आदि दवाइयां बच्चों को दे देते हैं। सामान्यतया यह दवाइयां 8 से 9 साल की उम्र तक बच्चों को नहीं देना चाहिए। इस समय बच्चों के दांत जबड़े में बनने की अवस्था में होते हैं। यह दवाइयां उन्हें काला कर देती हैं और दांत मुंह में निकलने पर काफी बद्धे दिखाई देते हैं। ऐसे दांत अधिकतर स्लेटी रंग के हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो, दंत चिकित्सक से उचित परामर्श लेकर दांतों को साफ कराना चाहिए। आजकल लोग दांत चमकाने के लिए दांत लाल दंत मंजन आदि का प्रयोग करते हैं। इससे दांत ज्यादा घिसते हैं और बाद में उनमें ठंडा गर्म पानी लगना प्रारंभ हो जाता है। दांत अतः हमेशा ब्रश से ही साफ करने चाहिए। दांत यदि किसी बीमारी के कारण भद्दे हैं तो दंत चिकित्सक के पास उसकी परामर्शानुसार जाकर उनके दांतों में फिलिंग या कैप आदि बनवाया जा सकता है। दांतों के टेढ़े मेढ़े होने के कारण कई हो सकते हैं, अतः उन्हें उचित परामर्श के बाद ठीक करा लेना चाहिए। आजकल टीवी में ब्लीचिंग का विज्ञापन भी आता रहता है, ध्यान रखें। दांतों की कुछ बीमारियों में ब्लीचिंग उल्टा असर कर सकती है। दांतों की जड़ एवं हड्डी पर तो बुरा असर पड़ता ही है, साथ में दांत में ठंडा गर्म पानी भी लग सकता है।

0: अतः ब्लीचिंग भी दंत चिकित्सक की परामर्श के बाद ही करें। अब आपको पता चल गया होगा कि दांतों की चमक दांतों एवं मसूड़ों को स्वस्थ रखने से ही बरकरार रखी जा सकती है। अतः दंत चिकित्सक के पास हर 6 महीने पर दिखाते रहना चाहिए एवं उचित परामर्श के बाद उन बीमारियों को ठीक कराते रहना चाहिए।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर दिव्या एस शर्मा की वार्ता। शीर्षक था, दांतों की चमक कैसे बनाए रखें।

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 7:18 होने को हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का

0: मानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को आज रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ के ऐशबाग सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी आईटी डिजिटल सेवाओं और नवाचार का केंद्र बनाने के लक्ष्य पर दिया जोर। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने घोषित किए नीट यूजी 2026 के परीक्षा परिणाम। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है।
3: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश से जुड़ी परियोजना भी शामिल है।
4: प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1,570 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन स्टेशन सहित 20 राज्यों में 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा लगभग 24 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से ऐशबाग जंक्शन स्टेशन का अपग्रेडेशन किया गया है। इस आधुनिकीकरण से हजारों यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों पर यात्रियों की बैठने की क्षमता बढ़ाने, सर्कुलेटिंग एरिया बढ़ाने, वेटिंग हॉल को आधुनिक रूप देने सहित कई अन्य सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई है। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
2: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का एक नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
5: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर तथा अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी आईटी डिजिटल सेवाओं और नवाचार केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी नीति को बदलती वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक व्यवहारिक, निवेशक अनुकूल और रोजगारोन्मुख बनाए।

0: जाए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता मामले में पुलिस ने कल एंटी करप्शन कोर्ट में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की एक हफ्ते की कस्टडी रिमांड के लिए आवेदन दिया है। रिमांड पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले विवेचक आशुतोष तिवारी ने कोर्ट से अनुमति लेकर कल सुबह ही दोनों से लगभग एक घंटे की पूछताछ भी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कल वाराणसी में विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत आयोजित पहले पंच सम्मेलन में हिस्सा लिया।
1: सम्मेलन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के लगभग 500 ग्राम पंचायत प्रधानों ने भाग लिया और ग्रामीण विकास, सुशासन और सशक्त पंचायतों के निर्माण पर व्यापक विचार विमर्श किया। सम्मेलन में पंचायतों की संस्थागत तैयारी, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम स्तर पर पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: कार्यक्रम को संबोधित करते उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत पारदर्शिता के साथ पात्र व्यक्ति को काम भी मिलेगा और गांव का विकास भी होगा।
2: विकसित भारत जी रामजी है, इसमें पीएम गति शक्ति के नाम का एक पोर्टल है, जो सड़क पहले लोग बनाते थे, गांव की कच्ची बनावे चाहे पक्की बनावे, जो तालाब पहले खोदते थे चाहे वह खोद के फिर से उसको भरे और फिर खोदने का काम करें, अब यह डुप्लीकेसी नहीं होगी। पीएम गतिशक्ति का मतलब है कि अगर आपने गांव के हर घर तक आप आवागमन और जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था करना चाहते हैं तो उसकी कार्य योजना आपको बनाना पड़ेगा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम, जवाबदेह और विकास परक बनाना है।
3: विकसित भारत जी राम जी जो 1 जुलाई से पूरे देश में एक साथ लागू हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जब इसकी कल्पना की गई तो सिर्फ ये कल्पना नहीं था, प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना था कि हमारा जो श्रमिक है 12 करोड़ से ऊपर के लोग इस देश में एक घंटा भी बिना काम के वो न रहे। ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति ही नहीं है, पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा माध्यम। अपने गाँव को कैसे विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए आप कितना खड़े हैं ये आपके ऊपर है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के परीक्षा परिणाम बीती रात घोषित कर दिए। परीक्षा में 11,21,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। NTA के अनुसार सफल अभ्यर्थियों में 58% से अधिक महिला अभ्यर्थी शामिल हैं। 21 जून को आयोजित इस परीक्षा में करीब 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बाराबंकी में घाघरा और कुशीनगर में गंडक नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर भी चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुका है। केंद्रीय जल आयोग के जूनियर इंजीनियर आकाश प्रताप ने बताया कि प्रशासन जलस्तर पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
4: पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से जलस्तर बढ़ रहा है। पिछले एक दिन में जो है लगभग 40 सेंटीमीटर पानी बढ़ा है और अगर बारिश ऊपरी क्षेत्रों में लगातार होती रहेगी तो जलस्तर इसी तरह से बढ़ेगा। वार्निंग लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको जलस्तर की सूचना दे दी जाएगी।
0: मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी जनपदों में बौछारें पड़ने और पूर्वी क्षेत्र में भारी बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को आज रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ के ऐशबाग सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचना

0: प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी आईटी, डिजिटल सेवाओं और नवाचार का केंद्र बनाने के लक्ष्य पर दिया जोर। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के तहत वाराणसी में आयोजित हुआ पहला पंच सम्मेलन। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्यों के 500 ग्राम प्रधान हुए शामिल। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने घोषित किए नीट UG 2026 के परीक्षा परिणाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 7:31 हो चुके हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। आसपास कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट UG वर्ष 2026 का परिणाम गुरुवार रात्रि को घोषित कर दिया गया। क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों में 58% छात्राएं हैं। neet.nta.nic.in पर जाकर उम्मीदवार अपना स्कोर कोड देख सकते हैं।

अगली खबर मौसम विभाग की तरफ से। ताज नगरी में गुरुवार को एक बार फिर शहरवासी गर्मी और उमस से परेशान रहे। दिन का तापमान जहां 37.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, साथ ही 24 घंटे में 6.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शाम को आर्द्रता 61% और सुबह 83% दर्ज होने से लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के 7 दिन के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार से मौसम का मिजाज बदल सकता है। 17 जुलाई को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, साथ ही 1-2 बार बारिश की या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 19 से 22 जुलाई तक भी ऐसा ही मौसम बना रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम से 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि 20 जुलाई के लिए गरज चमक के साथ आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विशेषज्ञों ने खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से बचने तथा आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। मत्स्य विभाग की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इच्छुक लोगों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। विभागीय पोर्टल पर 16 जुलाई से 31 जुलाई वर्ष 2026 तक आवेदन की

पानी का टैंकर मंगाने के लिए जब आपके घर में यदि पानी की किल्लत हो, पानी की कमी हो, तो आप पानी का टैंकर मंगवाने के लिए या जलापूर्ति बाधित होने पर टैंकर मंगवाने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-270-2722 कंट्रोल रूम 8192095401 या 8192095734 पर संपर्क कर सकते हैं। संबंधित क्षेत्र में पानी का टैंकर इस नंबर पर सूचना देने के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1454 लाभार्थियों का लक्ष्य तथा तय किया गया है। पात्र व्यक्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहीं ईपीएफओ के आगरा क्षेत्रीय कार्यालय ने एमएनएसटी योजना 2026 के तहत मान्यता प्राप्त पीएफ ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों से आवेदन मांगी है। योजना में प्रतिष्ठानों को स्थिति नियमित करने के लिए 6 मांग का अवसर मिलेगा। आवेदन वेबसाइट के द्वारा किए जाएंगे। नगर निगम से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अब पहले की तुलना में काफी महंगा हो गया है। सामान्य आवेदन शुल्क 2 रूपये से बढ़ाकर 20 रूपये, विलंब या विशेष आवेदन शुल्क 5 रूपये से 50 और 1 वर्ष से पुराने रिकॉर्ड का शुल्क 10 रूपये से 100 रूपये तक कर दिया गया है। अगली सूचना रेलवे से। रेलवे ने नई दिल्ली कोसीकला ईएमयू ट्रेन का धौलपुर तक विस्तार किया है। पीआरओ ने बताया कि नई दिल्ली कोसीकला दैनिक ईएमयू प्रतिदिन धौलपुर तक जाएगी और वापसी में धौलपुर से चलेगी। ट्रेन 12 कोच की होगी और यात्री जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकेंगे। सूचनाओं का सिलसिला कार्यक्रम आसपास में श्रोताओं आगे भी जारी रहेगा। आइए सुनते हैं कीमत।

कार्यक्रम आसपास में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। रेलवे स्टेशनों तक जाने वाले सभी मार्ग होंगे चौड़े। शहर के सभी रेलवे स्टेशनों के प्रवेश मार्गों और वहां तक पहुंचने वाली सड़कों को व्यापक स्तर पर विकसित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में रेलवे भूमि को छोड़कर रेलवे स्टेशनों तक जाने वाले सभी मार्गों को चौड़ा, सुंदर, स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त बनाया जाएगा ताकि यात्रियों और शहरवासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके।

प्रदेश के लाखों शहरी नागरिकों पर जल्द ही हाउस टैक्स का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। करीब 15 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश के कई नगर निगमों में गृह कर की दरों में संशोधन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकारी अस्पतालों में अनुबंध पर रखे जाने वाले चिकित्सकों के लिए एक अच्छी खबर। नियुक्ति पाने वाले चिकित्सकों को मिलने वाले मानदेय में हर साल 5% की वृद्धि की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तर्ज पर विभाग में अनुबंध पर रखे जाने वाले डॉक्टरों के लिए ये वार्षिक बढ़ोतरी किए जाने का फैसला किया है। कुछ खबरें हमारे विद्यार्थियों के लिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने एमएड के विभिन्न सत्रों के परीक्षा फॉर्म भरने का कार्यक्रम जारी किया है। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एमएड सत्र 2025-27 द्वितीय सेमेस्टर के अभ्यर्थियों को समर्थ पोर्टल पर अपनी आईडी के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कर फॉर्म भरना होगा। वहीं एमएड द्वितीय सेमेस्टर तथा सत्र 2024-26 चतुर्थ सेमेस्टर के आवेदन पत्र संबंधित कॉलेजों के माध्यम से भरे जाएंगे।

डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने विभिन्न सत्रों की एलएलएम परीक्षा के फॉर्म भरने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। एलएलएम द्वितीय वर्ष फाइनल और एलएलएम प्रथम वर्ष के मुख्य पुनः और भूतपूर्व परीक्षा के छात्र छात्राएं 17 से 20 जुलाई तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ की ओर से 1 से 8 अगस्त तक प्रदेश स्तरीय समन्वय जूनियर बालक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन मऊ में किया जाएगा। इसमें भाग लेने वाली आगरा मंडल टीम का जिला स्तरीय चयन 25 जुलाई को एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा। वहीं मंडल स्तरीय चयन ट्रायल्स 26 जुलाई को किया जाएगा।

डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने बंद हो चुके मेडिकल एमफिल सहित अन्य कोर्स के पदकों की नए कोर्स में समायोजित करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। एसएन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर और सुजन की स्मृति में पदक नए कोर्स में शुरू किए जाएंगे। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। नए कोर्स में दिए जाने वाले पदकों के लिए आपत्ति भी मांगी जाएगी। इसके बाद बंद हो चुके पदकों को नए कोर्स के मेधावियों को दीक्षा समारोह में देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

आगरा क्लब की ओर से आयोजित आगरा क्लब स्पोर्ट्स फिएस्टा के तहत 19 जुलाई को टेबल टेनिस और गोल्फ की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। दोनों प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए शुक्रवार को पंजीकरण का अंतिम मौका होगा। वहीं खेल निदेशालय की ओर से 21 से 22 जुलाई को सिद्धार्थनगर में प्रदेश स्तरीय महिला टेबल टेनिस और तैराकी प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगरा मंडल की टीम का चयन होना है। इसके लिए जिला स्तरीय ट्रायल 17 जुलाई को सुबह 11 बजे और मंडल स्तरीय ट्रायल 18 जुलाई को सुबह 11 बजे एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में होंगे। सूचनाओं का सिलसिला श्रोताओं आगे भी जारी रहेगा। आइए सुनते हैं एक और मधुर गीत।

कार्यक्रम आसपास में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। साइबर सुरक्षा की पाठशाला में बचाव के तरीके सीखेंगे छात्र। स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं साइबर ठगी से बचाव के तरीके सीखेंगे। साइबर थाना सेल और स्थानीय थाने के एक्सपर्ट इंस्पेक्टर और एसआई साइबर सुरक्षा की पाठशाला लगाकर छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देंगे। छात्रों को जागरूक करने का उद्देश्य साइबर ठगी की बढ़ती वारदातों पर अंकुश लगाना है। प्रशिक्षण के बाद छात्रों से घर और आसपास के लोगों को जागरूक करने की अपील की जाएगी। साइबर ठगी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जागरूकता के अभाव में लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। नए शिक्षा सत्र में कमिश्नरेट पुलिस ने जागरूकता अभियान की रूपरेखा तैयार की है। अभियान की शुरुआत अगस्त से होगी। इसके तहत शहर से लेकर देहात तक के स्कूल और कॉलेजों में साइबर सुरक्षा पाठशाला का आयोजन किया जाएगा। डीसीपी साइबर क्राइम के नेतृत्व में चलने वाले जागरूकता अभियान में साइबर सेल और थाने के एक्सपर्ट पुलिसकर्मी छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देंगे। डीसीपी ने बताया कि अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। आपको बता दें कि निम्न बिंदुओं पर किया जाएगा छात्रों को जागरूक। जागरूकता अभियान के तहत छात्रों को डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया जाएगा। बताया जाएगा कि पुलिस सहित अन्य एजेंसियां किसी भी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती हैं। अगर कोई अधिकारी बनकर वीडियो कॉल के जरिए डराता धमकाता है तो वह साइबर अपराधी है। उसके झांसे में न आए और तत्काल पुलिस से शिकायत करें। इसके साथ ही एपीके फाइल शेयर और क्रिप्टो ट्रेडिंग सहित अन्य तरीकों से होने वाली ठगी के बारे में भी छात्र छात्राओं को जागरूक किया जाएगा।

पहली सूचना के अनुसार रीना गुप्ता पत्नी अमित गुप्ता निवासी मोहल्ला काजी टोला थाना बेवर जनपद मैनपुरी। ये दिनांक 30 मई 2026 से लापता हैं। इनका रंग गोरा, चेहरा गोल, जिस्म सामान्य, कद 5 फीट और इनकी उम्र 32 वर्ष है। गुमशुदगी के दौरान ये हरे रंग का सलवार सूट पहने थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना बेवर जनपद मैनपुरी पर सूचित करें।

अन्य सूचना के अनुसार राजकुमारी पत्नी सतीश निवासी खिरिया थाना कुरावली जनपद मैनपुरी ये दिनांक 16 अप्रैल सन 2026 से लापता हैं। इनका रंग गेहुआ चेहरा लंबा जिस्म सामान्य कद 4 फीट 6 इंच उम्र 30 वर्ष है। गुमशुदगी के दौरान ये काले रंग की साड़ी पहने हुए थी। साथ ही ये अपने साथ 2 बच्चों को ले गई हैं। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना कुरावली जनपद मैनपुरी पर सूचित करें।

अन्य सूचना के अनुसार दीक्षा पत्नी मानवेंद्र सिंह निवासी ग्राम तारापुर थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी ये दिनांक 6 जून सन 2026 से लापता हैं। इनका रंग गोरा चेहरा लंबा शरीर सामान्य कद 5 फीट 4 इंच उम्र 24 वर्ष है। गुमशुदगी के दौरान ये गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी पर सूचित करें।

अन्य सूचना के अनुसार रागिनी पत्नी संतोष निवासी नगला कुशल थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद ये दिनांक 25 मई सन 2026 से लापता हैं। इनका रंग गेहुआ चेहरा गोल शरीर सामान्य कद 5 फीट 4 इंच व उम्र 28 वर्ष है। गुमशुदगी के दौरान ये नीले रंग की मैक्सी पहने हुई थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना नगला खंगर जनपद फिरोजाबाद पर सूचित करें।

अंतिम सूचना के अनुसार सुमन पत्नी अखिलेश निवासी कोआटोला थाना कुरावली जनपद मैनपुरी, ये दिनांक 12 जून सन 2026 से लापता है। इनका रंग गोरा, चेहरा गोल, शरीर सामान्य, कद 4 फीट 5 इंच व उम्र 32 वर्ष है। गुमशुदगी के दौरान ये पीले रंग की साड़ी पहने हुए थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना कुरावली जनपद मैनपुरी पर सूचित करें। इसी के साथ ही गुमशुदा व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं और आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास यहीं पर संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर सुबह के 8 बजने को है हमारा अगला अनुप्रसारण दिल्ली के

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम, तलवाड़ा, मुकेरिया नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनः परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ATS ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ATS के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक ATS की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल BSF से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से कंगंडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं, पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, होर्मुज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 1 श्रद्धालु की मौत, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र लिखता है, खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मॉनसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है, 2 नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मॉनसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश। 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्य ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है, डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है, साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to flag off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana this morning. Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote

बटालियन सरहदी अगली चौकी पर बीएसएफ के एहलकारों से बातचीत करेंगे। वो बीएसएफ से वाबस्ता मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। दोपहर में वो मगरबी बंगाल में सरहद से मुतालिक मामलात पर एक मीटिंग की सदारत करेंगे। जराय ने मजीद कहा है कि वजीर दाखिला रियासत में 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज का भी जायजा लेंगे। दिल्ली हुकूमत ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स के साथ स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 5 बरस तक इख्तिरा और खुद रोजगार के लिए रकम इस्तेमाल की जाएगी। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि ये पॉलिसी 11 रियासती यूनिवर्सिटियों, 13 हुकूमत के इमदाद याफ्ता कॉलेजों, ITI और हुकूमत के पॉलिटेक्निक इदारों का इहाता करेगी। दिल्ली हुकूमत के स्कूलों के तलबा इन इदारों में पॉलिसी के फवायद हासिल कर सकते हैं। दिल्ली की वजीर आला के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि कामयाब तलबा को माली मदद फराहम की जाएगी। रियासती इंक्यूबेशन पॉलिसी निगरानी कमेटी पर मबनी एक पैनल तश्कील दिया जाएगा जो पॉलिसी के निफाज पर नजर रखेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके वालिद अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर अपनी ताजियत का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि अमीर कतर के वालिद की मीरास एक ऐसे वक्त में जबकि वो अपनी कलीदी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम कर रहे हैं, दोनों मुमालिक की रहनुमाई जारी रखेगी। उन्होंने भारत के लिए उनकी गहरी उनसियत, कतर में भारतीय बिरादरी के लिए गर्मजोशी और भारत कतर ताल्लुकात के लिए उनके अज़्म को याद किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। इम्तिहानात के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी ने NEET UG 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल, डेंटल, आयुष और मुतालिका प्रोग्रामों में दाखिले के लिए क्वालिफाई किया है। सभी उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड NTA की वेबसाइट NEET.NTA.NIC.IN पर दस्तियाब हैं। NTA ने कहा है कि नतीजों का ऐलान बरवक्त कर दिया गया है ताकि मेडिकल दाखिले और काउंसलिंग के प्रोग्राम मुतासिर ना हों। भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 5,440 मराकज पर कराए गए दोबारा इम्तिहान में मजमुई तौर पर तकरीबन 20 लाख उम्मीदवार बैठे थे। गुजरात के दहशतगर्दी मुखालिफ दस्ते ATS ने पाकिस्तान में कायम जैश मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन जिले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। इनके नाम बिलाल आबिद भाई शेरा, मोहम्मद अयूब कड़ीवाला, मोहम्मद पालनपुरी उर्फ खलील अयूब सुनसारा, शफिया रईस मुख्ती और मोहम्मद हसन कर दिया बताए गए हैं। इन अफराद को पाटन जिले के सिद्धपुर तालुका में खडियाल गांव से पकड़ा गया। इस महीने के शुरू में जैश मोहम्मद के 8 मुबैना कारिंदों से पूछताछ के दौरान इन 5 मुलजिमों के नाम सामने आए थे। इन 5ों को महसियाना जिले में जुडिशल मैजिस्ट्रेट RM भाटिया के सामने पेश किया गया और 24 जुलाई तक ATS की तहवील में भेज दिया गया। सरकारी वकील PR दंतानी ने अदालत को बताया कि इनमें से एक मुलजिम ने टाइम बॉम्ब बनाने की कोशिश की थी और बम बनाने के काम आने वाला सामान और जैश मोहम्मद का लिटरेचर अभी बरामद नहीं किया गया है, इसीलिए हिरासत में लेकर मुलजिमों से पूछताछ करने की जरूरत है। गोवा हुकूमत ने कसीनो से मुतालिक जाब्तों में सख्ती करते हुए 21 बरस से कम उम्र के लोगों की कसीनो में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमा दाखिला ने इस नई पाबंदी के निफाज के सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में साहिल के नजदीक कसीनो के जहाजों के लिए लाइसेंस की अदायगी के सिलसिले में भी जाब्ते सख्त कर दिए गए हैं। नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत का नौजवानों के उमूर का महकमा आज से माई भारत नेशनल यूथ वॉलंटियर कन्वेंशन का इनेकाद करेगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में इस माह की 18 और 19 तारीख को 2 रोजा चिंतन शिविर होगा। वजारत ने कहा है कि एक के बाद एक 2 प्रोग्रामों का मकसद जमीनी सतह पर नौजवानों के राबतों को मुस्तहकम करना, इदारा जाती तालमेल को बढ़ाना और नौजवानों की क्यादत में मुल्क की तामीर के लिए मुस्तकबिल के लिए तैयार एक इको निज़ाम तश्कील देना है। दोनों तकारीब में नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया और नौजवानों के उमूर और खेलों की वजीर मुमलिकत रक्षा नितिन

0: प्रखर से दीगर सीनियर अहदेदारान के साथ शिरकत करेंगे। अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के साथ अमन समझौता नाकाम हो जाने के तनाजुर में ईरान के खिलाफ लगातार छठी रात फौजी हमले किए। अमरीका की मरकजी कमान के मुताबिक इन हमलों का मकसद ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमजोर करना है, क्योंकि ईरान से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले कमर्शियल बहरी जहाजों को खतरा लाहिक है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि ईरान में अमरीका के हालिया हमलों में सिविलियन बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है और इन हमलों में 3 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए हैं। केरलम में मलयालम दौर के कार्किडाकम महीने को रामायण महीने के तौर पर मनाया जाता है, जिसका आगाज आज से हो रहा है। इस मौके पर अकीदतमंद रूहानी कुव्वत और जहनी सुकून के लिए रामायण की तरफ मुतवज्जे होते हैं। कार्किडाकम का आज पहला दिन है और इसके साथ ही पूरी रियासत में कई घरों और मंदिरों में रामायण का पाठ रोजाना का मामूल बन जाता है। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अरकान और आला ओहदेदारान के साथ आला सतह की मीटिंग की सदारत की और पवित्र श्री माता वैष्णो देवी जी मंदिर में चढ़ावे और अतियात वगैरह के बंदोबस्त के निजाम का जायजा लिया। इस सिलसिले में मुकम्मल शफाफियत, जवाबदेही और कामकाज से मुतालिक तयशुदा तरीकाकार पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की खातिर एक जामे जायजा पेश किया गया। मर्दों के क्रिकेट में कल रात कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में दूसरे एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल की कयादत में भारतीय टीम 44 ओवर्स में महज 233 रन ही बना पाई। भारत के लिए श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 65 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के लिए जो रूट ने 99 रन स्कोर किए और वो नॉट आउट रहे, उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अब दोनों टीमें लॉर्ड्स के तारीखी क्रिकेट मैदान पर इतवार के रोज इस सीरीज का आखिरी और फैसलाकुन मैच खेलेंगी। व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इतवार की रात को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने जाएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आज हरियाणा दौरे से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम आज हरियाणा में मुल्क की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 2600 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के सरहदी सड़क तंजीम BRO की स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस से खिताब करने से मुतालिक खबर को भी अखबारों में नुमाया तौर पर शाये किया गया है। रोजनामा इंकलाब ने इस दौरान दिए गए उनके इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि जदीद हथियारों के बावजूद स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत बरकरार है। सड़कें, सुरंगें, हवाई अड्डे और बंदरगाहें फौजी मुहिमात और कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने इख्तिरा और खुद रोजगार को बढ़ावा देने की खातिर 400 करोड़ रुपए मालियत की स्टार्टअप और इंक्यूबेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इम्तिहानात के निकाद से मुतालिक एजेंसी ने नीट UG 2026 के दोबारा कराए गए इम्तिहान के नतीजों का ऐलान कर दिया है। गुजरात ATS ने जैश ए मोहम्मद तंजीम के दहशतगर्द गिरोह की अपनी तहकीकात के सिलसिले में पाटन जिले से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। और मर्दों के क्रिकेट में दूसरे एक रोजा मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

केके के सुर में भी आपने सुना कार्यक्रम का पहला गीत। गीत के बोल लिखे थे समीर ने, धुन बनाई थी हैरिस जयराज ने और फिल्म का नाम था रहना है तेरे दिल में। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, आनंद राज आनंद के स्वर में, शब्द रचना समीर की, संगीत आनंद राज आनंद का दिया हुआ और फिल्म का नाम है मस्ती।

और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत अभिजीत के स्वर में। फिल्म का नाम समीर, संगीतकार नदीम शवन।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्रोताओं आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है।

जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। धुन बनाई थी अनु मलिक ने और फिल्म का नाम था मैं हूं ना। पर आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण और फिल्म का नाम है वक्त हमारा है।

कुमार शारू और अलका याग्निक की गाई इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं पर संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 9:15 होने को हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें प्रस्तुत है जिले की हलचल।

0: थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए शाहजहांपुर और प्रतापगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं शाहजहांपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है कौशलेंद्र मिश्रा का।
2: शाहजहांपुर में बीते माह विकास, जन कल्याण, पर्यावरण संरक्षण, कृषि और प्रशासनिक गतिविधियां सुर्खियों में रहीं। राजकीय इंटर कॉलेज खन्नीबाग मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां 177 हिंदू और 28 मुस्लिम सहित कुल 205 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। मुख्य अतिथि वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और विवाह को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के

0: प्रत्येक जोड़े पर 1-1 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 64,000 रुपए कन्या के बैंक खाते में, 21,000 रुपए की गृहस्थी सामग्री तथा 15,000 रुपए समारोह के आयोजन पर व्यय किए जाते हैं। उन्होंने नव विवाहित दूल्हों से अपनी पत्नियों का सम्मान करने और उन्हें समान अधिकार देने की अपील भी की। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का आयोजन हुआ। विकास खंड भावलखेड़ा में वन विभाग द्वारा 7,500 पौधों का रोपण कर अभियान की शुरुआत की गई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और सांसद अरुण कुमार सागर ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हरिशंकरी पौधा लगाकर लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का संदेश दिया। इस वर्ष जनपद में 52.55 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे जन सहभागिता से पूरा करने का संकल्प लिया गया।
1: बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण क्षेत्र में खासतौर से किया गया। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है ग्लोबल वार्मिंग को मिनिमाइज करने का और जो गर्मी पड़ रही है उसको भी मिनिमाइज करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। इस साल 37 करोड़ का लक्ष्य रखा गया, इसमें से 35 करोड़ वृक्ष केवल आज लगाने का लक्ष्य रखा है। 52,55,000 वृक्ष शाहजहांपुर में लगाने का लक्ष्य है। ये लक्ष्य आज शाम तक हम जरूर पूरा करेंगे।
0: इसी क्रम में जिला गंगा समिति के तत्वावधान में गर्रा नदी स्थित राजघाट पर बृहद स्वच्छता एवं श्रमदान अभियान चलाया गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्वयं सेवकों ने घाट और नदी तट की सफाई कर लोगों को स्वच्छ नदी स्वस्थ जीवन का संदेश दिया और नदी और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने का आह्वान भी किया। सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने थाना पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाया। ड्रंकन ड्राइविंग, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सघन कार्रवाई करते हुए कुल 1,843 वाहनों के चालान किए गए। पुलिस ने लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने तथा सुरक्षित वाहन संचालन के प्रति जागरूक भी किया। विकास कार्यों को गति देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने हथौड़ा क्षेत्र में 15.44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सदर तहसील के नए अनावासीय भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, नए तहसील भवन के निर्माण से आम नागरिकों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं मिलेंगी तथा सदर और ददरौल क्षेत्र के लोगों को आवागमन में भी काफी सुविधा होगी। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव एवं जनपद के नोडल अधिकारी मनीष चौहान ने विकास भवन में CM डैशबोर्ड, कानून व्यवस्था, राजस्व एवं विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में बताया गया कि शाहजहांपुर ने CM डैशबोर्ड पर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिस पर प्रमुख सचिव ने प्रशासनिक टीम की सराहना भी की। अपने भ्रमण के दौरान प्रमुख सचिव ने लगभग 26.33 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे अत्याधुनिक स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्विमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल, कबड्डी हॉल और 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का जायजा लेते हुए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के तैयार होने से जनपद के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा खेल प्रतिभाओं को नई पहचान मिलेगी। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारियों ने अधिकारियों को सभी योजनाओं का 100% एवं पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनपद में फूड फेस्टिवल आयोजित करने के निर्देश भी दिए। शाहजहांपुर में बीते माह जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यावरण संरक्षण, कृषि विकास, खेल सुविधाओं के विस्तार और आधारभूत संरक्षण के विकास को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां पूरे जोर शोर से जारी रहीं। कौशल मिश्र, आकाशवाणी समाचार, शाहजहांपुर।
2: शाहजहांपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रतापगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजितेश त्रिपाठी का।
3: प्रतापगढ़ को विकास की सौगात देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सदर और विधानसभा विश्वनाथगंज के अंतर्गत 384.71 करोड़ रुपए से अधिक की 111 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें प्रतापगढ़ सदर की 42 व विश्वनाथगंज की 13 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं प्रतापगढ़ सदर की 45 एवं विश्वनाथगंज विधानसभा की 11 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतापगढ़ के औला किसानों ने जो अमृत फल दिया उसके अनेक उत्पाद स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, इसी से यहां की समृद्धि देखकर अच्छा लगता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000

0: 14 में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के सभी गरीबों किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से तहसील सदर के नगर पंचायत पृथ्वीगंज के पृथ्वीगंज भगेसरा में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्षता कार्यालय पर भाई रहेंद्र कुमार शुक्ला ने की। शिविर में उपस्थित लोगों को विभाग द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार परक योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्रता आवेदन प्रक्रिया, ऋण संबंधित सुविधा एवं सरकारी सहायता संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया गया। साथ ही युवाओं, कारीगरों एवं ग्रामीण उद्यमियों को रोजगार का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर राम मोहन मीणा की अध्यक्षता में संसद विधायक के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के साथ त्वरित आर्थिक विकास, पूर्वांचल विकास निधि, संसद निधि, विधायक निधि से कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा विकास भवन सभागार में की। समीक्षा में वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में त्वरित आर्थिक विकास योजना से रुपये 2,926.75 लाख की लागत से स्वीकृत 156 कार्यों में 8 कार्यों की प्रगति तथा अवशेष कार्य निविदा की प्रक्रिया में पाए गए। निविदा की प्रक्रिया से पूर्ण कराते हुए सभी कार्यों को माह नवंबर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। योजना अंतर्गत भैरवनाथ धाम में कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए अब तक भूमि सीमांकन न होने पर संबंधित उपजिला अधिकारी को 2 दिवसीय में सीमांकन कराने के निर्देश दिए गए। सांसद प्रतापगढ़ के वर्ष 2024-25 के संसद निधि से स्वीकृत अपूर्ण 9 कार्यों के संबंध में अधिशासी अभियंता UPSI सी प्रयागराज से जानकारी करने पर उनके द्वारा भूमि विवाद होने की स्थिति से अवगत कराया गया, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राजस्व विभाग से सहयोग प्राप्त कर विवाद निस्तारित कर 15 दिवस के अंदर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। जनपद में विशेष संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम व दस्तक अभियान का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AN प्रसाद द्वारा किया गया। जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा बताया गया कि विशेष संचारी नियंत्रण अभियान का वर्ष 2026 तक का यह दूसरा चरण संचालित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग सहित पंचायती राज, नगर विकास, शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, कृषि, पशुपालन, सिंचाई तथा अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से व्यापक स्वच्छता एवं जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया, जापानी इंफ्लुएंजा सिंड्रोम तथा अन्य संचारी रोगों व जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए जल भराव समाप्त करने, एंटी लावा का छिड़काव, स्रोतों का समापन, बुखार के रोगियों को शीघ्र पहचान, जांच एवं उपचार, जन जागरूकता तथा मच्छर विकर्षी पौधे जैसे तुलसी, गेंदा, लेमन ग्रास, लेवेंडर, सेटोनेला आदि के रोपण जैसे कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके उपरांत मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संचारी रोगों एवं जल जनित रोगों से बचाव के प्रति सजग रहने के लिए उपस्थित लोगों को शपथ ग्रहण कराई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की कि वे अपने घरों एवं आसपास स्वच्छता बनाए रखें, पानी के एकत्र न होने दें, कूलर एवं जल पात्रों की नियमित सफाई करें, मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाएं तथा बुखार एवं अन्य रोगों के लक्षण दिखने पर निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर तत्काल जांच एवं उपचार उपलब्ध कराएं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा में अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार।

प्रस्तुत हैं अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार। मैं जानता हूं कि यदि मैं अधीर बन जाऊं तो मुझे सत्य के दर्शन नहीं हो सकेंगे। दुनिया की दृष्टि में मेरा निरहंकारी होना कोई कीमत नहीं रखता। जहां अहिंसा है वहां असफलता असंभव है। इसलिए जहां असफलता दिखाई पड़े कहना ही होगा कि वहां अहिंसा नहीं है। मुझमें अहंकार अधीरता आदि दोष हों तो मैं उनका साक्षी नहीं बन सकता। कुछ अंशों में दूसरे ही बन सकते हैं। इसका सच्चा साक्षी तो ईश्वर ही है। सत्य मेरा धर्म है और अहिंसा उसकी सिद्धि का साधन। मैंने तलवार के न्याय को सदा के लिए छोड़ दिया है। अहिंसा की शक्ति की तरह अहिंसक की शक्ति भी अमाप होती है। अहिंसक स्वयं कुछ नहीं करता, उसका प्रेरक ईश्वर होता है। इसलिए भविष्य में ईश्वर उससे क्या कराएगा से वह कैसे कह सकता है। अहिंसा उत्तम है, लेकिन अगर मैं सांप का भय छोड़ नहीं सकता हूं तो उस हालत में क्या करूं। मन से तो उसे मार चुका हूं, कर्म से मारने से हिचकिचाता हूं। तब धर्म कहता है कि तुम्हारे स्वभाव के मुताबिक मारो, उसे नहीं मारने का व्यवसाय व्यर्थ है। शक्ति से ज्यादा काम करने का दोष मुझ में कम है। कहने का मतलब यह है कि अहिंसा की प्रवृत्ति में मर्यादा से अधिक काम करने की गुंजाइश नहीं है। जिसमें मर्यादा नहीं उसमें अहिंसा नहीं। मुझ में तो कमी है ही, सब कामों में अहिंसा होनी चाहिए। जिससे बात करो प्रेम से करो। ब्रह्मचर्य और अहिंसा का संबंध शरीर के साथ है, इसलिए इन्हें शारीरिक तप कहा है। ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है, इसके बारे में मुझे भी शंका थी, अब नहीं है। दोनों का संबंध शरीर के साथ है। मनोविकार का असर शरीर पर होता है, इसी तरह क्रोधादि हिंसक विकारों का भी अगर शरीर न होता तो अहिंसा और ब्रह्मचर्य अर्थविहीन हो जाते। अर्थात दोनों शरीर के धर्म हैं और दूसरे शरीर के साथ धर्म रखते हैं। अहिंसा या प्रेम को दुख लगे तो अहिंसक दुख हिंसा करे, उसी का लगना चाहिए। कोई मुझे गाली दे तो उससे मुझे दुख क्यों होना चाहिए। अहिंसा हिंसक के प्रति बनाई जा सकती है। अहिंसक के प्रति अहिंसा कैसी? सूर्य के सामने लालटेन, सत्य भूयात प्रियम भूयात। यह व्यवहार वचन नहीं बल्कि सिद्धांत है। प्रियम का अर्थ अहिंसक है। अहिंसक सत्य के संबंध में यह होता है, अवश्य है कि उस समय वह चुभता है, लेकिन परिणाम में वो अमृत में लगता ही चाहिए। यह अहिंसा की अनिवार्य कसौटी है। अहिंसा सबका भला चाहती है। ईश्वर के यहां सबकी भलाई का ही न्याय होता है। वह कैसे किया जाता है और कैसे न्याय में मनुष्य का कर्तव्य क्या है, सो खोजना हमारा काम है। इस नींद के विरुद्ध नीति प्रस्तुत करना हमारा काम कदापि नहीं। सत्य की खोज करते हुए अहिंसा की जरूरत देखी, इसलिए उसे विकसित करने का प्रयत्न किया। उसमें से उपरिग्रह की आवश्यकता प्रकट हुई, पर ब्रह्मचर्य के बिना यह सब अधूरा लगा। इसी सिलसिले में सत्याग्रह की खोज हुई, उसके निमित्त से निर्भयता आई। इसके बाद अस्वाद का नंबर लगा, लेकिन अब देखता हूं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए अस्वाद आवश्यक है। इन गुणों को जिस हद तक विकसित कर सका हूं वह गहरे विचार और भारी प्रयत्न का परिणाम है। इन सब

के मूल में ईश्वर पर अविचल श्रद्धा तो है ही, अहिंसा डरपोक का या नामर्द का धर्म नहीं, वह बहादुरों का और मर मिटने वालों का धर्म है। जो तलवार से लड़कर मरते हैं वे अवश्य बहादुर हैं, लेकिन जो बिना मारे धैर्यपूर्वक खड़ा रहकर मरता है वह अधिक बहादुर है। अतएव जो मार के डर से चावल के बोरे मुफ्त दे देता है वह डरपोक है, अहिंसक नहीं। वह अहिंसा के तत्वों को जानता नहीं। मार के डर से जो स्त्रियों का अपमान सहन करता है वह मर्द न रहकर नामर्द बनता है। वह न पति बनने के योग्य है, न पिता और न भाई। ऐसे लोगों को शिकायत करने का अधिकार नहीं। तो ये थे अहिंसा के संबंध में गांधी जी के विचार। और अब आइए सुनते हैं डीवी पलुस्कर की आवाज में ये भजन।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 9:45 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज के हमारे गायक कलाकार हैं उषा शर्मा।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चंद लोक गीत गायक कलाकार थी उषा शर्मा। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है मीडियम वेव 106.1 मीटर पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

इंदिवर का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना आशा भोसले व साथियों की आवाज़ों में। गीतकार इंदिवर, संगीतकार राजेश रोशन और फिल्म का नाम था खून भरी मां। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत विशाल ददलानी के सुर में। फिल्म का नाम है तलाश। शब्द रचना जावेद अख्तर की, संगीत रमेश संगत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आगे। खान साहब शास्त्रत और नुसरत फतेह अली खान के स्वर में संगीत नुसरत फतेह अली खान और शास्त्रत का दिया हुआ। साथ ही फिल्म का नाम है

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

भैरव अरुण का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना, अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो की आवाजों में। संगीत जतिन ललित का दिया हुआ और फिल्म का नाम था ढाई अक्षर प्रेम के। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत बप्पी लहरी अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार बप्पी लहरी और

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का गाया राग अहिर भैरव में बांसुरी वादन बजाए।

शुद्ध और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित हरि प्रसाद चौरसिया से बांसुरी वादन सुन रहे थे, आप प्रस्तुत कर रहे थे ही भैरव। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब सफल होता है। श्रोताओं, सुबह के 11 बजे हैं और ये समय होता है आज के कलाकार कार्यक्रम का। आज के कलाकार कार्यक्रम में आज के हस्ती हैं राजकुमार संतोषी निर्देशक, इनके ऊपर कार्यक्रम आप सुनिएगा।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम आज के कलाकार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मनीषा उपाध्याय और अगले आधे घंटे तक मैं आपको साथ लेकर चलूंगी हिंदी सिनेमा की उस रचनात्मक दुनिया में, जहां कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि समाज को सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं। दोस्तों, हिंदी फिल्म उद्योग के कुछ नाम ऐसे हैं किसी अभिनेता के रूप में नहीं बल्कि कैमरे के पीछे बैठकर बचने वाले एक रूप में भी होती है। हिंदी फिल्मों के दमदार संवाद विभाग

फिल्म ने ऐसी ही कालजयी फिल्म सिनेमा यादगार संगीत पर सफर की शुरुआत राजकुमार संतोष

इसी समय एक ऐसे निर्देशक आए जिन्होंने ये साबित किया कि व्यावसायिक फिल्में भी मजबूत कहानी और सामाजिक संदेश के साथ बनाई जा सकती हैं। 17 जुलाई 1956 को जन्मे राजकुमार संतोषी प्रसिद्ध फिल्मकार पीएल संतोषी के पुत्र हैं। उन्होंने निर्देशन की शुरुआत 1990 में फिल्म घायल से की थी, जिसका गीत अभी हम आपको सुनवा रहे थे। पहली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल कर ली और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार तथा फिल्म फेयर सम्मान भी दिलाया। लेकिन राजकुमार संतोषी केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहे। उनकी फिल्मों में अन्याय के खिलाफ संघर्ष, आम आदमी की आवाज़ और न्याय की लड़ाई बार बार दिखाई देती थी। तो एक फिल्म है उनकी दामिनी, जिसमें न्याय की लड़ाई बहुत ऐसे तरीके से दिखाई गई कि एक महिला कैसे अपने लिए लड़ती है, पूरे परिवार के लिए लड़ती है, सच्चाई के लिए लड़ती है। अब जब दामिनी की बात हो रही है तो उनकी इस फिल्म से ये गीत सुन लेते हैं।

श्रोताओं, आज के कलाकार कार्यक्रम में निर्देशक राजकुमार संतोषी की बातें हम कर रहे हैं। तो हम बता रहे थे कि 1990 का जो दशक हिंदी सिनेमा के लिए बदलाव का दौर था।

दोस्तों, अगर कोई पूछे कि भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार कॉमेडी फिल्मों में कौन सी फिल्म शामिल होगी, तो अंदाज अपना अपना का नाम ज़रूर आएगा। दिलचस्प बात यह है कि 1994 में रिलीज़ होने पर फिल्म को बड़ी व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, लेकिन समय के साथ यह एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन गई। आज इसके संवाद और किरदार अमर प्रेम और क्राइम मास्टर गोगो दर्शकों की जुबान पर हैं। राजकुमार संतोषी की यही विशेषता रही कि उन्होंने गंभीर फिल्मों के साथ हल्की फुल्की इतनी खूबसूरती से बनाई। तो जब इस कॉमेडी फिल्म की बात हो रही है, तो आइए सुन लेते हैं इसी फिल्म से एक गीत।

दोस्तों, राजकुमार संतोषी की फिल्मों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मनोरंजन के साथ साथ समाज को एक सार्थक संदेश भी देती हैं। उनकी कहानियां केवल बड़े पर्दे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दर्शकों को सोचने और महसूस करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। अब फिल्म घातक की बात करें तो उन्होंने एक ऐसे आम इंसान की कहानी दिखाई जो भ्रष्ट व्यवस्था और अपराध के खिलाफ अकेले खड़ा होने का साहस करता है। अगर वहीं पुकार फिल्म में देखें तो देशभक्ति, कर्तव्य और राष्ट्रहित को बड़ी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने पेश किया। लज्जा फिल्म में देख सकते हैं आप कि उन्होंने महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकारों और समाज में उनकी स्थिति जैसे गंभीर मुद्दों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उठाया था। लीजेंड ऑफ भगत सिंह, इसमें शहीद भगत सिंह के विचारों, उनके साहस और देश के लिए दिए गए एक सर्वोच्च बलिदान को बड़े ही सशक्त रूप में पर्दे पर उन्होंने उतारा था। और यही वजह है कि राजकुमार संतोषी को केवल एक सफल निर्देशक नहीं बल्कि एक संवेदनशील और विचारशील कहानीकार भी माना जाता है। उनकी फिल्मों के संवाद, दमदार किरदार, प्रभावशाली कथानक आज भी दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए हैं। दोस्तों, उनकी फिल्मों की हम बात करें, उनके बारे में कह रहे हैं और आज उनका जन्मदिन भी है, तो दोस्तों आप सुनते हैं उनकी फिल्म से।

ये गीत, ये पुकार फिल्म से गीत है, बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय गीत जिसे सुनते ही प्यार और भावनाओं की एक मधुर दुनिया हमारे सामने जीवंत तो उठती है।

दोस्तों, अगर हम राजकुमार संतोषी के निजी जीवन की बात करें तो उनके शानदार फिल्मी सफ़र की भी बात करें तो सबसे पहले देखिए 17 जुलाई आज है और 1956 को चेन्नई में उनका जन्म हुआ था। वे पीएल संतोषी के पुत्र हैं जो लेखक निर्देशक थे। बचपन से उन्हें फिल्मी माहौल मिला और सिनेमा के प्रति उनका लगाव स्वाभाविक ही था। हालांकि उन्होंने अपनी पहचान अपने पिता के नाम से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर बनाई। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में वो गए और उन्होंने ऐसी फिल्में जो है बॉलीवुड को दी हैं जो आज भी एक मील का पत्थर हैं। यादगार फिल्में हैं उनकी जो हम देख सकते हैं। एक नया विषय, एक नई अलग सोच लेकर एक्शन, सामाजिक सरोकार, कॉमेडी, देशभक्ति, पारिवारिक भावना, हर शैली में अलग पहचान है उनकी। इसके लिए उनको पुरस्कार भी मिले, फिल्म फेयर भी मिले, प्रतिष्ठित सम्मान मिले। तो ये और कौन सा ऐसा फिल्म एक्टर है जिन्होंने उनके साथ काम नहीं किया?

आज के कार्यक्रम आज के कलाकार कार्यक्रम संपन्न करने की मनीष उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार, और ये सुनिए आप अंत में गीत।

आज की कलाकार कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के आगरा केंद्र से, और आज इस कार्यक्रम के कलाकार थे राजकुमार संतोषी, निर्देशक के पर यह कार्यक्रम था। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। समसामयिक विषयों पर आधारित ये कार्यक्रम हमारा होता है प्रतिदिन, और आज का इस कार्यक्रम का विषय है सबके लिए सस्ती सुलभ न्याय व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं मनीषा उपाध्याय। दोस्तों, कहा जाता है कि जहां न्याय होता है वहीं विश्वास जन्म लेता है, और जहां विश्वास होता है वहीं एक मजबूत समाज का निर्माण होता है। आज का हमारा विषय है सबके लिए सस्ती सुलभ न्याय व्यवस्था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के अवसर पर हमने प्रस्तुत किया है। न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक हर नागरिक के सम्मान, समान अवसर और अधिकारों की रक्षा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जब समाज का अंतिम व्यक्ति भी बिना भय, बिना भेदभाव और बिना आर्थिक बोझ के न्याय प्राप्त कर सके, तभी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र मजबूत होता है। एक ऐसी न्याय व्यवस्था जहां कानून की पहुंच हर व्यक्ति तक समान रूप से हो, समाज में विश्वास, शांति और सामाजिक समरसता को मजबूत बनाती है। न्याय जितना सरल, सस्ता और समय के अंदर होगा, उतना ही नागरिकों का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा भी बढ़ेगा। तो इन्हीं विचारों को लेकर आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि सस्ती और सुलभ न्याय व्यवस्था

ऐसा क्यों हर नागरिक का अधिकार है और एक विकसित समावेशी भारत के निर्माण में इसकी क्या भूमिका है। तो आइए इसी सकारात्मक सोच के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक गीत के साथ।

दोस्तों, कभी सोचा है न्याय क्यों जरूरी है? कल्पना कीजिए कि ऐसे समाज की जहां नियम तो हो लेकिन उनका पालन कराने वाला कोई तंत्र ना हो, जहां शक्तिशाली व्यक्ति अपनी ताकत के बल पर कमजोरों के अधिकार छीन ले और पीड़ित व्यक्ति अपनी बात कहने का साहस भी ना कर पाए। ऐसे समाज में विकास संभव नहीं है, इसलिए संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है। न्याय केवल अपराधियों को दंड देने का नाम नहीं है, न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, उसके साथ भेदभाव ना हो और यदि उसके साथ अन्याय हो तो उसे समय पर उचित समाधान भी मिले। लेकिन अक्सर लोग यह सोचकर न्यायालय तक नहीं पहुंचते कि मुकदमे बहुत महंगे होते हैं, वर्षों तक चलते हैं और सामान्य व्यक्ति के लिए उन्हें लड़ना आसान नहीं होता। तो यहीं से शुरू होती है सस्ती और सुलभ न्याय व्यवस्था की आवश्यकता। जब न्याय आम आदमी की पहुंच में होगा तभी समाज में कानून के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। सस्ती और सुलभ न्याय व्यवस्था का अर्थ ये है कि न्याय तभी सार्थक है जब वह समय पर मिले। यदि किसी व्यक्ति को अपना हक पाने के लिए वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़े तो न्याय का उद्देश्य कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। आज भारत में न्याय व्यवस्था को अधिक सरल और जनहितकारी बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ई कोर्ट है, ऑनलाइन सुनवाई हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, लोक अदालतें लगाई जाती हैं और जो मध्यस्थता केंद्र भी बनाए गए हैं, और तो और ये निशुल्क विधिक सहायता जैसी व्यवस्थाएं भी इस दिशा में एक बहुत ही खास कदम है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर जो महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं, बड़े वरिष्ठ नागरिक हैं और दिव्यांगजन हैं, समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं, इनके लिए निशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है ताकि आर्थिक स्थिति न्याय पाने में बाधा न बने। न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल विवाद समाप्त करना नहीं बल्कि समाज में विश्वास और शांति स्थापित करना भी है।

दोस्तों, कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन रहे हैं और इसमें हम बात कर रहे हैं न्याय की। तो न्याय केवल अदालत में नहीं, समाज में भी होता है। श्रोताओं, न्याय केवल न्यायालय की चार दीवारी तक सीमित नहीं है। जब हम किसी के साथ ईमानदारी से व्यवहार करते हैं, जब हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, जब हम बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जब हम रिश्वत देने और लेने से इनकार करते हैं, जब हम ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, तब भी हम न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं। एक न्यायप्रिय समाज की शुरुआत घर से होती है। बच्चों को समान अवसर देना, बेटी और बेटे में भेदभाव ना करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना, यही न्याय की पहली पाठशाला है। यदि समाज जागरूक होगा तो अदालतों पर बोझ भी कम होगा और विवाद भी कम होंगे। तो इसके लिए अपने अंदर शक्ति पैदा करें, ताकि हम पहले हम अपने से न्याय की शुरुआत करें।

0: दोस्तों, अब जरा बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की। हर साल 17 जुलाई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2010 में युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित रोम संधि में 1998 को इटली के रोम शहर में अपनाया गया, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई। और इसी ऐतिहासिक दिन की याद में प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को ये संदेश देना है कि न्याय केवल कानून की किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी पहुंच समाज के हर व्यक्ति तक होनी चाहिए, चाहे कोई गरीब हो या अमीर, महिला हो या पुरुष, शहर में रहता हो या गांव में। हर नागरिक को समान और निष्पक्ष न्याय मिलना चाहिए। आखिरकार न्याय वही है जो समय पर मिले, सबके लिए समान हो और हर व्यक्ति की पहुंच में हो। यही संदेश हमें अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर ये दिन देता है। और इस दिन का उद्देश्य विश्व भर में न्याय, मानवाधिकार, कानून के शासन और जवाबदेही के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आज जरूरत है केवल मजबूत कानूनों की ही नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था की भी है जहाँ न्याय गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, शहर, गांव सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। जब न्याय सस्ता होगा, जब न्याय सुलभ होगा, जब न्याय समय पर मिलेगा, तभी समाज में विश्वास, विकास और लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होंगी।
1: बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक बम।

श्रोता, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। तो देखिए, याद रखिए, न्याय केवल अदालत का विषय नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी भी है। यदि हम स्वयं ईमानदार, संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बने तो एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण अपने आप संभव हो जाएगा। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत संपन्न करने की मनीषा उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार, और आप अंत में ये गीत सुनिए।

श्रोताओ, आकाशवाणी के आगरा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। और आज के इस कार्यक्रम का विषय था सबके लिए सस्ती सुलभ न्याय व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर प्रायोजित कार्यक्रम। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एनसीईआरटी का, और सुनिएगा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टि बाधित हूँ और BEd स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
3: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
3: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
3: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ी।

0: लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे, जिन पर अक्षरों को उकेरकर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
1: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
0: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है, जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
1: जी,
0: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
1: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
0: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की

0: उनके फामे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
1: जी श्रोताओ, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी
0: जी।
1: जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
0: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
1: जी तो श्रोताओ, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
0: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ आ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या अब ही थोड़ा सा धीरज तो रखो, अब बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिदित तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है, एशिया, यूरोप, उत्तरी

0: अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
1: रुको रुको, मैं बताती हूँ।
2: तुम बताओ।
1: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
2: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
3: टैथिस महासागर।
2: वाह,
1: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
2: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
1: अलग होकर खिसकने लगे?
2: अरे, एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
1: सर, फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
2: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
0: लेकिन सर, हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
1: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
2: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
0: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
1: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
2: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
1: जी।
2: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
1: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
2: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
1: अच्छा?
2: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
0: सर मैं कुछ बताऊँ इसके बारे में?
2: हाँ बेटा क्यों नहीं।
0: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
2: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया। सर इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
2: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
0: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टैथिस सागर का क्या हुआ?
2: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
0: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
2: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवन

0: बाष्प, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टाने मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टाने भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टाने समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा, तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
1: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
4: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
5: अच्छा।
2: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
4: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
2: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
2: दादी ने पूछा।
4: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
3: अच्छा।
2: दादी काफी प्रभावित हुई।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
2: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गईं, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
4: बस काफी है दादी,
2: उसने रूखे स्वर में कहा।
4: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
3: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
2: दादी ने पूछा।
4: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
3: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने MA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था।

0: मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
1: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
0: बोलो
1: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
0: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
1: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
0: अरे नहीं नहीं,
1: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
2: स्वामी नाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
1: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
0: अच्छा।
1: राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
2: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
0: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
1: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
0: 2 शेर राजम पर झपटे थे,
2: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
1: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
0: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
2: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
1: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
0: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
1: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
0: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
0: तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन

दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप राजित कार्यक्रम एनसीआरटी पर आधारित सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओ, आप हमारी दोपहर की सभा के प्रसारण सुन रहे हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं नई फिल्मों से फिल्म संगीत इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है नए तराने। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं और नई फिल्मों से गीत अब आपके लिए। सबसे पहले गीत फिल्म 15 अगस्त इस फिल्म से लिया है, जिसको आवाज़ दे रही हैं अलका याग्निक और कुमार शानू। संगीत राजन अरविंद का है। श्रोताओ, गीत से पहले एक छोटा सा अंतराल।
4: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
5: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

तुलसी कुमार और केके को अभी आप सुन रहे थे रेडी फिल्म में। नीलेश मिश्रा का लिखा ये गीत था और संगीत प्रीतम का। जहीर अनवर के लिखे शब्दों को संगीत में पिरोया त्रिवेणी भवानी ने और जिसको आवाज़ दे रहे हैं अभिजीत। फिल्म का नाम है मेरे हमसफर। आइए सुनते हैं ये गीत।

ये थे शान और मंजीरा। फिल्म कॉलेज कैंपस में अनवर सागर का लिखा गीत था और संगीत अतुल का। कार्यक्रम का अंतिम गीत सुपारी फिल्म से शेखर और सुनिधि चौहान के स्वर में विशाल का लिखा ये गीत है और विशाल शेखर का संगीत।

शेखर और सुनिधि चौहान के गाए सुपारी फिल्म के गीत के साथ ही नई तरह ने कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी तरह से स्वदेश में बनाई गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे, जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। राष्ट्रपति

द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दौरा भारत के इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,000

0: और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 790 अंक बढ़कर 77,977 जबकि निफ्टी 205 अंक की बढ़त के साथ 24,277 पर कारोबार कर रहा था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. On the occasion, the Prime Minister also dedicated to the nation as well as laid the foundation stone of national highway projects worth over 12,470 crore rupees in Haryana. Mr. Modi dedicated the 157-kilometer-long Delhi-Amritsar-Katra expressway. The Greenfield Corridor forms part of the 667-kilometer Delhi-Amritsar-Katra expressway. The expressway will reduce travel time between Delhi and Katra from nearly 14 hours to about 6 hours, while cutting the Delhi-Amritsar journey from about 8 hours to 4 hours. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said, over the past 12 years, Indian Railway has witnessed major transformation. He noted that Haryana has witnessed a new phase of development in recent years and has moved forward on the path of progress. Mr. Modi added that the launch of the country's first hydrogen train has given Jind the special place in India's history.
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: Speaking on the occasion, Union Railways Minister Ashwini Vaishnav termed the launch of India's first hydrogen-powered train as a historic achievement in the country's technological advancement. He noted that this milestone is the result of a strong national resolve to develop indigenous hydrogen technology. Mr. Vaishnav emphasized that the train is completely environment-friendly with no requirement for diesel or petrol.
3: इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इस टेक्नोलॉजी को अब और दूसरे सेक्टर्स में भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ट्रक इन कार्स, इन स्मॉल फिशिंग बोट्स, इट कैन बी यूज्ड इन लार्ज माइनिंग ट्रक्स, माइनिंग इक्विपमेंट, इट कैन बी यूज्ड इन डिफेंस आल्सो। सो नाउ वी कैन बेसिकली यूज दिस टेक्नोलॉजी इन मल्टीपल सेक्टर्स विदाउट डिपेंडिंग अपॉन एनीबडी।
1: Prime Minister Modi will visit Jalandhar in Punjab this afternoon, where he will inaugurate and lay the foundation stone of rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. Our correspondent reports that these projects are aimed at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. The Directorate General of Maritime Administration has directed ship owners, ship managers and recruitment and placement service license companies to avoid deploying Indian seafarers on vessels undertaking voyages through the Strait of Hormuz until further orders. The Maritime Administration has issued an advisory on precautionary measures for the safety and security of Indian seafarers in view of the heightened security situation in the Gulf region. The government has convened a meeting with the floor leaders of political parties in the parliament this Sunday, ahead of the upcoming monsoon session of parliament. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of parliament. The monsoon session will commence from the 20th of this month and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be

0: taken up for discussion and passage. The Gujarat Anti-Terrorist Squad, ATS, has arrested five persons in connection with its probe into a terror module of the Pakistan-based Jaish-e-Mohammed outfit. The arrested persons were identified as Bilal Abid Bhai Shera, Mohammed Ayub Kadiwala, Mohammed Palanpuri alias Khali Ayub Sunsara, Shafia Rais Mukti and Mohammed Hassan Kardia. The European Union has expressed serious concern over the human rights situation in Pakistan. It has warned that Pakistan's continued access to trade benefits under the Generalized Scheme of Preferences Plus or GSP Plus will depend on its compliance with international commitments under the revised GSP framework from 2027. And with that, we end this news bulletin.
1: अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली हिंदुस्तान की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुकम्मल तौर पर देसी टेक्नोलॉजी के साथ तैयार करदा ये ट्रेन जदीद रेलवे इंजीनियरिंग में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों को जाहिर करती है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान की हाइड्रोजन ट्रेन मेक इन इंडिया की एक बहुत कामयाब मिसाल है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 12 सालों में रेलवे में होने वाली तब्दीलियों के नतीजे में आलमी अदम इस्तेहकाम के दौर में भी रेलवे के ऑपरेशंस मुतासिर नहीं हुए हैं।
2: आज जिंद का हरियाणा का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज यहाँ से देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली है। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेल और सड़क के बुनियादी ढांचे के मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखेंगे। इस दौरान 20 रियासतों में 75 तज़ईन और आराई शुदा स्टेशनों का इफ्तिताह किया जाएगा, जिनमें लखनऊ का ऐशबाग जंक्शन स्टेशन भी शामिल है, जिस पर प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,570 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज शामली जिले में खिताब करते हुए कहा कि इससे कबल अफसानवी अहमियत के कैराना में नकल मकानी होती थी और तरक्याती काम ठप होते थे, लेकिन आज ये शामली एक्सप्रेसवे का संगम बन चुका है। उन्होंने कहा कि अगर यहां के नौजवान ताकत का सही इस्तेमाल किया जाए तो आने वाले वक्त में शामली एनसीआर का सबसे खुशहाल इलाका बन जाएगा।
3: ये विकास का वो मॉडल है जो डबल इंजन सरकार आपको दे रही है, और डबल इंजन सरकार आज एनडीए की डबल इंजन की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो या उनके मार्गदर्शन में चलने वाली यूपी की सरकार, दोनों मिलकर के इस गति को शामली की प्रगति में बदल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ आज तीन अजला के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आला शामली, बिजनौर और गाजियाबाद में तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आला तीनों अजलाओं में अवामी बहबूद की स्कीमों से फायदा उठाने वालों को भी एजाज देंगे और गाजियाबाद में साबिक वजीर राजपाल त्यागी के मुजस्मे की नकाब कुशाई करेंगे। इस दौरे के दौरान वो हुकूमत, इंतजामिया, पुलिस और मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों के साथ मीटिंग भी करेंगे और कांवड़ यात्रा के इनेकाद के सिलसिले में रहनुमा खतूत फराहम करेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आला मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के मुस्तफदीन को कबूलियतनामा, चाबियां, चेक्स और 9 तैनात आंगनवाड़ी कारकुनों को तकरीरी नामे तकसीम करेंगे। जनाब योगी कैराना में रियासती टैक्स महकमे के दफ्तर, कंडीला में वेटनरी अस्पताल, थाना भवन में सरकारी खवातीन के IIT का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को रोबोटिक्स, मसनूई जहानत, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमी कंडक्टर और दीगर उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में कौमी लीडर बनाने के लिए एक जामा एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत दी। कल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की एक जायजा मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि रियासत को न सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज का सारिफ बनने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए बल्कि तहकीक, इख्तिराअत और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का आलमी मरकज भी बनना चाहिए। हैवानात और दूध की तरक्की के वजीर मुमलिकत कृष्णा पासवान ने कल आगरा महकमे के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की। उन्होंने मवेशी पालने से मुतालिक मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के पेशरफ्त का जायजा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि बकरी पालन, भेड़ पालन, मिनी नंदनी गाय स्कीम, नंदनी डेयरी स्कीम और नंद बाबा मिशन जैसी स्कीमों का फायदा

0: ज्यादा से ज्यादा किसानों, मवेशी पालने वालों और मुआशी तौर पर कमजोर तबकात तक पहुंच सके। दुनिया भर में आज इंसाफ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद उन तमाम लोगों को मुत्तहिद करना है जो इंसाफ की हिमायत करने, मुतासिरों के हुकूक को फरोग देने और ऐसे जराइम को रोकने में मदद करने के अफवाह हैं जो दुनिया की अमन, सलामती और फलाह के लिए खतरा है। यह दिन 17 जुलाई 1998 को रोम के आइन को अपनाने की सालगिरह के तौर पर मनाया जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कल रात नीट यूजी 2026 इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया। 11,21,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान पास किया। एनटीए के मुताबिक 58% से ज्यादा कामयाब उम्मीदवार खवातीन थी। 21 जून को होने वाले इम्तिहान में तकरीबन 20 लाख उम्मीदवारों ने शिरकत की। रियासत के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से होने वाली बारिश और डैमों से पानी छोड़ने की वजह से कई नदियों के सतहआब में इजाफा हुआ है। बाराबंकी में दरियाए घाघरा और कुशीनगर में दरियाए गंडक खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। अयोध्या में दरियाए सरयू भी वार्निंग लेवल पर पहुंच गई है। सेंट्रल वाटर कमीशन के जूनियर इंजीनियर आकाश प्रताप ने बताया कि इंतजामिया पानी की सतह की निगरानी कर रही है और अगर जरूरी हुआ तो जरूरी कार्रवाई करेगी। गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिशों के बायस पानी की सतह बुलंद हो गई है। गुज़िश्ता रोज पानी की सतह में तकरीबन 40 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है और अगर बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा तो पानी की सतह में इजाफा जारी रहेगा। वार्निंग लेवल क्रॉस होते ही तमाम मुतल्लिका महकमों को पानी की सतह से आगाह कर दिया जाएगा। महकमा मौसमियात ने आज येलो अलर्ट जारी किया जिसमें रियासत के मगरबी अजला में बारिश और मशरकी इलाकों में तेज बारिश और आसमानी बिजली गिरने की पेशगोई की गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। लीजिए अब सुनिए शहरी महिलाओं का हमारा कार्यक्रम अपराजिता।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, सुनते हैं महिलाओं का कार्यक्रम घर संसार।

नमस्कार मेरी प्यारी सखियों, स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम घर संसार में और मैं आपकी सखी दिव्या। सखियों, न्याय सबका अधिकार है, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये हमारे संविधान की आत्मा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के भारत में, जहां सियासी दबाव, जातिगत समीकरण और सत्ता के खेल हर फैसले को प्रभावित करते हैं, क्या न्याय सच में सबका हक बन पाया है, खासकर महिलाओं के लिए? हाल के सालों में कुछ ऐसे मामले सामने आए जहां न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता साबित की है, और सब कुछ ऐसा, मतलब ऐसे कुछ जगह हैं जहां न्याय मिलने में देरी भी हुई है, लेकिन न्याय मिला ज़रूर है। आइए बात करते हैं उन केसों की जो उम्मीद जगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। कोर्ट ने साफ कहा कि घरेलू हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आर्थिक शोषण भी है, और हर महिला, चाहे वह शादीशुदा हो या नहीं, संरक्षण की हकदार है। राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 2024 में आयोग को 25,000 से अधिक शिकायतें मिली, इनमें से 24% सिर्फ घरेलू हिंसा से जुड़ी थी। ये आंकड़ा बताता है कि महिलाएँ अब चुप नहीं बैठ रहीं, वे न्याय के लिए आवाज़ उठा रही हैं। लेकिन क्या वास्तविकता इतनी सीधी है? जहां राजनीतिक भाषणों में महिला सशक्तिकरण के नारे लगते हैं, वहीं ज़मीनी स्तर पर महिलाओं को न्याय पाने के लिए थाने, अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं। राजनीतिक दबाव, स्थानीय गुंडागर्दी और पुलिस की उदासीनता, ये चुनौतियां आज भी उतनी ही स्थिति को गंभीर बनाती हैं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये साबित किया है कि न्यायपालिका अब भी संविधान की रक्षक है,

0: चाहे वे पॉक्सो के मामले हों या दहेज उत्पीड़न के केस, अदालत ने कई फैसलों में पीड़ित महिलाओं के पक्ष में सख्त रुख अपनाया है। लेकिन सच यह भी है कि साल 2024 के NSW यानी कि महिला संरक्षण जो है आयोग है, उसके डेटा के मुताबिक दहेज उत्पीड़न और इज्जत की रक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा गंभीर चिंता बनी हुई है। महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या और शवों के साथ बर्बरता, ये घटनाएं हमारे समाज का वो काला पहलू है जिसे हम आज भी देख पाते हैं। और अगर हम आज के समय की बात करें तो कई केसेस हैं जिनमें न्याय प्रक्रिया का धीमा होना सामने आता है। आज भी दहेज उत्पीड़न के लिए जान गंवाती महिलाएं, बलात्कार के मामले में बहुत जल्दी न्याय नहीं मिल पाता, जिस वजह से ऐसी घटनाएं हम आए दिन सुनते हैं। न्याय पर सबका अधिकार है, चाहे वे महिलाएं हों, चाहे वे पुरुष हों, चाहे वे बच्चे हों, पर जिस तेज़ी से अन्याय बढ़ता है उस तेज़ी से न्याय मिलता दिखाई नहीं देता। आज के प्रसंग में बात करें तो साइबर क्राइम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जितनी तेज़ी से क्राइम बढ़ रहा है उतनी तेज़ी से न्याय प्रक्रिया को भी तेज़ होना होगा, तभी न्याय सब तक पहुंच पाएगा और जल्द से जल्द पहुंच पाएगा। तभी हम कह पाएंगे कि न्याय पर सबका अधिकार है। और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि सज़ा इतनी कठोर और सटीक हो कि व्यक्ति कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचे, तभी इस बढ़ते क्राइम को हम रोक पाएंगे और असल मायने में अन्याय मुक्त देश में रह पाएंगे। और सखियों, अन्याय मुक्त देश में हर तरफ प्रेम और अपनेपन का ही माहौल होता है, सब एक दूसरे के साथ खुशहाली से जीते हैं, तभी देश न्याय मुक्त और अच्छा कहलाता है। इन्हीं बातों को अपनी मधुर आवाज़ में पिरो के लाई हैं रज़िया खान जी, तो आइए सुनते हैं उनकी सुरीली आवाज़।
1: कुछ गीत कुछ दोहे लेकर हाजिर हुई हूँ आकाशवाणी आगरा केंद्र से, सुनिएगा। हर्षित

कुछ तो कर ले कार्य, नहीं यूं व्यर्थ समय जाने दे। मुश्किल हो या सरल राह में

टंगा रहता है, रंग भरो खाली खाली ये बात यही कहता है। दूसरा वन देखेंगे। हो जितनी भी चाहे अड़चन, लड़कर विजय करेंगे। हो जितनी भी चाहे अड़चन, लड़कर विजय करेंगे। मिले पराजय हर दुश्मन को, खुद को अजय करेंगे। मिले पराजय हर दुश्मन।

सज्जित मन हो मन कण कण दहता है। सुंदर सा एक चित्र हृदय के द्वार टंगा रहता है। सुंदर सा एक चित्र हृदय के द्वार टंगा रहता है। रंग भरो खाली खाली है बात यही कहता है। गीत का अंतिम बंद है। हिंदू मुस्लिम या कि सिख तो

भाई। हिंसा अत्याचार द्वेष के भाव न आए मन में, होगी इनकी स्वयं पराजय क्लेश नहीं जीवन में, होगी इनकी स्वयं पराजय क्लेश नहीं जीवन में। खुशियों की सौ

0: रहता है। शुक्रिया।
1: सखियों, आशा करती हूँ आप समझे होंगे कि देश तभी समृद्ध और खुशहाल होता है जब सब में प्रेम, भाईचारा और देश के लिए अपनापन हो, साथ ही साथ अपने लोगों के लिए भी प्रेम हो। और देश के लिए प्रेम जब होता है तब हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो इतिहास लिख देता है। तो सखियों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपने बल्ले से ना सिर्फ रिकॉर्ड बनाए बल्कि लाखों लड़कियों के सपने को पंख दिए और जिसके अंदर देश के लिए जीने का अलग ही जज्बा।

हुआ था। बात है 18 जुलाई 1996 की मुंबई में एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया स्मृति मंधाना। पर स्मृति मुंबई में ज़्यादा दिन नहीं रही। 2 साल की उम्र में उनका परिवार महाराष्ट्र के संगली जिले माधव नगर चला गया और वहीं से शुरू हुआ एक सफ़र। स्मृति के पिता श्रीनिवास और माता स्मिता ने कभी उन्हें रोका नहीं, बल्कि हर कदम पर उनका साथ दिया। लेकिन असली प्रेरणा मिली उनको उनके बड़े भाई श्रवण से। भाई क्रिकेट खेलते थे और छोटी स्मृति बड़े चाव से उन्हें देखती, स्टेडियम में, घर के आंगन में, हर जगह। जल्द ही बैटिंग का शौक जुनून में बदल गया। स्मृति मंधाना महज 11 साल की थी जब उनका चयन हो गया महाराष्ट्र अंडर 19 टीम में। ज़रा सोचिए, 11 साल की उम्र में हम स्कूल की कॉपियां भरते थे और वो अपने सपनों को पकड़ने के लिए क्रिकेट के मैदान में उतरी थी। और फिर 16 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू। हाँ, स्मृति ने महज 16 साल की उम्र में भारत के लिए खेलना शुरू कर दिया। अब ये छोटी सी बच्ची पूरे देश की उम्मीद बन चुकी थी। स्मृति मंधाना के नाम आज ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। वे पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, वनडे और T20 में शतक जमाया। सबसे तेज़ वनडे शतक भारतीय महिला क्रिकेट इतिहास में उनके नाम है। वे पहली भारतीय महिला जिन्होंने पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाया। और 2025 में जब भारत ने ICC महिला विश्व कप जीता, स्मृति उस जीत का एक अहम हिस्सा थी। लेकिन यह सफ़र फूलों से की सेज सा नहीं था। एक महिला क्रिकेटर के तौर पर चुनौतियां अनगिनत थीं। कम सुविधाएं, कम मीडिया कवरेज और कई बार वो संघर्ष जो बाहर कोई नहीं देखता। पर स्मृति हार मानने वालों में से नहीं। उन्होंने सिर्फ क्रिकेट खेला नहीं, उन्होंने क्रिकेट को अपनी ज़िंदगी बना लिया। आज वो RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान हैं और 2024 में उन्होंने महिला प्रीमियर लीग का खिताब भी जीता। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड वो बार बार अपने नाम कर चुकी हैं। स्मृति मंधाना की कहानी सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं, ये हर उस लड़की की कहानी है जो सुनना चाहती है, हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। आज पूरा भारत उन्हें प्यार से नेशनल क्रश कहता है, लेकिन असल में वो क्रश नहीं, एक नेशनल प्राइड है। तो अगली बार जब आप अपनी बेटी, बहन या पड़ोस की किसी भी लड़की को कोई सपना देखते हुए देखे, तो ये याद रखिएगा कि वो भी कहीं ना कहीं स्मृति मंधाना से प्रेरित हो सकती है या आगे चल के उनकी तरह ही बन सकती है। जिन्होंने 11 साल की उम्र में बल्ला थामा, 16 में देश के लिए खेला और आज दुनिया भर की लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई। और याद रखिए, सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, बस हौसला चाहिए। और वो स्मृति मंधाना के पास भरपूर था। और मुझे लगता है हर जीत के बाद उनको ये गाना सुनने में बड़ा अच्छा लगता होगा, शायद यही गाना उनके दिल में जुनून पैदा करता होगा।

तो सखियो, अब हम कुछ बात करेंगे ऐसी जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है, हमारे शरीर से रिलेटेड है। अक्सर क्या है कि हम चेहरे, बाल और हाथ की साफ़ सफाई पर तो बिल्कुल ध्यान देते हैं, लेकिन हमारे जो पैर हैं, जो पूरे दिन हमारा बोझ उठाते हैं, वो अक्सर नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि पैरों की सफाई कैसे करनी है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, पैरों को रोज़ गुनगुने पानी और हल्के साबुन से धोएं। खास तौर पर पैर की उंगलियों के बीच का हिस्सा, वहाँ नमी और गंदगी जल्दी जमा होती है। धोने के बाद पैरों को साफ़ तौलिए से अच्छी तरह सुखाएं, खासकर उंगलियों के बीच में। अगर आप दिन भर मोजे या जूते पहनती हैं तो कोशिश करें कि दिन में एक बार पैरों को हवा ज़रूर लगाएं। पैरों में पसीना और नमी होना आम है, लेकिन इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो बदबू और अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। सूती मोजे पहने, वो पसीना सोखते हैं। पैरों पर फुट पाउडर या एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल करें। जूतों को एक दिन छोड़कर पहनें, एक ही जूता रोज ना पहनें। इससे क्या होगा, जूतों में जो पसीना इकट्ठा हो जाता है या जो भी गंदगी इकट्ठी हो जाती है, उसको सूखने का समय मिलेगा। तो हर दिन अलग अलग जूता पहनें अगर आप जूता पहनती हैं तो। पैरों के नाखूनों को नियमित रूप से काटें, लेकिन बहुत छोटा भी ना काटें, और कोनों के जो गोल है ना, उन्हें बनाए रखें। इससे नाखून अंदर से नहीं भरेंगे, जिनको इनग्रोन टूनेल कहा जाता है, कई लोगों को इसकी समस्या होती है। अब ये तो पैर के ऊपरी रखरखाव की बात हो गई। सबसे ज़रूरी है वो है एड़ियों की देखभाल। एड़ियाँ फटने से बचने के लिए रात को सोने से पहले मॉइस्चराइज़र या नारियल का तेल लगाएं और मोज़े पहनकर सोएं। अगर आप मोज़े पहनकर सोना कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप खुला भी रख के सो सकती हैं। हफ्ते में एक बार गुनगुने पानी में सेंधा नमक या इप्सम सॉल्ट डालकर पैरों को 10 से 15 मिनट भिगोएं। ये थकान भी दूर करता है। इप्सम सॉल्ट में जब आप अपने पैर 10 से 15 मिनट तक भिगो लें, उसके बाद अपने पैरों को अच्छे से किसी क्रीम से या तेल से मसाज करें, जिससे आपकी पूरे हफ्ते की थकान उतर जाए। अगर पैरों की उंगलियों के बीच खुजली, लालिमा, जलन या दाने हैं, या नाखूनों का रंग पीला या नाखून मोटे हो रहे हैं, तो ये फंगल इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लें। जूते और मोजे जो भी आप नियमित रूप से इस्तेमाल करती हैं, उनका अच्छे से रखरखाव करें। उन्हें भी ध्यान से देखें कि कहीं उनमें कोई गंदगी तो नहीं है, और अपने पैरों का तौलिया अलग रखें। याद रखें सखियों, पैरों की साफ़ सफाई सिर्फ बदबू ना आए इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए भी है कि आप फंगल इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन जैसी बीमारियों से भी बच सकें। रोज़ के बस 5 मिनट और आपके पैर हेल्दी रहेंगे।

तरोताज़ा रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर ऑफिस जाती हैं, आप घर का काम करती हैं, आप कुछ भी काम करती हैं, तो अपने पैरों की थकावट देखें। आप इन्हीं पे खड़े रहते हैं पूरे दिन, इनका देखभाल करना आपकी ज़िम्मेदारी है और अच्छे से इनकी साफ़ सफाई करा करें। तो सखियों, अब इसके बाद हम ले लेते हैं एक अंतराल और मिलते हैं अंतराल के उस पार।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: सखियों, स्वागत है फिर से आपका आपके कार्यक्रम घर संसार में। सखियों, हम सभी लड़कियों का एक बहुत मतलब प्रिय दुख है, वो दुख ये है कि हमारे बाल लंबे नहीं होते, घने नहीं होते, इस बात से हम दुखी रहते हैं। चाहे हमारे बाल कितने ही अच्छे मिले हों हमें, लेकिन हमें चाहिए कि और लंबे हो जाएं, और घने हो जाएं, और काले हो जाएं, और इसके लिए हम ना जाने कितने तेल, शैम्पू, कंडीशनर सब इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हमारे बाल बहुत सुंदर दिखें, बहुत घने दिखें और बहुत अच्छे दिखें। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इन सबसे बेहतर ये है कि हम अपनी डाइट पे ध्यान दें। हम अपनी डाइट को अच्छा रखेंगे तो वो हमारे चेहरे पे, हमारे बालों पे अपने आप ही नज़र आएगा। हमारे बाल अपने आप ही लंबे होंगे, घने होंगे, काले होंगे। अब काले पे मैं ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज है ना, हम आपको रेसिपी टाइम के तहत ना सिखा रहे हैं काले तिल के लड्डू बनाना। सफ़ेद नहीं, काले तिल के लड्डू। ये काले तिल आपके बालों को एक नया कालापन भी देंगे, घनापन भी देंगे, लंबापन भी देंगे। तो आइए इनको बनाने की विधि सीख लेते हैं और क्या क्या चाहिए ये भी जान लेते हैं। चाहिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको चाहिए काले तिल वो तो चाहिए, दूसरा आपको चाहिए कद्दू के बीज और कलौंजी। ठीक है, आप चाहे तो और भी बीज ले सकते हैं, अगर आपका मन है तो आप सूरजमुखी के बीज भी ले सकते हैं, खरबूजे के बीज भी ले सकते हैं, अलसी के भी ले सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन काले तिल और कद्दू के बीज तो ज़रूर ही ज़रूर लेने हैं। आपको क्या करना है, काले तिल के बीज और कद्दू को बीज में बराबर मात्रा में लेना है और उनको क्या बोलते हैं, गैस पे धीमी आंच पे थोड़ा सा रोस्ट करना है, थोड़ा सा भुनना है जितने में स्मेल आ जाए। साथ में आधे कलौंजी के बीज लेने हैं। तो अगर आप 100 ग्राम काले तिल के बीज ले रही हैं तो 100 ग्राम आपको कद्दू के बीज लेने हैं और 50 ग्राम कलौंजी के। ठीक है, इनको हल्का सा भून लीजिए, जैसे ही खुशबू आने लगी गैस बंद कर दीजिए, 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। उसके बाद आप इन सबको एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में चलाएंगे। मिक्सर ग्राइंडर में जब आप चलाएंगे तो पहले थोड़ा दरदरा होगा, फिर धीरे धीरे ये एक पेस्ट के फॉर्म में चेंज होता जाएगा। जब ये पेस्ट के फॉर्म में चेंज हो जाए तब इसे मीठा करने के लिए, अगर आप ऐसे ही खा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा मीठा हो तो आप इसमें या तो शहद डाल सकती हैं जितना आपको लगता है, या 2 से 4 खजूर भी डाल सकती हैं। फिर आप इसको जब चलाएंगी तो ये एक लड्डू का टेक्सचर अपने आप ही ले लेगा और लड्डू में खुद ही परिवर्तित होने लगेगा। फिर आप इसको निकाल के मिक्सर से लड्डू बना के फ्रीज में स्टोर करके रख सकती हैं, और जब आप खाना खा लें उसके बाद आप इन एक लड्डू का सेवन करें और ये लड्डू आपको कैल्शियम पोटाशियम दोनों देगा। इससे आपकी नींद भी बेहतर होगी, आपकी नींद बेहतर होगी, आपकी स्लीप साइकिल अच्छी होगी, तो आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करेगी और आपके बालों को भी सही मायने में न्यूट्रिशन मिलेगा। इसमें अच्छा कैल्शियम और पोटेशियम होता है जो आपकी हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है, और ये बहुत अच्छे लड्डू हैं। अगर आप इन्हें खाएंगे तो आपको आगे चलने वाली होने वाली दिक्कतों से भी निवारण होगा। आप महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, कैल्शियम की कमी बहुत होती है, इसलिए जो काला तिल होता है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, तो इसलिए काले तिल के लड्डू आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। सिर्फ बालों के लिए नहीं, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए, आपकी पूरी शरीर के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो मैं आशा करती हूँ अपनी सखियों से कि वो इन लड्डुओं को ज़रूर बनाएंगी और खाएंगी, इनका सेवन करेंगी। आप इसको जीवन पर्यंत खाइए।

ये बहुत स्वास्थ्यवर्धक हैं। आप चाहे तो एक महीने के बाद थोड़ा गैप भी ले सकती हैं, 15 दिन बाद फिर से इन्हें शुरू कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आपकी सखी दिव्या आपसे विदा लेती है और आपसे मिलने का वादा करती है। नमस्कार।

अभी आपने महिलाओं का कार्यक्रम घर संसार सुना आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, 1:45 हो चुका है और ये समय होता है सुगम संगीत का। तो आइए इस कार्यक्रम में मोहम्मद रफ़ी की गाए कुछ गज़लें आपको सुनवाते हैं।

सुदर्शन फाकर के लिखी इस गज़ल के साथ ही, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने, इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: Tokyo. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
2: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल, इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
3: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
1: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
4: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान

0: चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
2: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म और मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी।

0: ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित GSP ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित ये प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुस जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब हम आपको सुनवाते हैं। इस कार्यक्रम में विदुषी गिरिजा देवी प्रस्तुत कर रही हैं गायन, जिसके बोल हैं बाबुल मोरा।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने ठुमरी सुनी विदुषी गिरजा देवी से, जिसके बोल थे बाबुल मोरा। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से आइए अब आपको सुनवाते हैं पुरानी फिल्मों से ये गीत कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में।

ये थी मुकेश अनुराग फिल्में, अभी आपने सुना इन्हें। इंदीवर की रचना थी और संगीत रचना मुकेश की। अपनापन, इस फिल्म में आई सुनते हैं आशा भोसले को। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत डकैत फिल्म से अभी आप सुन रहे हैं आशा भोसले और सुरेश वाडेकर के स्वर में, आनंद बख्शी की शब्द रचना और संगीत रचना आर डी बर्मन की।

0: इंसाफ से ही कायम है दुनिया का निज़ाम। मकाला निगार हैं ज़ेबा फारूकी।
1: आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है इंसाफ से ही कायम है दुनिया का निज़ाम। गुफ्तगू का आगाज करते हुए मैं उर्दू के मशहूर अदीब ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की तवील नज़्म मनाज़िरे रहमो इंसाफ से कुछ अशार पेश करना चाहूँगी। मौलाना हाली के ये अशार इंसाफ की बुनियादी सरिश्त को नहायत आसान जबान में बयान करते हैं। इस नज़्म में रहम और इंसाफ को दो किरदारों की शक्ल में पेश किया गया है, जिसमें रहम इंसाफ से उसकी शोहरत और नेक नामी की वजह इन अल्फाज में दरियाफ्त करता है। एक दिन रहम ने इंसाफ से जाकर पूछा, क्या सबब है कि तेरा नाम है दुनिया में बड़ा? दोस्ती से तुझे दोस्तों की काम नहीं, आँख में तेरी मुरव्वत का कहीं नाम नहीं, अपने बेगाने हैं सब तेरी नज़र में यकसां, दोस्त को फ़ायदा है तुझसे न दुश्मन को ज़यां, जान और माल से नमरूद को खोया तूने और फिरौन को दरिया में डुबोया तूने, फौज रावण की लड़ाई में खपाई किसने, आग लंका में सिवा तेरे लगाई किसने, कांपते आते हैं महफिल में तेरी शाहो गदा, तुझसे थर्राते हैं अहबाब हों या हों अजदा, जान पहचान का साथी है न अनजान का दोस्त, यार हिंदू का है तू और न मुसलमान का दोस्त, नहीं जायज तेरे मजहब में किसी की इमदाद, तेरे नज़दीक बराबर हैं गुलाम और आज़ाद। हाली की नज़्म मनाज़िर रहम व इंसाफ के ये अशार अदल व इंसाफ की बुनियादी खूबियों की जानिब हमारी रहनुमाई करते हैं। इंसाफ यानि सही और गलत में इम्तियाज कायम करना, हक़ की राह में पेश कदमी करते हुए किसी भी किस्म की जज्बातियत, दोस्ती या दुश्मनी से परहेज करना, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, बिला तफरीक हैसियत व दौलत, दलाइल की रोशनी में हकदार को उसका जायज़ हक दिलाना और कसूरवार को उसके अंजाम तक पहुँचाना। इंसाफ के मानी ये हैं कि तमाम अशखास के साथ बराबरी का सलूक किया जाए, मजलूम की फरियाद पर तवज्जो दी जाए और मुजरिम को कानून के मुताबिक सजा दी जाए। इंसाफ हाकिम और महकूम के दरमियान खलीज को कम करता है। जिस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होता है वहाँ अमनो अमान कायम होता है, लिहाजा खुशहाली और तरक्की के दर वाह होते हैं। एक सेहतमंद माशरा वजूद में आता है जहाँ अवाम पुरसकून और हाकिम की हमनवा होती है, लोग कानून और अदालत पर एतमाद करते हैं जिससे जराइम में कमी आती है, मजलूम को अमान मिलती है, कमज़ोर अफराद भी अपने हकूक़ हासिल करने का यकीन रखते हैं क्योंकि कानून की निगाह में ताकतवर और कमज़ोर सब बराबर होते हैं। अगर एहतसाब का अंदेशा हो तो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल होने के इम्कानात भी कम हो जाते हैं, तिजारत और रोज़गार के मौके में इजाफा होता है क्योंकि लोगों को निज़ाम पर एतमाद होता है, लिहाजा मुल्क माशरा माशी व इक्तसादी तरक्की की राह पर गामजन होता है, समाजी हम आहंगी पैदा होती है, मुख्तलिफ तबकात और बिरादरियों के दरमियान एतबार और तआवुन में इजाफा होता है। इसके बरक्स अगर हाकिम इंसाफ के तई लापरवाह हों तो इससे मुल्क माशरे का नज्म व नस्क और तमद्दुन बिखरने में ज्यादा देर नहीं लगती। एक मुनसिफाना माहौल में जहाँ रियाया को हुक्काम के अदल पर भरोसा होता है, आज़ादी राय का हक हासिल होता है और इत्तेहाद व मसावात तरक्की के मौके की फराहमी की जमानत होते हैं, वहीं इंसाफ का फुकदान मुल्क कौम के तनज़ुल का सबब बनता है। जुर्म को पेशकदमी का मौका मिल जाता है क्योंकि हुक्काम और अदलिया पर से अवाम का भरोसा जायल होने लगता है, बदउनवानियों के नतीजे में इत्तेहाद की डोर कमज़ोर पड़ने लगती है। इंसाफ किसी भी मुल्क व माशरे की बुनियाद है। इंसाफ का तकाजा है कि हुक्काम भी कानून की जद से बाहर न हों बल्कि कौम के रहनुमा होने के बाइस उनकी जवाबदेही, उनके किरदार, गुफ्तार, इफ़ाल और एमाल के तई और भी बढ़ जाती है। माशरे में नज़्म व नस्क की पायदारी के लिए माशरे के रहनुमाओं की जिम्मेदारी बहुत अहम है। माशरे में साजगार फ़जा कायम रखने और नज़्म व नस्क बरकरार रखने में हमारे अदीबों का रोल भी बेहद अहमियत का हामिल है। अदब समाज का आईना होता है और अदीब की यह जिम्मेदारी है कि वो न सिर्फ समाजी हकायक को संजीदगी के साथ अपनी तख्लीकात में पेश करे बल्कि अपनी कलम के

इसके साथ ही कार्यक्रम भूले बिस्तरे की कब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। पेश है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। इस कार्यक्रम में हम आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं मकाला।

जरिए माशरे की बदउनवानियों की निशानदही करे और अपने कलम के जरिए अमन व इंसाफ की तरवीज में हिस्सा ले। तारीख गवाह है कि जब भी ज़रूरत हुई, हमारे अदीबों ने, खा वो किसी भी जबान से ताल्लुक़ रखते हों, अपने किरदार को बखूबी अंजाम दिया है। जिस वक्त हिंदुस्तान में बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी की जद्दोजहद ज़ोरों पर थी, हमारे अदीबों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी वगैरह तमाम जबानों में नज़्म और नसर में ऐसे अदब की तख्लीक की जो आवाम को गुलामी से नजात हासिल करने की तरगीब दे और उनके दिलों में आज़ादी की शमा को रोशन करे। इस मौके पर जोश मलिहाबादी की नज्म शिकस्ते जिंदा का ख्वाब का जिक्र बेमहल न होगा, जिसका हर एक शेर आज़ादी की तड़प से मामूर है। इस नज़्म में उन्होंने हिंदुस्तान को एक कैदखाने से तशबीह दी है, जिसके कैदी अब गुलामी का तौक उतार फेंकने को

0: का ख्वाब का जिक्र बेमहल न होगा जिसका हर एक शेर आज़ादी की तड़प से मामूर है। इस नज़्म में उन्होंने हिंदुस्तान को एक कैद खाने से तशबीह दी है जिसके कैदी अब गुलामी का तौक उतार फेंकने को बेकरार हैं। मुलाहिजा हूँ इस नज़्म के चंद अशआर। क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है, गूंज रही हैं तकबीरें, उकताए हैं शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। दीवारों के नीचे आ आकर यूं जमा हुए हैं जिंदानी, सीनों में तला तुम बिजली का, आंखों में चमकती शमशीरें। हमारे अदीबों ने मुल्क की जंग आज़ादी में कौम मिल्लत की रहनुमाई के फ़राइज़ बहुस्न खूबी अंजाम दिए। साथ ही इंसान दोस्ती, इत्तेहाद, यगानगत, अमन, खैर सगाली, मोहब्बत, मजहबी रवादारी और हकूक इंसानी का परचम हमेशा बुलंद रखा। अल्लामा इकबाल की नज़्म नया शिवाला इसकी बेहतरीन मिसाल है। चंद अशार पेशे खिदमत हैं। आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दूई मिटा दें, सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शिवाला इस देश में बना दें। दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीर्थ, दामाने आसमां से इसका कलश मिला दें। इस किस्म के अशार, या यूं कहें कि इस किस्म के जज्बात का इजहार हमारे अक्सर व बेशतर अदीबों ने हर अहद में किया है। मौजूदा दौर में अदीबों की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है कि वो एक सेहतमंद व मुनसिफाना माशरे की तश्कील में शरीकेकार हों, क्योंकि इसके बगैर मुल्क की तरक्की का ख्वाब बईद अज़िम का है। इंसाफ का बर वक्त हुसूल, मसावात, हम आहंगी और जरायम की रोकथाम ही मुल्क माशरे की तरक्की की जामिन है। कोई भी मुल्क या माशरा तभी हकीकी मानों में तरक्की याफ्ता कहलाने का मुस्तहिक है जब वहाँ सेहतमंद अकदार का दौर दौरा हो, और ये तभी मुमकिन है जब आवाम खुद को महफूज तसव्वुर करें, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानून की गिरफ्त सख्त हो, और नस्ल, जात, इलाका और अकीदे की बुनियाद पर किसी के साथ इम्तियाज न बरता जाए। इंसाफ महज मुजरिम को सजा देने का नाम नहीं, बल्कि मुतासिर अशखास को राहत पहुँचाना और माशरे में तवाजुन बरकरार रखना भी इसका लाजमी हिस्सा है। इंसाफ पसंदी के बगैर किसी भी मुल्क के लिए खुशहाली, अमन सलामती, तालीम के फरोग और जहालत का खात्मा मुमकिन नहीं। दुनिया के ताकतवर ममालिक के सफ में शामिल होने के लिए ज़रूरी है कि सभी को यकसां हकूक दिए जाएं और अदलो इंसाफ को तरजीह दी जाए। इंसाफ गैर जानिबदाराना, शफाफ और बर वक्त होना चाहिए और हर फर्द को यकसां तौर पर मयसर होना चाहिए। नज़्म व नस्क के क़याम में पुलिस और अदलिया का किरदार सबसे अहम होता है। पुलिस क़वानीन को नाफिस करने की जिम्मेदार है और जराइम की तहकीकात करके असल मुजरिम को कानून की गिरफ्त में लाती है। दूसरी जानिब अदलिया मुनसिफाना गौर व फिक्र के बाद मुलजिम को गुनाह का मुर्तकब ठहराती है या बरी करती है, जिसका मकसद असल मुजरिम को सजा और मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी होता है। दुनिया में इंसाफ की बका और मुख्तलिफ अकवाम व ममालिक के दरमियान नज़्म व नस्क और हम आहंगी कायम रखने के लिए आलमी सतह पर बैनुल अक्वामी अदलिया यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और बैनुल अक्वामी पुलिस तंजीम इंटरपोल या इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का क्याम किया गया है। इंटरपोल दुनिया की सबसे बड़ी बैनुल अक्वामी पुलिस तंजीम है जिसकी बुनियाद 1923 में वियना में रखी गई थी। ये तंजीम अपने 196 मेंबरान ममालिक की पुलिस के साथ आलमी तआवुन को फरोग देती है ताकि मेंबरान ममालिक की सरहद से बाहर होने वाले जराइम को काबू किया जा सके और उनके खिलाफ मोअस्सर कार्रवाई की जा सके। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या बैनुल अक्वामी अदालत अक्वामे मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस का मरकजी अदालती अदारा है जो इसके अराकीन ममालिक के दरमियान कानूनी तनाज़ुआत का फैसला करता है और बैनुल अक्वामी कवानीन, मामलात और इख्तलाफात के मुतालिक अहम मशवरे फराहम करता है। बैनुल अक्वामी अदालत इंसाफ अक्वामे मुत्तहिदा के मंशूर के तहत जून 1945 में कायम की गई थी। इन दोनों बैनुल अक्वामी इदारों का मकसद आलमी तौर पर इंसाफ का माहौल बनाना और अमन आश्ती कायम रखना है, क्योंकि दो आलमी जंगों के बाद पूरी दुनिया इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि इंसाफ से ही कायम है दुनिया का निजाम। शुक्रिया।
1: इंसाफ से ही कायम है दुनिया का निजाम, ये मकाला भी आपने ज़ेवा फारूकी से सुना। आइए अब सुनते हैं कलाम शायर में साजिद अली को।
2: चार मिसरे हाजिर करता हूँ। कौमी एकजहती के लिए कि खून की

इसको अगर मेरी जरूरत होगी, खून की इसको अगर मेरी जरूरत होगी, एक एक कतरा बहा दूंगा बदन से अपने। खून की इसको अगर मेरी जरूरत होगी, एक एक कतरा बहा दूंगा बदन से अपने। मर भी जाएगा तो छूटेगा ना दामन इसका, इस कदर प्यार है चाहत को वतन से अपने। मर भी जाएगा तो छूटेगा ना दामन इसका, इस कदर प्यार है चाहत को वतन से अपने। चार मिसरे और हाजिर खिदमत हैं हमारे देश की तमाम अवाम के लिए, कि शाखों से शाखें टकराती रहती हैं, शाखों से शाखें टकराती रहती हैं, तेज हवाएं शोर मचाती रहती हैं। शाखों से शाखें टकराती रहती हैं, तेज हवाएं शोर मचाती रहती हैं। हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर रहना है, हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर रहना है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर रहना है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं। और चार मिसरे और हवाले करता हूं अपने वतन के हवाले, वतन के तमाम अवाम के हवाले। कहा है कि नफरतों के सारे बंधन तोड़कर आगे चलो, नफरतों के सारे बंधन तोड़कर आगे बढ़ें, नफरतों के सारे बंधन तोड़कर आगे बढ़ें। दिल में रखें एकता उल्फत मोहब्बत का ख्याल, दिल में रखें एकता उल्फत मोहब्बत का ख्याल। मुस्लिमों को चाहिए मंदिर की रखवाली करें, मुस्लिमों को चाहिए मंदिर की रखवाली करें। और हिंदू भी रखें मस्जिद की अजमत का ख्याल, और हिंदू भी रखें मस्जिद की अजमत का ख्याल। नफरतों के सारे बंधन तोड़कर आगे बढ़ें, दिल में रखें एकता उल्फत मोहब्बत का ख्याल। यहां से एक गजल का मतलब दो तीन शेर हाजिर खिदमत करता हूं। कहा है कि किसी की याद में बेकल नहीं है, किसी की याद में बेकल नहीं है, वो पागल है मगर पागल नहीं है, वो पागल है मगर पागल नहीं है। संभल कर कश्तियां साहिल से खोलो, संभल कर कश्तियां साहिल से खोलो, समंदर में अभी हलचल नहीं है। संभल कर कश्तियां साहिल के से खोलो, समंदर में अभी हलचल नहीं है। तेरे पास आऊं तुझको छू के देखूं, तेरे पास आऊं तुझको छू के देखूं, मेरी किस्मत में ऐसा पल नहीं है, मेरी किस्मत में ऐसा पल नहीं है। इन्हें इतनी हिफाजत से न रखना, इस शेर की और हिफाजत करें दोस्तों, कि इन्हें इतनी हिफाजत से न रखना, मेरे आंसू हैं गंगा जल नहीं है। इन्हें इतनी हिफाजत से न रखना, मेरे आंसू हैं गंगा जल नहीं है, गंगा जल नहीं है। कसौटी पर कसो किरदार मेरा, ये सोना है मियाँ पीतल नहीं है, ये सोना है मियाँ पीतल नहीं है। और मतलब दो तीन शेर हाजिर करता हूँ कि आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, जिंदगी का कोई तो मयार होना चाहिए, जिंदगी का कोई तो मयार होना चाहिए। इस तरह मंजिल को पाने का मजा कुछ और है, इस तरह मंजिल को पाने का मजा कुछ और है। रास्ता आसा नहीं दुश्वार होना चाहिए, रास्ता आसा नहीं दुश्वार होना चाहिए। गर नहीं है जिस्म में ताकत तो कोई गम नहीं, गर नहीं है जिस्म में ताकत तो कोई गम नहीं। आदमी को आदमी का हौसला बेदार होना चाहिए, गर नहीं है जिस्म में ताकत तो कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। आदमी का हौसला बेदार होना चाहिए। बागवां गुलशन के फूलों की हिफाजत के लिए, बागवां गुलशन के फूलों की हिफाजत के लिए, फूल की शाखों को भी तलवार होना चाहिए, फूल की शाखों को भी तलवार होना चाहिए, फूल की शाखों को भी तलवार होना चाहिए। एक मतलब तो तीन शेर और हाजिर खिदमत करता हूँ कि मेरी कश्ती मेरे अहबाब को न जाने क्यों ये बात खलती है।

0: मेरे अहबाब को न जाने क्यों ये बात खलती है, मेरी कश्ती समंदर में नहीं सहरा में चलती है। मेरे अहबाब को न जाने क्यों ये बात खलती है, मेरी कश्ती समंदर में नहीं सहरा में चलती है। जलाकर राख न कर दे तेरी हस्ती को ऐ नादा, जलाकर राख न कर दे तेरी हस्ती को ऐ नादा। तेरे लहजे से हरदम आग नफरत की, तेरे लहजे से हरदम आग नफरत की निकलती है। जलाकर राख ना कर दे तेरी हस्ती को ऐ नादा, तेरे लहजे से हरदम आग नफरत की निकलती है। मोहब्बत पर लगाकर उड़ रही है आसमानों पर, मोहब्बत पर लगाकर उड़ रही है आसमानों पर, मोहब्बत पर लगाकर उड़ रही है आसमानों पर, मगर नफरत तुम्हारी आज भी घुटनों पे चलती है। मोहब्बत पर लगाकर उड़ रही है आसमानों पर, मगर नफरत तुम्हारी आज भी घुटनों पे चलती है, मगर नफरत तुम्हारी आज भी घुटनों पे चलती है। अजब हैं लोग परों में उड़ान ढूंढते हैं, अजब हैं लोग, अजब हैं लोग परों में उड़ान ढूंढते हैं। जमीन वाले कहीं आसमान ढूंढते हैं, जमीन वाले कहीं आसमान ढूंढते हैं। हमारे घर में सियासत के जो खिलाड़ी हैं, हमारे घर में सियासत के जो खिलाड़ी हैं, वो रहनुमा भी कोई बेजबान ढूंढते हैं। हमारे घर में सियासत के जो खिलाड़ी हैं, वो रहनुमा भी कोई बेजबान ढूंढते हैं। हम ही लगे हैं जहां से इसे मिटाने को, हम ही लगे हैं जहां से इसे मिटाने को। हम ही जमाने में उर्दू जबान ढूंढते हैं, हम ही लगे हैं जहां से, हम ही जमाने में उर्दू जबान ढूंढते हैं। और जो पेश पेश थे कल के फसाद में चाहत, जो पेश पेश थे कल के फसाद में चाहत, वही तो शहर में अमनो अमान ढूंढते हैं, वही तो शहर में अमनो अमान ढूंढते हैं। और आखिरी में चार मिसरे और देश के लिए हवाले करता हूं। आज हर दिल से तासुब को मिटाने के लिए, आज हर दिल से तासुब को मिटाने के लिए, आज हर दिल से तासुब को मिटाने के लिए, आओ आंखों में नमी पाँव में छाले लेकर, आओ आंखों में नमी आज हर दिल से तासुब को मिटाने के लिए, आओ आंखों में नमी पाँव में छाले लेकर। सारी दुनिया से मिटा देंगे अंधेरों का वजूद, सारी दुनिया से मिटा देंगे अंधेरों का वजूद। हम जो निकलेंगे मोहब्बत के उजाले लेकर, हम जो निकलेंगे मोहब्बत के उजाले लेकर।
1: चाहत फिरोजावादी साजिद अली को अभी आप कलाम शायर में सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं अफसाना, जिसका शीर्षक है शहजादा ए तख्तीर। अफसाना निगार हैं अब्बास रजा।
2: सदियों पुरानी बात है, किसी शहर में एक बुलंदोबाला टीले पर नहायत खूबसूरत और कीमती अशिया से आरास्ता एक मुजस्मा नस्ब था। उसके लिबास में ज़रो जवाहरात और हीरे जड़े हुए थे। सोने का लिबास पहने हुए वो बड़ा हसीन नज़र आता था। उसकी दोनों आँखें ज़ुमर्रद की थीं, जिसकी चमक दूर से ही झलकती थी। उसकी कमर में एक शमशीर हमायल थी, जिसके कब्ज़े पर एक सुर्ख याकूत जड़ा हुआ था। उसकी रोशनी अंधेरी रात को मुनव्वर कर देती थी। मौसम सरमा के इब्तदाई अय्याम थे। खुदा की मखलूक़ात इन सर दिनों से मुकाबला करने के लिए तैयारियों में मसरूफ़ थी। ख़रीदारी, गर्म कपड़ों की फराहमी, असबाब व असासे के नक़्ल व इंतकाल का सिलसिला जारी था। ये सारा अमल अपनी जान बचाने और महफूज ज़िंदगी बसर करने के लिए अंजाम पा रहा था। परिंदे भी अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत की खातिर आशियाने बना रहे थे, या एक जगह से कूच करके दूसरे शहरों और इलाकों को आबाद करने पर कमर बस्ता थे। अबाबिलों का काफिला हर सर्दो गर्म मौसम में मोतदिल फ़ज़ा की तलाश में सफ़र सियाहत अंजाम देता है। इस परिंदे की खासियत यह है कि यह दिनों में परवाज़ करता है और रात में किसी महफूज मकाम पर शबगुजारी करता है। अबाबिलों का यह सफ़र देखने के लायक होता है। सर्दियों की एक रात थी जब अबाबिलों का काफिला मसरूफ़ सफ़र था। किसी सबब एक परिंदा अपने काफिले से बिछड़ के पीछे रह गया। थका मांदा, हैरान व परेशान, वह इस अजनबी शहर में पहुंचा।

जहाँ दूर से उसे मुजस्समा नज़र आया। उसने ख़ुद को किसी तरह उस मुजस्समे तक पहुँचाया और उसके पैर के पास जाकर बैठ गया ताकि कुछ सुकून हासिल कर सके। दोस्तों से बिछड़ने के सदमे और थकन के सबब थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई अपने उमूर से फरागत हासिल करके गर्म बिस्तरों पर ख्वाबे खरगोश में पड़ा हुआ था। कमर की चांदनी से तमाम इलाका रोशनी में नहाया हुआ था। सितारे भी झिलमिल झिलमिल करके अपना सफ़र तय कर रहे थे। दिन भर की प्रवास से थका मांदा परिंदा भी नई ताकत हासिल करने के लिए मुजस्समे के साये में सो रहा था कि यकायक पानी का एक कतरा उसके सिमटे हुए परों पर आकर गिरा। बिला फासिला दूसरा और तीसरा कतरा भी। कच्ची नींद से उसकी आँख खुल गई। खुली आँखों से उसने आसमान की जानिब निगाह की। सितारों की कहकशाओं को ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए देखा, जो उसकी हैरानी पर खंदाजन थी। आसमान बिल्कुल साफ था। बादल का एक टुकड़ा भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। फिर ये बरसात कहाँ से हो रही थी? कहीं उसे वाहमा तो नहीं था? उसने फिर आसमान को देखा। चांद अपनी पूरी चमक के साथ उसके ख्यालों को रोशन कर रहा था। ये बारिश के कतरात नहीं हो सकते, शमनम की बूंदें भी नहीं हैं, नसीमे सहर की खुनकी भी नहीं। फिर क्या है आखिर? किससे पूछे, किससे अपनी हैरानी का सबब बयान करे? कोई उसकी परेशानी सुनने वाला मौजूद भी नहीं था। अचानक उसकी नज़र उस मुजस्समे पर पड़ी। इसी से पूछ लेता हूँ, मगर ये तो बेजान मुजस्समा है, ये मुझे क्या बताएगा? ये तो खुद सरापा बुत बना खड़ा है। किससे पूछे, किससे अपनी हैरानी का सबब बयान करे? कोई उसकी परेशानी सुनने वाला मौजूद भी नहीं था। लेकिन सवालिया अंदाज में जब उसकी आँखों से आँखें मिलाईं तो सारी हैरानियाँ एक हैरानी में सिमट कर जवाब बन गई। पानी के ये कतरात उस मुजस्समे की जुमर्रदी आँखों के सोते से अश्क बनकर निकले थे। अबाबील वो छोटा सा परिंदा उसके पैरों के पास से उठकर उसके शाने पर आ बैठा। सरापा हमदर्दी और मोहब्बत का पैकर बना अपने मुख्तसर से वजूद के साथ उससे गोया हुआ। तुम कौन हो? रो क्यों रहे हो? क्या पत्थरों को भी तकलीफ़ का एहसास होता है? मुजस्समे से आवाज़ आई, मैं शहजादे तकदीर हूँ। मेरे मरने के बाद लोगों ने हीरे जवाहरात और सोने चांदी का मेरा मुजस्समा बनाकर इस टीले की बुलंदी पर नस्ब कर दिया। मैं जब ज़िंदा था तो मुझे तमाम कायनात क्या अपने शहर के लोगों के हालात का भी इल्म नहीं था। गुरबत, मुसीबत, यतीमी, अफलास, भुखमरी, बेलिबास घूमते बच्चे, मोहताजों की फरियाद, मरीजों की आहो कसक, बेवाओं का नाला, गरज किसी भी परेशानी की इत्तला मुझे नहीं थी। मैं तो ऐशो इशरत का परवरदा था, नर्म गर्म बिस्तरों का आदि, लजीज गिज़ाओं का शौकीन। दर्दो कसक क्या होता है, ये तो मुझे अब पता चला जब मैं मर चुका हूँ। मैं यहाँ से तमाम चीज़ों को देख रहा हूँ, हर एक के दुख दर्द से बाखबर हूँ। लोगों के मसायब व आलाम को देख कर दिल ही दिल में कुढ़ रहा हूँ। मैं सरापा जबर बना यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आंसू बहाने के सिवा मुझसे कोई काम नहीं बन पा रहा है। देखो देखो, वहाँ पर कुछ दूर एक माँ अपने बीमार बेटे के पास बैठी हुई रो रही है। ये बेचारी औरत रोज़ाना मेहनत करती है, काम करती है, दूसरे लोगों का लिबास सीकर पैसा कमाती है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बीमार बेटे के लिए दवा और मुनासिब ग़िज़ा का इंतज़ाम कर सके। काश ये सआदत मुझे हासिल हो जाती कि मैं उसकी मदद कर सकता, उसके लिए कुछ भेज सकता, उसके बीमार बच्चे के इलाज का बंदोबस्त कर सकता, मैं इस बेचारी के कुछ काम आ सकता। ऐ छोटे परिंदे, क्या तू मेरी मदद कर सकता है? आ मेरे साथ मिलकर कुछ नेकी कमा ले। मेरी तलवार के कब्ज़े पर चमकते हुए याकूत का क्या फ़ायदा कि इसकी रोशनी तो बाकी रहे लेकिन किसी बेचारी बेवा के घर का दिया बुझ जाए। उस खातून का इकलौता बेटा, उसके घर का चिराग, उसकी आँखों की ठंडक, उसकी ज़ईफ़ी का सहारा, उससे बिछड़ने ना पाए। ज़माने का सर्दो गर्म मैं इस याकूत के बग़ैर बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अपने बेटे के वजूद के बग़ैर ये खातून ज़माने के आशोब को किस तरह बर्दाश्त करेगी? ले जाओ ये याकूत, उसके हवाले कर दो, वह इसे बेच कर अपने बेटे का इलाज कर लेगी। अबाबील ने कहा, ये तो तुम भी जानते हो कि मैं कितना थका हुआ हूँ और कल मुझे सफ़र दरपेश है। एक तूलानी मसाफत मुझे तय करनी है, लेकिन इस नेक काम के लिए मैं तैयार हूँ। मुसर्रत व शादमानी के परों पर उड़ता हुआ ये परिंदा मुहताज माँ और परेशान बच्चे का मसीहा बनकर याकूत के साथ उनके आंगन में उतरा। दाहिने हाथ से नेकी करके वो इस तरह वापस आ गया कि बाएं हाथ को खबर तक ना हुई। दिल ही दिल में वो बहुत खुश था। खुशी और गम की रातें बड़ी तवील होती हैं। बांगे खरूस

0: उसने तुलुए सुबह की खबर दी। हर तरफ उजाला फैल गया। परिंदे ने अपना बकिया सफ़र तय करने के लिए मुजस्मे से खुदा हाफिज कहा। शहजादे तकदीर ये सुनकर दम बखुद रह गया। उसने परिंदे से इल्तिजा की, ऐ अबाबील, ऐ छोटे परिंदे, एक शब और मेरे साथी बन जाओ। वो देखो एक ज़ईफ़ इंसान जिसके पास न खाने को ग़िज़ा है और न सर्दी से ख़ुद को महफूज रखने के लिए लिबास और न ही आग के जिससे वो ख़ुद को हरारत पहुँचा सके। ले जाओ मेरी एक ज़ुमर्रदी आँख इसे दे दो, कुछ तो उसकी ज़ईफ़ी का सहारा हो जाएगा। रहमो करम का पैकर वो छोटा सा परिंदा राधी हो गया। एक रात और शहजादे तकदीर के पास ठहर गया। सुबह होते ही उसने दोबारा जाने के लिए इजाज़त तलब की। नहीं, अभी नहीं, कारे जहां दरादस्त, एक रात और सिर्फ एक रात, ऐ छोटे परिंदे, शहजादे तकदीर ने लजाजत के साथ कहा। वो देखो एक छोटी सी बच्ची जिसका दुनिया में कोई नहीं है, गुर्बत की मारी, अफलास की सताई, न खाने को अनाज, न तन पर लिबास, सरापा हसरत व यास, दुनिया अपने कामों में मसरूफ़ है, किसी को न उसका लिहाज और न पास। ले जाओ मेरी दूसरी ज़ुमर्रदी आँख उस बच्ची को दे दो। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो, अबाबील ने फौरन कहा। अगर ये आँख भी किसी को दे दी तो तुम्हारा क्या होगा, तुम अंधे हो जाओगे। हो जाने दो, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, मेरे लिए कोई ऐब नहीं है। इस रद्दो कबूल के दरमियान अबाबील को मजबूर होकर शहजादे की बात मानना पड़ी। परिंदे ने बेकसो मजबूर बच्ची के पास मुजस्मे की दूसरी ज़ुमर्रदी आँख पहुँचा दी। खुशी और गम के मिले जुले एहसास के साथ वह शहजादे तकदीर के पास वापस आया। जाओ, अब मैं मज़ीद तुम्हें जहमत नहीं दे सकता, जल्दी करो, उड़ जाओ, ख़ुद को अपने दोस्तों तक पहुँचा दो। तुम्हारा बड़ा शुक्रिया कि मेरा इतना साथ दिया। मौसम सरमा की बरूदत तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी, मुजस्मे ने बड़े दर्दमाना अंदाज में अबाबील को रुख्सत करना चाहा। नहीं, मुझे सर्दी का कोई खौफ बाकी नहीं रहा, मेरा दिल हरारत अमल से काफ़ी गर्म हो चुका है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे तुम्हारे पास रहना है, यहीं रहने दो मुझे, मैं शहर के लोगों की खबरें तुमको बताता रहूंगा। मौसम सरमा की सर्द रातों में अबाबील का रोज़ाना का मामूल बन गया कि वह पूरे शहर का चक्कर लगाकर फ़कीरों, मोहताजों, बेनवाओं, बेकसों, यतीमों, बेवाओं और गरीबों को तलाश करके उनकी मदद करता। मुजस्मे के बदन पर ज़रो जवाहरात का लिबास धीरे धीरे गरीबों की इमदाद में काम आ गया। सर्दी का मौसम आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। फसल बहार जैसा खुशनुमा गुलाबी मौसम लोगों के दिलों को लुभाने के लिए तुलू होने पर कमरबस्ता था। फ़ज़ाओं में पहले जैसी नमी नहीं थी। लोग सैर व सियाहत के लिए अपने बच्चों के साथ पार्कों, पहाड़ों, टीलों की जानिब सरगर्म सफ़र थे। इसी बुलंदबाला टीले पर घूमते घूमते एक इंसान की नज़र एक अबाबील पर पड़ी जो मुजस्मे के पैर के पास मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था। उसे यह देखकर बड़ा ताज्जुब और रंज हुआ। फिर एकदम से उसने मुजस्मे की तरफ नज़र दौड़ाई और चीख उठा। उसकी आवाज़ पर आसपास के सारे लोग मुजस्मे के इर्द गिर्द जमा हो गए। सब हैरानों परेशान होकर उस मुजस्मे को बुत की मानिंद तक रहे थे। उस पर अब न सोने का लिबास था, न ज़ुमर्रदी आँखें और न कब्ज़े शमशीर पर लगा हुआ याकूत। तब सबकी समझ में आया कि पूरे मौसम सरमा में तमाम शहर में इमदाद का जो सिलसिला जारी था वो इसी छोटे परिंदे ने शहजादे तकदीर के साथ अपनी कुर्बानी पेश करके लोगों के मुकद्दर सवारे हैं।
1: शहजादा तकदीर, अफसाना निगार अब्बास रजा से अभी आपने ये अफसाना सुना। इसी के साथ ही उर्दू कार्यक्रम अंजुमन अब संपन्न होता है। श्रोताओं, दोपहर के 3:30 हो चुके हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। शाम के 5 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी शुभारंभ किया। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम अभिम योजना के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया। चंडीगढ़

0: ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
1: इससे पहले हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय को निर्देश दिया गया है कि अगले आदेश तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। ये परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमले को देखते हुए जारी किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में बताया कि मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर राष्ट्रपति मुर्मू इन देशों की यात्रा पर जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली द्विपक्षीय यात्रा और 3 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की रोमानिया की पहली राजकीय यात्रा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर एक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। वित्त मंत्री ने आज आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारा वपेटा में आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम में विभिन्न केंद्रीय सरकारी योजनाओं के तहत 1,03,246 लाभार्थियों को 3,216 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को सरकार साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। श्रोताओं, ये लेते हैं जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी AI गवर्नेंस विषय पर। सुनिएगा वार्ता, फेक न्यूज, ऑनलाइन ट्रायल और न्याय का संकट। वार्ताकार होंगे रागिनी उपाध्याय। सेगमेंट नई पहल में आज जानेंगे अभिज्ञान ऐप के विषय में, और वैज्ञानिकी सेगमेंट में लीजिएगा जानकारी डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन के विषय में। साथ ही होगा सेगमेंट ताकत वतन की हमसे है, जिसमें आज जानकारी लीजिएगा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के विषय में।

हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम्य लोक शाम 6 बजे, जिसमें चर्चा होगी ग्रीन इंडिया मिशन विषय पर। साथ ही भेंट वार्ता क्रम में सुनिएगा धान की उन्नतिशील खेती कैसे करें विषय पर सौरभ उपाध्याय से लोकेंद्र पाठक की बातचीत। और जानकारी लीजिएगा नई किस्मों के बीज के विषय में, अनाजों सब्जियों और फलों के विषय में। साथ ही आनंद लीजिएगा लोकगीतों का और जानिएगा मौसम का हाल और मंडी भाव। हमारे श्रमिक साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल शाम 6:30 पर, जिसमें चर्चा होगी बचाएं बच्चों का बचपन विषय पर।

और मंडी भाव। हमारे श्रमिक साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल शाम 6:30 पर, जिसमें चर्चा होगी बचाएं बच्चों का बचपन विषय पर। साथी होगी कानूनी वार्ता, जिसमें सुनिएगा यातायात के नियम और सड़क सुरक्षा विषय पर विनोद कुमार अग्रवाल की वार्ता। अन्य सेगमेंट होंगे आज का प्रश्न होगा सेहत टिप्स, ज्ञान सागर, आज की पाती और आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का।

श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा का समय रहेगा शाम 7:10, जिसमें आज आप सुनेंगे शीलेंद्र कुमार वशिष्ठ से काव्य पाठ। कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश आप सुनेंगे शाम 7:31 पर। श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। फिल्मों से कव्वालियाँ कार्यक्रम होगा महफिल कव्वाली। इसके अलावा फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। श्रोताओं, इसके अलावा भी फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 10 बजे अपने मनपसंद कार्यक्रम रजनी गंधा में, जो आधारित होगा आपके फरमाइशी पत्रों पर। तो याद रखिएगा रात्रि 10 बजे कार्यक्रम रजनी गंधा। श्रोताओं, रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा कार्यक्रम करंट अफेयर्स। रात्रि 10:30 पर आनंद लीजिएगा शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आज आप सुनेंगे देवाशीष चक्रवर्ती से गिटार वादन। आप प्रस्तुत करेंगे राग अभोगी। श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। कार्यक्रम की पहली भक्ति रचना जय संतोषी माँ फिल्म से महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में प्रदीप की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है सी अर्जुन ने।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं जय मां वैष्णो देवी फिल्म से अनुराधा पोडवाल की आवाज में ये भक्ति रचना। शब्द रचना नक्स लाइलपुरी की, संगीत अमर उत्पल का।

सुनी अनुराधा पोडवाल की स्वर संगीतबद्ध किया था अमर उत्पल। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत पंजाब साधना आवाजों में दाता फिल्म से।

श्रोताओं, कार्यक्रम सूर्य संध्या के अंत में दाता फिल्म से ये भक्त रचना आपने सुनी महेंद्र कपूर, साधना सरगम और सुरेश वाडेकर की आवाजों में। अनजान की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, इन भक्त रचनाओं के साथ ही कार्यक्रम सूर्य संध्या यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं और हमारे युवा साथियों को इंतजार होगा अपने कार्यक्रम युववाणी का। तो आइए सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम

नमस्कार दोस्तों, नई सोच की उड़ान, नए सपनों की पहचान और युवा मन की आवाज कार्यक्रम युववाणी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो वाली दोस्त कनिका सिंह। तो आइए बातों और विचारों के सफर की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे पूछना है आज का सवाल। दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और आपका सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2026 की थीम क्या है। सोचिए, विचार कीजिए, हम जानेंगे इस सवाल का जवाब थोड़ी सी देर के बाद। चलो दोस्तों, आपने कभी सोचा है, हम जैसे ही सुबह उठते हैं हम वेदर अपडेट चेक करते हैं, हम हमारा फ़ोन का नेविगेशन ऐप ज़रूर यूज़ करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमें जितनी भी चीज़ें पसंद होती हैं उनके लिए कोई ना कोई सजेशन हमारे फ़ोन में आ जाता है, ऑफिस की प्रेजेंटेशन तैयार करना हो या बच्चों के होमवर्क, इन सब में हम किसी न किसी की मदद लेते हैं और वो है AI, जो कि धीरे धीरे हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। आज AI सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज तक सीमित नहीं है, किसान से लेकर स्टूडेंट, डॉक्टर से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल, हर क्षेत्र में AI नए अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है। भारत भी इस बदलाव को तेज़ी से अपना रहा है और AI इंडिया मिशन जैसे प्रयास देश में AI इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे जैसे जैसे AI ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, एक बड़ा सवाल भी हमारे सामने आ जाता है। क्या AI हमेशा सही, फेयर और रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करेगा? यहीं से

शुरू होती है एआई गवर्नेंस की ज़रूरत। इसे आसान भाषा में समझें तो एआई गवर्नेंस ऐसे रूल्स, प्रोसेसेस और मॉनिटरिंग सिस्टम है जो ये तय करते हैं कि एआई को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए और कैसे ये इंश्योर किया जाए कि ये लोगों के लिए सेफ और ट्रस्टवर्दी बना रहे। मान लीजिए कोई एआई सिस्टम लोन अप्रूवल, हेल्थ केयर या रिक्रूटमेंट जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में मदद कर रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि उसका डिसीजन फेयर हो, उसमें बायस ना हो और लोगों का पर्सनल डेटा भी सुरक्षित रहे। यानी एआई गवर्नेंस का काम एआई को रोकना नहीं है बल्कि उसे एक सही डायरेक्शन देना है, और इसी दिशा में दुनिया भर में डिस्कशन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। हाल ही में हमने देखा जेनेवा में पहला यूएन ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस आयोजित किया गया, जिसमें कई सरकारें, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, एकेडमिया और सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए। इसका उद्देश्य था एआई के लिए कॉमन ग्लोबल अप्रोच तैयार करना ताकि इनोवेशन और सेफ्टी दोनों आगे बढ़ सके। अब सवाल है ग्लोबल एआई गवर्नेंस क्या है? इसे आसान भाषा में समझें तो ये दुनिया भर के लिए एक ऐसा कॉमन फ्रेमवर्क है जो एआई के डेवलपमेंट और यूज़ को गाइड करता है। इसका लक्ष्य है कि एआई आगे बढ़े, लेकिन साथ ही हमारे ह्यूमन राइट्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इक्वल एक्सेस जैसे वैल्यूज़ भी सुरक्षित रहें। लेकिन दोस्तों, इस राह में ना कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहली चुनौती है रेगुलेटरी गैप। एआई जिस स्पीड से इवॉल्व हो रहा है उस स्पीड से लॉज और पॉलिसीज तैयार नहीं हो पा रही। दूसरी चुनौती है एक्सेस गैप। एडवांस्ड एआई के लिए ज़रूरी है कंप्यूटिंग पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज, जो कि अभी कुछ ही देशों और बड़ी कंपनियों के पास ही हैं। इसके अलावा डीप फेक, साइबर अटैक्स और मिस इन्फॉर्मेशन जैसे रिस्क बॉर्डर्स हमें ज़रूर दिखाई देते हैं। इसलिए इनसे निपटने के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब इतने सारे रिस्क फैक्टर्स को देख के लगता है आगे क्या? हमें ऐसे रिस्क बेस्ड रेगुलेशंस की ज़रूरत है जो इनोवेशन को सपोर्ट करे, लेकिन सेफ्टी और सिक्योरिटी से समझौता ना करें। साथ ही एआई रिसोर्सेज तक ज़्यादा लोगों की पहुँच बढ़ानी होगी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करना होगा और डेवलपिंग कंट्रीज को भी इस एआई रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, एआई का फ्यूचर सिर्फ इस बात से तय नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है, बल्कि इस बात से तय होगा कि हम उसे कितना रिस्पॉन्सिबली और वाइजली यूज़ करते हैं।

0: वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों ब्रेक पे जाने से पहले ना मैंने आपसे पूछा था एक सवाल जो कि जुड़ा था अंतर्राष्ट्रीय नायक दिवस से, जो कि हम आज ही के दिन मना रहे हैं। और दोस्तों ये जो है आज के समय में बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज के समय में हम दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध, हिंसा और मानवीय संकट जैसी घटनाएँ देख सकते हैं। और ऐसे में तब न्याय की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा महसूस होती है। ऐसे में हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि शांति सिर्फ बातचीत से नहीं बल्कि न्याय से भी कायम होती है। दोस्तों ये दिन यानी कि वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस हम मनाते हैं, और हर साल इसकी एक विशेष थीम होती है। और इसी से जुड़ा मैंने आपसे पूछा था एक सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2026 की थीम क्या है। दोस्तों इस साल की थीम है प्रमोटिंग जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड। ये विषय वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा और गंभीर अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। दोस्तों आज का ये दिन खास है, और कैसे हम इसे आज के परिवेश में समझ सकते हैं, अपनी समझ को और बेहतर बना सकते हैं, इसलिए आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं रागिनी उपाध्याय, जिनसे हम जानेंगे फेक न्यूज़, ऑनलाइन ट्रायल और न्याय का संकट।
1: आज का युग सूचना और संचार का युग है। सूचना अब केवल समाचार पत्रों, रेडियो और दूरदर्शन तक सीमित नहीं रह गई है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने प्रत्येक व्यक्ति को सूचना का उपभोक्ता ही नहीं बल्कि उसका निर्माता और प्रसारक भी बना दिया है। कुछ ही सेकंड में कोई भी संदेश लाखों लोगों तक पहुँच सकता है। ये तकनीकी परिवर्तन लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अभूतपूर्व विस्तार मिला है। किंतु हर उपलब्धि अपने साथ कुछ गंभीर चुनौतियों को भी लेकर आती है। आज इन्हीं चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती है फेक न्यूज और ऑनलाइन ट्रायल। सूचना की यह अति तेज गति जहां लोकतंत्र को सशक्त बनाने का माध्यम बन सकती है, वहीं

यदि इसका दुरुपयोग हो तो यह गति समाज में भ्रम, भय, घृणा और अविश्वास भी फैला सकती है। दुर्भाग्य से वर्तमान समय में ऐसा अनेक अवसरों पर देखने को मिला है, किसी घटना की आधी अधूरी जानकारी, किसी पुराने वीडियो को नए संदर्भ में प्रस्तुत करना, किसी चित्र को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से बदलना या किसी व्यक्ति के बारे में अपुष्ट आरोपों को सत्य की तरह प्रचारित कर देना, ये सब आज सामान्य घटनाएं बनती जा रही हैं। यहीं से न्याय व्यवस्था के सामने एक नया संकट खड़ा होता है। न्यायालय साक्ष्यों, कानून और संविधान के आधार पर निर्णय देता है, जबकि सोशल मीडिया अक्सर भावनाओं, पूर्वग्रहों और अधूरी सूचनाओं के आधार पर अपना निर्णय सुना देता है। यही कारण है कि आज डिजिटल भीड़ और विविध न्याय के बीच का अंतर लगातार चर्चा का विषय बन रहा है। सभ्य समाज का सबसे बड़ा आधार न्याय है। न्याय केवल अपराधी को दंड देने का नाम नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, निर्दोष को सुरक्षा देना और दोषी को विधि के अनुसार दंडित करना ही न्याय का वास्तविक स्वरूप है। भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिकों को निष्पक्ष सुनवाई, गरिमा और कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया है। न्यायपालिका का सबसे बड़ा दायित्व यही है कि वह बिना किसी दबाव, भय या जनभावना के केवल तथ्यों को कानून के आधार पर निर्णय करे। न्याय की इस प्रक्रिया में समय लगता है, जांच होती है, साक्ष्य जुटाए जाते हैं, दोनों पक्षों को सुनने का अवसर भी दिया जाता है और उसके बाद निर्णय दिया जाता है। यही प्रक्रिया न्याय को विश्वसनीय बनाती है, किंतु सोशल मीडिया की दुनिया इस धैर्य को स्वीकार नहीं करती। वहाँ पर हर घटना पर तत्काल प्रतिक्रिया चाहिए, तत्काल निष्कर्ष चाहिए और तत्काल निर्णय भी। यहीं से न्याय का संकट आरंभ होता है। एक समय था जब समाचारों की विश्वसनीयता के लिए पत्रकारिता के स्पष्ट मानदंड थे। संपादक, संवाददाता और प्रकाशन संस्थान समाचार की पुष्टि करते थे। त्रुटि होने पर उत्तरदायित्व भी तय होता था। आज स्थिति बदल चुकी है। अब प्रत्येक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से वीडियो बनाकर उसे लाखों लोग तक पहुंचा सकता है। यह परिवर्तन अपने आप में सकारात्मक है, क्योंकि इससे नागरिक पत्रकारिता को बल मिलता है। अनेक सामाजिक अन्याय, भ्रष्टाचार और जन समस्याएं इसी माध्यम से सामने आई हैं। फेक न्यूज केवल झूठी खबर नहीं होती, कई बार यह आधा सच भी होता है। कई बार पुराने तथ्यों को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। कभी किसी तस्वीर के साथ गलत विवरण जोड़ दिया जाता है, तो कभी किसी वीडियो को संपादित करके उसका अर्थ ही बदल दिया जाता है। आज AI के माध्यम से तैयार किए जा रहे डीप फेक वीडियो इस समस्या को और भी गंभीर बना रहे हैं। सोचिए, किसी सम्मानित व्यक्ति का ऐसा वीडियो वायरल हो जाए जिसमें वह कोई ऐसा कथन करता दिखाई दे जो उसने कभी कहा ही नहीं। जब तक सत्य सामने आएगा, तब तक उसकी प्रतिष्ठा को अपूर्णीय क्षति पहुंच चुकी होगी। यही कारण है कि आज तकनीकी विकास के साथ साथ डिजिटल नैतिकता और सत्यापन की आवश्यकता भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। फेक न्यूज केवल किसी व्यक्ति की छवि खराब नहीं करती, बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। इसके कारण सामाजिक तनाव उत्पन्न होता है, सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का विश्वास कम हो सकता है, चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है, निर्दोष व्यक्तियों को हिंसा का शिकार होना पड़ सकता है, न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। आज यह केवल पत्रकारिता का विषय नहीं रह गया, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था का भी विषय बन चुका है। ऑनलाइन ट्रायल का अर्थ है किसी व्यक्ति के विरुद्ध चल रही कानूनी प्रक्रिया के दौरान सोशल मीडिया, डिजिटल मंचों या जनमत के माध्यम से उसे पहले ही दोषी या निर्दोष घोषित कर देना। यह प्रवृत्ति अत्यंत खतरनाक है। सोशल मीडिया ट्रायल के किसी भी व्यक्ति के परिवार, सामाजिक जीवन और प्रतिष्ठा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भले ही बाद में यदि न्यायालय उसे निर्दोष घोषित भी कर दे, तब भी समाज में बनी नकारात्मक छवि आसानी से समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि विधि का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत कहता है, जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए, तब तक प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष माना जाएगा। यह सिद्धांत केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि मानव गरिमा और न्याय की आत्मा है। लोकतंत्र में जनमत का अत्यंत महत्व है, किंतु न्यायालय जनमत के आधार पर नहीं, बल्कि कानून और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देता है। कई बार अत्यंत संवेदनशील मामलों में समाज में स्वाभाविक आक्रोश उत्पन्न होता है। यह आक्रोश न्याय की मांग कर सकता है, किंतु न्याय का स्थान नहीं ले सकता। यदि न्यायालय भी केवल सोशल मीडिया के दबाव में निर्णय देने लगे, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। इसलिए न्याय और जनभावना के बीच संतुलन बनाए रखना लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। उसका दायित्व केवल समाचार देना नहीं, बल्कि सत्य, संतुलन और उत्तरदायित्व के साथ समाज को सही दिशा देना भी है। मीडिया जब तथ्यपरक, निष्पक्ष और उत्तरदायी पत्रकारिता करता है, तब वह न्याय व्यवस्था का सहयोगी बनता है। लेकिन अब प्रतिस्पर्धा में केवल सनसनी, TRP या वायरल होने की प्रवृत्ति

0: हावी हो जाती है, तब समाज में भ्रम और अविश्वास फैलने लगता है। पत्रकारिता का उद्देश्य न्यायालय बनाना नहीं, बल्कि तथ्यों को जिम्मेदारी के साथ समाज तक पहुंचाना है। सूचना ने मानव जीवन को जितना सरल बनाया है, उतना ही जटिल भी। आज समाचार केवल समाचार कक्षों में नहीं बनते, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी बनते हैं। कुछ सेकंड में कोई वीडियो, कोई टिप्पणी या कोई आरोप लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। ऐसे में सत्य और असत्य के बीच दूरी लगातार कम होती जा रही है। परिणाम स्वरूप न्याय की प्रक्रिया भी इस डिजिटल शोर से अछूती नहीं रह पाती। अब समय है जब हमें यह समझना होगा कि न्यायालय और सोशल मीडिया दोनों की भूमिकाएं अलग-अलग हैं। एक का आधार कानून है, दूसरे का आधार प्रतिक्रिया। एक साक्ष्यों पर चलता है, दूसरा अक्सर भावनाओं पर। जब दोनों की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं, तब न्याय का संकट और गहरा हो जाता है। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए बिना ही समाज अपराधी मान ले, तो यह उसकी प्रतिष्ठा, सामाजिक जीवन और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। सत्य प्राय संयमित होता है, जबकि असत्य कई बार सनसनीखेज होता है। इसलिए झूठी खबरें अधिक तेजी से लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। जब वायरल होना ही सफलता का पैमाना बन जाए, तब सत्य पीछे छूटने लगता है। मीडिया का दायित्व है कि वह जनहित के विषयों को सामने लाए, सत्ता से प्रश्न पूछे और समाज को जागरूक करे। न्यायिक प्रक्रिया में जांच एजेंसियां साक्ष्य एकत्रित करती हैं, अभियोजन और बचाव पक्ष अपनी दलीलें रखते हैं और अंततः न्यायालय निर्णय देता है। यदि इस प्रक्रिया के बीच मीडिया किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से दोषी या निर्दोषी घोषित करने लगे, तो यह न्याय के निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। आज AI की सहायता से ऐसे वीडियो, चित्र और आवाजें तैयार की जा सकती हैं जो वास्तविक प्रतीत होती हैं, जबकि वो पूरी तरह कृत्रिम होती हैं। इन्हें डीप फेक कहा जाता है। इसलिए डिजिटल युग में न्याय का अर्थ केवल कानून लागू करना नहीं, बल्कि तकनीकी साक्ष्यों को प्रामाणिकता सुनिश्चित करना भी है। न्याय की सबसे बड़ी शक्ति कानून नहीं, बल्कि समाज का सत्य के प्रति विश्वास। और जब नागरिक सत्य को साझा करने से पहले परखेंगे, निर्णय देने से पहले सुनेंगे तथा प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करेंगे, तभी डिजिटल भारत वास्तव में न्यायपूर्ण, संवेदनशील और लोकतांत्रिक भारत बन सकेगा।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की वार्ता का रागिनी उपाध्याय को, जिनसे हमने जाना फेक न्यूज, ऑनलाइन ट्रायल और न्याय का संकट। दोस्तों, अब हमारा ये जो समाज है वो एक सुरक्षित समाज तभी बन पाएगा जब हम सब इसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे, और आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हम सभी के जिम्मेदार होने की, और हर एक काम को, हर एक जिम्मेदारी को उतनी ही सीरियसली लेने की। दोस्तों, थोड़ी ही देर पहले हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी के बारे में। जी हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, और हम बात करते हैं देश की सुरक्षा के बारे में, इसकी व्यवस्था को मजबूत करने के बारे में। और इसकी व्यवस्था को मजबूत करते हुए ही हमारे सामने आया है एक ऐप जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ नई दिल्ली में। इसका नाम है अभिज्ञान ऐप। दोस्तों, ये एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB ने तैयार किया है। इसका मकसद है पुलिस को क्राइम रिकॉर्ड्स की जानकारी जल्दी और आसानी से उपलब्ध कराना, ताकि जांच और कार्रवाई बेहतर तरीके से हो सके। अब सोचिए, किसी पुलिस अधिकारी को मौके पर किसी व्यक्ति की पहचान करनी हो तो पहले रिकॉर्ड खोजना एक लंबी प्रक्रिया हो सकती थी, लेकिन अब अभिज्ञान ऐप की मदद से फील्ड ऑफिसर्स अपने स्मार्टफोन से ही ज़रूरी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकते हैं। इस ऐप में सिक्योरिटी के लिए टू स्टेप ऑथेंटिकेशन की सुविधा है, और ये फिंगरप्रिंट की मदद से पहचान करने में हमारी काफ़ी सहायता करता है। दोस्तों, यानी NFS से जुड़ा हुआ है, जहां आरोपी, दोषी और जेल में बंद लोगों के फिंगरप्रिंट्स, उनके रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखा जाता है। इसकी स्पीड का अगर दोस्तों अंदाज़ा लगाया जाए तो फिंगरप्रिंट मैच करने में सिर्फ 35 सेकंड्स लगते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से अब पुलिसिंग ज़्यादा तेज़, आसान और प्रभावी बनकर सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी की ताकत यहीं तक सीमित नहीं है। आज AI के क्षेत्र में भी ऐसे इनोवेशन हो रहे हैं जो बड़े और मुश्किल कामों को पहले से ही आसान बना रहे हैं। सोचिए, अगर कोई कलाकार एक चित्र बनाने के लिए 50 बार ब्रश चलाए, लेकिन उसका शिष्य वही चित्र सिर्फ 4 बार ब्रश चलाकर लगभग उसी क्वालिटी के साथ तैयार कर दे, तो क्या आप हैरान नहीं होंगे?

एआई की दुनिया में इसी कमाल को कहते हैं डिजिटल वीडियो जनरेशन। इस टेक्निक की वजह से भारत का वारिया एआई मॉडल चर्चा में है दोस्तों। ये टेक्स्ट या तस्वीर से वीडियो बना सकता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है वीडियो जनरेशन को तेज और एफिशिएंट बनाना। तो आखिर ये होता कैसे? आमतौर पर एआई वीडियो मॉडल एक वीडियो तैयार करने के लिए 50 से ज़्यादा लेवल्स में धीरे धीरे बेहतर उसको बनाते हैं, लेकिन डिस्टिलेशन में पहले एक बड़ा टीचर मॉडल यह पूरे प्रोसेस को पूरा कर देता है, फिर एक छोटा स्टूडेंट मॉडल उसे सीखता है और चार चरणों में उसे बदल देता है, यानी कि वो चार कदम जो कि सबसे ज़रूरी है। तो इसलिए स्टूडेंट मॉडल को हर बार पूरा लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ता और उसी क्वालिटी के साथ वीडियो भी तैयार हो जाता है। यही वजह है दोस्तों वारिया एआई कम समय, कम कंप्यूटिंग पावर और कम लागत में वीडियो बना पाता है। इसलिए लगभग 48 पैसे प्रति सेकंड है, जो कई वैश्विक वीडियो एआई मॉडल की तुलना में करीब 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अब तो चाहे एमएसएमई की कोई प्रोडक्ट एड बनानी हो, या फिर टीचर्स को टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करना, या सरकारी जागरूकता वीडियो, डिजिटल वीडियो जनरेशन की मदद से ये सब काम समय और कम लागत में संभव हो सकेगा दोस्तों। और ये काम जब इतना एफिशिएंटली होगा तो हम सभी आगे बढ़ते रहेंगे और प्रगति करते रहेंगे।

वेलकम बैक दोस्तों, जब हम उम्मीद लिए, हौसला लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें एक विजयी परचम लहराता हुआ ज़रूर दिखता है। और दोस्तों, हम सभी भारतवासी इस बात को कहते हुए बड़ा ही गौरवशाली महसूस करते हैं कि हाँ, हम सब सुरक्षित, हम सभी गौरवान्वित और हम सभी यूँ ही आगे बढ़ते रहेंगे, फिर चाहे टेक्नोलॉजी हो या हमारे टेक्नोलॉजिकल आर्म्स हों जिनका इस्तेमाल करते हैं हमारे देश के वीर सैनिक और हमेशा इंश्योर करते हैं हमारे देश की सेफ्टी और सिक्योरिटी। और दोस्तों, इनसे ही जुड़ा हुआ है एक हमारे देश में एक स्मारक जो कि है इंडिया गेट के पास। इसे हम जानते हैं राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के नाम से, जो कि वीर जवानों के साहस और बलिदान की अमर कहानी हमेशा कहता है। और यहाँ पर हम 25,000 से अधिक सैनिकों को समर्पित इस स्मारक को देख सकते हैं और इसको विजिट कर सकते हैं, उनकी वीर गाथाओं को सुन सकते हैं। यहाँ पे त्याग चक्र हैं जो कि शहीदों के नाम। तो अगर आप कभी दिल्ली जाए ना, तो कोशिश कीजिएगा उनको बेहतर समझने की और उस ताकत को खुद में अपनाने की कि हम भी इसी हौसले, इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहें और एक नया कल गढ़ते रहें। इसी इंस्पायरिंग नोट पर मैं आज आपसे लेना चाहूँगी विदा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खिलखिलाते रहें, अपनों का ध्यान अवश्य रखें। आपकी अपनी रेडियो वाली दोस्त कनिका सिंह को दे इजाज़त। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण अंचल के साथियों का कार्यक्रम ग्रामीण लोक।

किसान भाइयों, राम राम। कार्यक्रम ग्रामीलोक में मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी उत्कर्ष कुमार पांडे, करने आपसे खेती किसानी की बात, आपके हमारे हित की बात। किसान भाइयों, इस समय एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जिस पर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है वो है बाबा बर्फानी, यानी कि अमरनाथ में बाबा के शिवलिंग, बर्फीले शिवलिंग का पिघल जाना। बाबा का एक हफ्ते के भी कम समय के अंदर अंतर्ध्यान हो जाना, जिसके लिए एक बहुत बड़ा कारक पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण असंतुलन को माना जा रहा है। आप सोचिए, यात्रा शुरू हुए एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था और बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो गए। ये बहुत ही चिंता की बात है, न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मौसमी असंतुलन हो रहा है, तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है, औसत वर्ष

शिक्षा में कमी आई है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में स्थितियां बहुत खराब हो सकती हैं। तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। गर्मियों में लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। इन सभी समस्याओं पर हमारी सरकार का भी पूरा ध्यान है और पूरे विश्व में ये समस्या देखने को मिल रही है। यूरोपीय देश हो या अमेरिका हो, इस बार हीट वेव ने पूरी दुनिया को झुलसा दिया। इसीलिए सरकार ग्रीन इंडिया मिशन चला रही है। ग्रीन इंडिया मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और देश में वन और वृक्षों का क्षेत्र बढ़ाना है। इसका उद्देश्य अपने देश के वनों का और वृक्षों का क्षेत्रफल बढ़ाना है, क्षतिग्रस्त हो चुके वनों के संरक्षण और उनको पुनः स्थापित करने के लिए प्रयास करना है, जैव विविधता को संरक्षण देना है। जिन लोगों की आजीविका और रोजी रोटी वनों पर ही निर्भर है, उसमें सुधार करना है, कार्बन को कम करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना है। भाइयों, हो क्या रहा है कि भौतिकता की इस अंधी दौड़ में हम लोग वनों को काटते चले जा रहे हैं। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि हम सभी जानते हैं कि पेड़ हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं और भोजन निर्माण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऐसे में चाहे वर्षा को आकर्षित करना हो या वन्य जीवों को संरक्षण देना हो, वनों का होना पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने से लेकर प्रकृति की विविधता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये एक ऐसा काम है जो किसी एक के प्रयास से कतई संभव नहीं है। इसमें गांव हो या शहर, नगर हो या कस्बा, हम सबको अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी। सरकार तो अपना मिशन चला रही है, हम सबको भागीदारी भी निभानी पड़ेगी। बारिश का इस समय मौसम चल रहा है, सावन का महीना शुरू होने वाला है। सावन के महीने को बड़ा ही पवित्र महीना माना जाता है। इसकी पवित्रता और बढ़ जाएगी। आप जितना हो सकता है पेड़ लगाएं, और न सिर्फ लगाएं बल्कि उसके बड़े होने तक उसको संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए उसका ध्यान भी रखें। उसको समय समय पर पानी देना, जानवर या किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाना, इस बात का ध्यान रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, आज हम शहरों से सुकून और प्राकृतिक वातावरण की तलाश में पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी इस भौतिकता की दौड़ में वनों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आप देखिए, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में कभी कभी इतनी कमी आ जाती है, हवा इतनी खराब हो जाती है कि कोर्ट को खुद आगे आकर स्कूलों को बंद करना पड़ता है। गाड़ियों के संचालन के लिए ऑड इवन जैसी विधियां लगानी पड़ती हैं, जिससे कि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। निर्माण कार्यों पर रोक लगानी पड़ती है। पर यह स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान तभी होगा जब वन क्षेत्र का विकास होगा। इसके साथ ही ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की जगह पर सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों की तरफ रुझान बढ़ाया जा रहा है, जिससे प्राकृतिक स्रोतों पर बोझ को कम किया जा सके। तो किसान भाइयों, हम तो यही कहेंगे कि पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, इस धरा को हरा भरा बनाएं और आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा और प्राकृतिक वातावरण हम देकर जाएं। इसी उम्मीद के साथ आनंद लेते हैं इस लोकगीत का, पिया गर्मी में परेना मोकू, संध्या शर्मा के स्वर में।

0: किसान भाइयों, इस समय हमारे किसान साथी धान की खेती में उन्नतशील किस्मों के चयन के साथ साथ अच्छी पैदावार के लिए प्रयासरत रहता है, नर्सरी तैयार करने में मेहनत कर रहा है जिससे पैदावार अच्छी हो, समय से हो। तो इसी विषय में विस्तार से जानते हैं धान की उन्नतशील खेती कैसे करें विषय पर लोकेंद्र पाठक की सौरभ उपाध्याय से इस बातचीत के माध्यम से।
1: साथियों, आज हमारे साथ केरावली कस्बे के भवनपुरा गांव के प्रगतिशील किसान सौरभ उपाध्याय जी हैं। सौरभ जी ने कृषि में मृदा विज्ञान से परास्नातक किया है। सौरभ जी, हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आपका स्वागत है। राम राम।
2: राम राम जी।
1: सौरभ जी, इस वर्ष मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार मानसून लगभग 7-8 दिन पहले ही आने की संभावना है, तो हमारे किसान साथियों ने आने वाले मौसम में फसल लेने के लिए क्या क्या तैयारी शुरू कर दी है?
2: जी, जैसा कि मौसम विभाग की जानकारी प्राप्त हुई है, किसानों को मानसून जल्दी आ रहा है। किसान अपने खेती में जुट चुका है, अपने खरपतवार का नियंत्रण कर रहा है जो कि अभी इस समय उगा हुआ है उसके खेत में। साथ ही उन्नतशील किस्में अपनी फसल में, जैसे बाजरा है तो बाजरे की उन्नतशील किस्में तलाश रहा है, या धान है तो धान के लिए उन्नतशील किस्में, मक्का है तो मक्का के लिए उन्नतशील किस्में तलाशना उसने शुरू कर दिया है। साथ ही बहुत सारी कृंतन क्रिया जैसे जिताई, निराई, गुड़ाई, ये सारी चीजों में किसान पूरी तरीके से लग गया है।
1: आगरा और आगरा के आसपास के कुछ क्षेत्रों में धान की भी खेती की जाती है। धान की उन्नत खेती करने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए?
2: आगरा के क्षेत्र फतेहपुर सीकरी जहाँ से मैं आ रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ही बड़ा रकबा है जहाँ पर धान की फसल करी जा रही है। धान की उन्नतशील फसल के लिए आपको सबसे पहले उन्नतशील बीज चयनित करना चाहिए अपनी खेत दशा के अनुसार। यानी खेत दशा आपकी नीचे है, मतलब आमतौर पर आपके खेत थोड़ा सा धरासल से थोड़ी नीचाई में है, तो उस हिसाब से ज्यादा जल मांग वाली किस्म आपको चयन करनी चाहिए। आपकी ऊंचाई पे जहाँ पानी का भराव कम रह पाता है तो कम जल मांग वाली फसल आपको वहां पे लेनी है। ऐसी स्थिति में आपको उन्नतशील बीज अपने खेत दशा के अनुसार लेनी है। जैसे उन्नतशील किस्मों में बताना चाहूंगा, सुगंधी की सुगंधी 5 है, सुगंधी 2 है, 1509 है, 1692 है, 1718 है, पूसा बासमती है, ये सारी किस्में हैं धान की उन्नतशील किस्में हैं।
1: सौरभ जी, धान की उन्नत खेती करने के लिए हमें धान की स्वस्थ पौध, जिसे नर्सरी भी कहते हैं, उसे तैयार करना होता है, तो हमें नर्सरी किस प्रकार से तैयार करनी चाहिए?
2: हाँ, ये अच्छा सवाल है कि नर्सरी पर बहुत ही कम किसान साथी हैं जो ये जानते हैं कि नर्सरी को वास्तविक तौर पर कैसे किया जाता है। आमतौर पर किसान क्या करते हैं, खेत में गए, मेड़बंदी करी, उल्टा सीधा धान फेंका और घर आ गए, फिर उसको अगले दिन पानी देते हैं, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से बर्निंग इफेक्ट आता है। मैं ये सलाह करता हूँ कि आप किसान तौर पर, किसान नजरिए से देखा जाए तो 4 फीट चौड़ाई और 10-12 फीट लंबाई की क्यारियां काटनी चाहिए, जिससे आप उसमें खरपतवार का नियंत्रण अच्छे से कर पाएंगे। आप स्प्रे करना चाहें स्प्रे, और जब आप उखाड़ेंगे जब नर्सरी को, तो आप उखाड़ने में भी आपको आसानी रहेगी, दूसरा खाद देने में, पानी देने में, ये सारी चीजों में भी आपको बड़ी आसानी रहेगी। तो नर्सरी बनाने के लिए आप बेड की जो चौड़ाई लंबाई है उसको सुनिश्चित करें 4 फीट ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई और 10 से 12 फीट उसकी ज्यादा से ज्यादा लंबाई, और एक समान उसके अंदर किसी भी प्रकार का ढलान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही सपाट होनी चाहिए, जिससे धान का बीज एक समान जमे। जब पानी दें तो आपका जहाँ ढलान होता है वहाँ पानी ज्यादा हो जाता है, फिर अधिक तापमान से जब पानी गर्म होता है उससे क्या होता है कि आपका जो अंकुरित बीज है वो भी मारा जाता है।
1: जब हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है, यानी जब हमारी पौध तैयार हो जाती है, तो क्या धान की खेती करने के लिए खेत को कुछ विशेष रूप से तैयार करना होता है, यानी खेत की तैयारी भी हमें करनी चाहिए?
2: जी बिल्कुल, खेत की तैयारी में देखा जाता है आमतौर पर कि ज्यादातर किसान 1-2 जुताई कर

0: कि उसकी रुपाई करवा देते हैं। इसके लिए आप कम से कम 3 से 4 जुताई मिट्टी पलट हल्की, जिसे हम लोग हैरो बोलते हैं, उसकी करवानी चाहिए। उसके बाद आपको 2 जुताई या 3 जुताई कल्टीवेटर की, और फिर एक समान पाटा लगा के उसमें किसी भी प्रकार का ढलान नहीं होना चाहिए। धान के लिए सुनिश्चित करें कि ढलान आपके खेत में नहीं पाया जाना चाहिए। आजकल तो कंप्यूटर वाले माजे भी चल चुके हैं, तो किसान भी उसका भी इस्तेमाल करके फायदा ले सकते हैं।
1: सौरभ जी, धान की खेती में रोपाई का बहुत महत्व है, तो रोपाई हमें किस प्रकार से करनी चाहिए?
0: आज अगर रोपाई करनी है तो 1 दिन पूर्व आप उसमें लगभग पानी थोड़ी देर के लिए खड़ा करें। ज्यादा पानी खड़ा नहीं करें, ज्यादा पानी खड़ा करेंगे तो आपको कीच की शिकायत बनेगी। आप क्या करें, आपको रोपाई करनी है तो रोपाई के 8 से 10 घंटे पहले आप उसमें पानी भरें, बहुत ज्यादा पानी नहीं भरें, और फिर उसके बाद आप दोबारा उसमें पानी भरें, जिससे क्या होगा कि आपकी मिट्टी नीचे तक नम होगी, ज्यादा गहराई तक नम होगी, और उसके अंदर रुपाई करने में भी आपको आसानी रहेगी। रुपाई के लिए एक चीज का किसान साथी विशेष ध्यान दें कि पौधे से पौधे की दूरी एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी एक समान सुनिश्चित करें।
1: बहुत अच्छी बात बताई रोपाई से जुड़ी हुई आपने। इसी के साथ अब हमें आप ये बताइए कि जब रोपाई हो जाती है तो हमें खाद प्रबंधन करना चाहिए। खाद प्रबंधन हमें किस प्रकार से करना चाहिए?
0: जी, खाद्य प्रबंधन से पूर्व एक चीज में और इसमें जोड़ना चाहूंगा, जब आप रुपाई से भी पूर्व जब आपने खेत की तैयारी करी थी, उस समय में आपको मिट्टी जांच करनी चाहिए। मिट्टी जांच से आपको आपके खेत के अंदर कितनी मात्रा में खाद डालना है वहां पे आपको रिपोर्ट मिलेगी। जो रिपोर्ट आपको वहां पे प्राप्त हुई है, उस हिसाब से आप अपना जो है रसायन का
1: बिल्कुल सही बात
0: नियंत्रण
1: बताई
0: करें।
1: सौरभ जी आपने। और वैसे भी मिट्टी की जांच तो सरकार के द्वारा निशुल्क करवाई जाती है
0: जी
1: और सभी प्रगतिशील किसान आज के समय में मिट्टी की जांच करवा रहे हैं।
0: हाँ, और एक बात, किसान साथी क्या समझते हैं कि 1 साल मैंने क्या किया, इस वर्ष मैंने 1 कट्टे का खाद लगाया है, अगले वर्ष उसको दोहरी कर देते हैं, यानी 2 बार दुगना लगाते हैं उसको। 1 कट्टे को किसान सोचता है अगले साल 2 कट्टे से दुगनी पैदा आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान को भ्रमित किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान नियंत्रित रूप से ही अपना खाद का इस्तेमाल करें, जितने भी परामर्श है वही इस्तेमाल करें। आप रिजल्ट हमारे आमतौर पर किसान, मैं भी एक किसान हूँ, किसानों के बीच बैठता हूँ, तो आमतौर पर पता चलता है कि मैंने तो फलानी चीज दी थी, बातें में धान कारो पर गो, आमतौर पर किसान ऐसे ही बोलता है। तो ऐसा नहीं है, रिजल्ट का मतलब धान का काला पड़ना नहीं है, रिजल्ट का मतलब उसका आनुवंशिक विकास है।
1: यानी मिट्टी की जांच के अनुसार खाद प्रबंधन करें, अति खाद या अल्प खाद ना करें कि आप खाद बहुत आवज हो गई या खाद हमने कम
0: कम
1: डाल
0: डाले
1: दी, ऐसा ना हो। सौरभ जी, इसी के साथ आप ये समझाइए कि हमारी जो फसल बढ़ रही है तो बढ़ती हुई फसल में कीट लग जाते हैं, रोग लग जाते हैं, उनका प्रबंधन हमें कैसे करना चाहिए? और जैविक और रासायनिक दोनों ही तरीके हमें समझाइए कि दोनों में क्या अंतर है, क्या हम जैविक में प्रयोग कर सकते हैं और किस प्रकार से हम रासायनिक खाद का प्रयोग करें।
0: जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारा नुकसान यानी कीट प्रबंधन के लिए, रोग प्रबंधन के लिए जब हमारा नुकसान आर्थिक हानि की स्तर तक पहुंच जाए, तब उसके बाद हमें आवश्यकता पड़ती है रासायनिक खादों की। आर्थिक क्षति स्तर से यदि हमारा स्तर कम है, तब आप जैविक दवाओं के ऊपर जा सकते हैं। जैविक दवाओं में जैसे कीट के लिए आप ब्यूवेरिया वेशियाना का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन कीटनाशी है, मैं भी इसको इस्तेमाल करता हूँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। रोग प्रबंधन के लिए जैविक में बात करें तो ट्राइकोडर्मा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सीडोमोनास का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी दवाओं का आप जैविक में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नीम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने घर पे बनाई हुई जैसे आग से बनाई हुई दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी दवाएं आप जैविक में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आप रासायनिक की तौर पर जाएं तो आप बाजार से जाके आप रसायन आमतौर पर मिल जाते हैं, आप अच्छे कंपनियों के अच्छे उत्पादों का एक पक्के बिल के साथ लेके आए, उनको इस्तेमाल करवाएं।
1: धान की खेती पानी की खेती, जल की खेती मानी जाती है, यानी कि सिंचाई धान की खेती में बहुत आवश्यक है। तो धान की खेती में हमें सिंचाई में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
0: जी, आमतौर पर किसान मानते हैं कि धान जल की खेती है, पानी की खेती है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन पूर्ण तरीके से सहमत नहीं हूँ। किसान आमतौर पर क्या करते हैं कि अपने फसल में लगातार पानी खड़ा रखते हैं, जिससे उसमें कीचड़ की समस्या बनती है और उसके अंदर जड़ों का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। तो मैं यही उनको बता

0: बताना चाहूंगा कि जल मांग के हिसाब से आप जल आपूर्ति करें, आप अनावश्यक पानी ना दें जिससे कीचड़ के हालात बनते हैं। धान पानी की खेती है, कीचड़ की खेती नहीं है। इस चीज़ को गांठ बांध लें, अपने जहन में डाल लें कि आप ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, आप एक सीमित मात्रा में पानी दें।
1: सौरभ जी, जब फसल तैयार हो जाती है तो हमें कटाई, मड़ाई और भंडारण करना होता है। तो फसल जो हम धान की ले रहे हैं, उसमें हम किस प्रकार से कटाई करें, मड़ाई करें और भंडारण कैसे करें, इसे समझाइए।
0: जी, कटाई से पूर्व ये सुनिश्चित करें कि आपने पानी कब दिया है। अगर आपको कटाई अगले 10 दिन में करनी है, तो आप 15 से 20 दिन पहले पानी का देना बंद करें, जिससे क्या होगा कि फसल आपकी पकने लग जाएगी, उसके बाद आप उसमें कटाई करें। कटाई करने के बाद आप उसको ज़मीन पर रखें, उससे क्या होगा, उसमें सूखेगी वो, उसमें अत्यधिक मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, अत्यधिक उसमें नमी नहीं होनी चाहिए, या आपका फसल जो आपने निकाला है वो सड़ने जैसा महसूस ना हो। उसके बाद आप उसको भंडारण से पूर्व ये जरूर सुनिश्चित करें, आप उसको एक किसी पॉलीशीट पर या किसी फर्श पर सुखा कर ही उसको भंडारण करें, जिससे उसकी नमी कम हो जाए और आपका धान लंबे समय तक भंडारण हो सके।
1: सौरभ जी, खेती में पराली एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। पूरे देश में इस समय पराली पे प्रतिबंध है। तो आप हमें ये बताइए कि धान की खेती में हमें पराली प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए?
0: जी, आमतौर पर किसान अपने खेत में ही पराली को जलाकर उसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा, पराली जैसा खाद आपके घर में जो गाय गोबर है उससे भी बढ़िया है हमारी पराली का खाद। तो आप पराली को किसी गड्ढे के अंदर डालें, उसके अंदर थोड़ा सा जो है गोबर और अन्य जैविक चीज़ें जैसे लकड़ियाँ, टहनियाँ आदि चीज़ों के साथ उसको आप डालेंगे, तो आने वाले साल में आपके लिए बेहतर से बेहतरीन आपको खाद आपको उपलब्ध होगा। उसके अलावा आप पराली के लिए अपने गाय भैंसों के लिए चारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो पराली के लिए गवर्नमेंट भी हमारी बायोडीजल प्लांट खोल रही है, पराली आप बायोडीजल प्लांट में भी दे सकते हैं, तो पराली भी एक तरीके से आय का स्रोत अब बन चुकी है।
1: धान की खेती से जुड़ी हुई आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी, तमाम जानकारियाँ दी, अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम।
2: किसान भाइयों, अभी आप धान की उन्नतशील खेती कैसे करें विषय पर सौरभ उपाध्याय से लोकेंद्र पाठक की बातचीत सुन रहे थे। लेते हैं एक अंतराल, जिसके बाद जानेंगे आगरा और उसके आसपास के मौसम का हाल।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: किसान भाइयों, विगत 24 घंटों में आगरा और उसके आसपास अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगामी 24 घंटों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। लेते हैं एक अंतराल, जिसके बाद जानेंगे आगरा मंडी में अनाजों के भाव।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आइए अब जान लेते हैं आगरा मंडी में अनाजों के भाव। गेहूं 3050 से 3100 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 2000 से 2050 रुपए प्रति क्विंटल,

मक्का 1850 से 1900 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों 6500 से 6800 रुपये प्रति क्विंटल, जौ 2550 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, फसल से खूब पैसे कमाएं, जैविक फसल उगाएं, इसी उम्मीद के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी उत्कर्ष कुमार पांडे की राम राम।

अभी हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम्य लोक। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्रमिक साथियों का दैनिक कार्यक्रम मजदूर।

श्रमिक बहनों और भाइयों, आप सभी को पूनम जैन का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा कार्यक्रम मजदूर मंडल में। साथियों भाई, देखिए आज के कार्यक्रम का विषय जानते ही मैं खो गई अपने बचपन की मीठी मीठी यादों में, उन यादों में जो शायद सभी की जिंदगी के सबसे अनमोल और खुशनुमा पल रहे होंगे। वो यादें जब अपने दोस्तों के साथ घंटों घंटों बाहर खेलते थे, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता था भाई। बस स्कूल से आकर जल्दी जल्दी काम पूरा करके निकल पड़ते थे खेलने के लिए, तरह तरह के नए नए खेल बनाने के लिए और नए नए खेल बूझने में। और भाई अगर गर्मी की छुट्टियां हैं फिर तो बस पूछो ही मत, उसमें जो मस्ती और आज़ादी मिलती थी ना, कि नानी के घर जाकर मामा मौसी के बच्चों के साथ मिलकर जो खुशी होती थी ना, वो तो भाई पूरे साल की पढ़ाई की जैसे थकान ही उतार देती थी। और अगर आज की भाषा में कहें तो हम इन छुट्टियों में पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाते थे। और साथियों मैं देखिए आगे बढ़ने से पहले हम भी रिफ्रेश होते हैं और पूछते हैं आज का सवाल। और सवाल ये कि सूर्य की गति के कितने चरण होते हैं? तो भाई बूझिए आप इसका जवाब और सोचिए, और इसी के साथ सोचिए आजकल के बच्चों के बारे में भी। अब हम जब आजकल के बच्चों को देखते हैं तो लगता ऐसा है कि जैसे कि वो उम्र से पहले ही बड़े हो गए हैं, उन पर तमाम तरह के बोझ और उम्मीदें लाद दी गई हैं। पहले स्कूल गए, उसके बाद आते ही ट्यूशन, फिर कोई ना कोई एक्टिविटी क्लास, यानी कि हर काम जो है वो समय सीमा के अंदर ही उन्हें भागते दौड़ते पूरा करना है। ऐसा लगता है जैसे कि एक मशीनी ज़िंदगी जी रहे हैं आजकल के बच्चे। ऊपर से भाई बढ़ती हुई प्रतियोगिता और एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ने तो जैसे हमारे बच्चों को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी दबावों में डाल रखा है। और नतीजा क्या कि भाई सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश में हमारे अपने बच्चे अपना बचपन ही खोते जा रहे हैं। और ऊपर से आजकल के आधुनिक गैजेट्स, मोबाइल, प्लेस्टेशन और तमाम तरह के डिजिटल साधनों ने तो जैसे उनका बाहर निकलना ही बंद करवा दिया है। साथियों जबकि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि 5-7 साल तक के बच्चों को उनका बचपन

खुलकर जीने दें, मौज मस्ती करने दें, उन्हें बाहर बाग बगीचों में प्रकृति के नज़दीक रहने दें, पर तभी तो वो अपनी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता को बढ़ा पाएंगे। अरे भाई देखिए, हम भी तो स्कूल जाते थे, बचपन में पढ़ते लिखते थे, तमाम तरह के खेल खेलते थे और हर काम में अपनी कल्पनाओं के घोड़े भी दौड़ाते थे, और इसी के ज़रिए कई कई बार तो नई नई चीज़ें और विचार भी हम सीख लेते थे, खोज लेते थे। पर भाई अब तो ऐसा लगता है जैसे कि हर ज्ञान हर जानकारी के लिए हमारे बच्चे इंटरनेट के गुलाम से हो गए हैं, और इसी वजह से प्रभावित हो रही है उनकी याददाश्त भी, उनकी एकाग्रता, उनकी दिमागी सक्रियता और कल्पनाशीलता भी। और हो भी क्यों ना भाई, जब हर विषय से जुड़ी जानकारी इंटरनेट पर हर समय तैयार मिलती है तो फिर दिमाग क्यों लगाया जाए। पर साथियों, ये जो स्थिति है ना, बहुत ही भयावह है, खतरनाक है, जिसके बारे में हमें अभी से सोचना पड़ेगा। और अगर बात करें अपने श्रमिक साथियों के बच्चों की, तो स्थिति और भी ख़राब है। कभी माता पिता की उदासीनता, तो कभी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ तले छोटे छोटे बच्चे जगह जगह काम करते दिख जाते हैं। बेशक देश में बचपन बचाने के तमाम अभियान चलते हैं, तमाम कानून बनते हैं, पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब ऐसे में बच्चों की पढ़ाई, उनकी सेहत, खेल कूद, कला कौशल के विकास के लिए सरकार के साथ साथ हम सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, अपने श्रमिक वर्ग में जागरूकता लानी होगी, उनके बेहतर भविष्य के लिए बनी योजनाएं जो हैं उन तक पहुंचाने में हमें मदद करनी होगी, तभी हमारे साथियों के बच्चों का बचपन भी बेहतर बनेगा। और साथ ही साथ हमें भी थोड़ा सा बदलना होगा, अपने बच्चों के ऊपर से अपनी अपेक्षाओं का बोझ उतारना होगा, उनके बचपन को खुलकर जीने दें, उन्हें वही मौके देने होंगे जैसे कि हमें अपने बचपन में मिले थे। भाई तभी तो हम अपने अनमोल बचपन को कभी भूल ही नहीं पाते। और अगर बारिश का मौसम है तो भाई बहुत ही याद आती हैं वो कागज़ की कश्ती और बारिश का पानी।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: श्रोताओं, आप सबका फिर से स्वागत है कार्यक्रम मजदूर मंडल में और आपके साथ मैं हूँ पूनम जैन। साथियों, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से बच्चों के बचपन को खुशनुमा बनाएं, और बिल्कुल इसी तरह ज़रूरी है उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों को समझना भी और समझाना भी, और न केवल बच्चों के लिए बल्कि हम सभी को यातायात से जुड़े सड़क सुरक्षा और नियमों को क्यों अपनाना चाहिए, इसी पर आज विस्तार से रोशनी डाल रहे हैं

0: विनोद कुमार अग्रवाल।
1: भारत सरकार द्वारा सड़क पर सुरक्षित रूप से वाहन चलाने के लिए कुछ यातायात के नियम बनाए हैं, जिनका पालन करके यातायात में सावधानी रखी जा सकती है। आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें रोज सैकड़ों व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होते हैं, सैकड़ों लोग घायल होते हैं और सैकड़ों लोग मरते हैं। ऐसा कोई भी दिन बाकी नहीं रहता है जब सड़क दुर्घटना के बारे में समाचार पत्र या न्यूज़ चैनल पर कोई खबर न प्रसारित हो। दुर्घटना के अधिकतर मामले ड्राइवरों की असावधानी व लापरवाही से होते हैं। आजकल छोटे बच्चे भी ड्राइविंग करते हैं, जबकि उन्हें यातायात की न तो कोई समझ होती है और न वह यातायात के नियमों का पालन ही करते हैं। अगर व्यक्ति सावधानी पूर्वक सड़क पर वाहन चलाए तथा यातायात के नियमों का पालन करे तो स्वयं व दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। यातायात के नियमों का पालन करने के लिए कुछ नियम ऐसे हैं जिनका ध्यान रखना वाहन चालक के लिए अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम वाहन चालक को अपने वाहन को पार्किंग में इस प्रकार से खड़ा करना चाहिए जिससे दूसरे वाहन चालकों को वाहन पार्किंग में खड़ा करने में कोई असुविधा न हो। इसके अलावा जब भी वाहन चालक सड़क पर चलें तब किसी भी वाहन चालक से प्रतिस्पर्धा न करें और बिना किसी उचित कारण के किसी व्यक्ति से वाहन आगे निकालने की रेस ही चलानी चाहिए। साथ ही वाहन चलाते समय हॉर्न का उपयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। अधिक हॉर्न बजाने से वातावरण में ध्वनि प्रदूषण फैलता है। यातायात के नियंत्रण हेतु हमारी सरकारों द्वारा हर चौराहों पर यातायात पुलिस कर्मियों की व्यवस्था की है तथा हर चौराहों पर यातायात नियंत्रक सूचक निवारण व नियंत्रण हेतु लाल पीली हरी लाइटें लगाई जाती हैं। हरी लाइट रास्ता पार करने के लिए निशान है तथा लाल निशान चौराहे पर रुकने के लिए निशान है। पीला निशान तैयार रहने के लिए हमें निर्देश देता है। इन सभी लाइटों से हर चौराहे पर भीड़ नियंत्रित होती है तथा जाम से छुटकारा मिलता है और यात्री सुगमता से चौराहों को पार करते हैं। यातायात नियंत्रण तथा वाहनों द्वारा की जाने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा मोटर यान अधिनियम 1988 बनाया है, जिसमें समय समय पर कई संशोधन किए गए हैं। इसी अधिनियम में यातायात नियंत्रण को भी परिभाषित किया गया है तथा यातायात के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों व वाहन चालकों को उचित दंड दिए जाने की व्यवस्था की गई है। कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर किसी मोटर वाहन को अनियंत्रित गति से नहीं चलाएगा, परंतु ऐसी गति सेना या पुलिस द्वारा युद्धाभ्यास के दौरान खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने के मामलों में लागू नहीं होगी। यातायात को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार या उसका प्राधिकृत कोई प्रतिनिधि मोटर यान अधिनियम की धारा 112 के अंतर्गत यातायात विनियमन के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक चिन्ह को सार्वजनिक स्थान पर लगाए जाने का अधिकार है तथा इस प्रकार लगवाए गए सार्वजनिक चिन्हों को चालन विनियमन प्रयोजन के लिए कुछ सड़कों को मुख्य सड़कों के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा सुविधा अनुसार जगह जगह पर स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श कर पार्किंग हेतु ऐसे स्थानों का निर्धारण किया जाएगा जहां पर सार्वजनिक वाहन अथवा अन्य सभी प्रकार के वाहन एक निश्चित समय के लिए खड़े किए जा सकेंगे। धारा 119 के अनुसार कोई भी मोटर वाहन का प्रत्येक ड्राइवर किसी आज्ञापक चिन्ह द्वारा दिए गए चिन्ह के अनुरूप केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए चालन नियमों के अनुरूप चलाएगा तथा उन सभी नियमों का पालन करेगा जो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे जो उस समय किसी सार्वजनिक स्थल पर यातायात विनियमन करने के लिए लगा हुआ हो। कोई वाहन चालक बाईं ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले ऐसे किसी मोटर यान को किसी सार्वजनिक स्थान में तभी चलाएगा जब उसमें विभिन्न प्रकार की यांत्रिक या विद्युत संकेतक लगी हुई हो और वह चालू हालत में हो या न हो। वाहन का ड्राइवर ऐसे संकेत ऐसे अवसर पर अवश्य करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा भेद किए जाए। इसी प्रकार दाईं ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले मोटरयान की दशा में यान में लगी प्रकृति की यांत्रिक या विद्युत युक्ति द्वारा दिया जाएगा। धारा 122 के अनुसार किसी मोटर वाहन का भार साधक किसी यान या ट्रेलर को किसी सार्वजनिक स्थान पर अपने वाहन को इस प्रकार से खड़ा नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक स्थान पर यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई खतरा बाधा अथवा असुविधा उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी में बिना वैध टिकट के बिना पैसा चुकाए यात्रा करने का अधिकारी नहीं होगा तथा कोई भी

0: वाहन चालक अपने वाहन में किसी भी व्यक्ति को अपने वाहन में किसी ऐसे स्थान पर कोई वस्तु रखने से इनकार कर सकता है जहां पर सामान रखने अथवा खड़ा करने से वाहन के नियंत्रण में परेशानी पैदा हो। कोई भी वाहन चालक किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना वाहन को बंद किए अथवा किसी सक्षम व्यक्ति को ड्राइवर सीट पर बैठाए बिना खड़ा नहीं करेगा। कोई भी दो पहिया चालक अपनी मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा तथा दो पहिया वाहन चालक किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना हेलमेट पहने वाहन नहीं चला सकेगा। कोई भी दो पहिया या चार पहिया वाहन चालक शराब पीकर वाहन नहीं चलाएगा। अगर कोई वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा और चालक को पुलिस अभिरक्षा में उचित कार्रवाई भेज दिया जाएगा, जहां न्यायालय द्वारा उसे आर्थिक या कारावासी दंड से दंडित किया जाएगा। कोई भी वाहन चालक दो पहिया या चार पहिया या अन्य व्यावसायिक वाहनों को बिना बीमा के नहीं चलाया जा सकेगा। किसी प्राधिकृत परिवहन या यातायात अधिकारी द्वारा वाहन का बीमा मांगने पर उसे प्रस्तुत करना होगा। अगर सड़क दुर्घटना होती है तो वाहन चालक को घायल व्यक्ति को स्वयं अथवा किसी के सहयोग से चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराएगा तथा थाने पर ऐसी सूचना देगा। इन सभी परिस्थितियों के द्वारा यातायात को नियंत्रित रखा जा सकेगा।
1: श्रोताओं, अभी हमने विनोद कुमार अग्रवाल से जाने यातायात और सड़क सुरक्षा से जुड़े जरूरी नियम, जिनका पालन करने से हम खुद भी सुरक्षित रहते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रखते हैं। चर्चा अभी और भी है, पर आइए उससे पहले लेते हैं छोटा सा अंतराल।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, अभी बात चल रही थी नियम और कायदों पर। तो भाई, केवल हम ही नहीं बल्कि हमारी प्रकृति भी अपने तय नियमों पर ही चलती है। जैसे कि सूर्य की गति लगभग 6 महीने के लिए उत्तर दिशा की ओर, जिसको कि उत्तरायण कहते हैं, और 6 महीने के लिए दक्षिण दिशा की ओर रहती है, जिसे कि हम दक्षिणायन कहते हैं। तो साथियों, यही है हमारे आज के सवाल का जवाब भी। और कल से ही देखिए सूर्य का दक्षिणायन गति भी शुरू हुई है। तो आज ज्ञान सागर के जरिए जानते हैं कि ये दक्षिणायन क्यों खास है। साथियों, हमारी संस्कृति में सूर्य का दक्षिणायन होने का मतलब है देवताओं की रात्रि, क्योंकि दक्षिणायन होते सूर्य की जो किरणें हैं ना, वो कमज़ोर पड़ती हैं। ऐसे में ये जो समय है वो है व्रत उपवास, दान पुण्य और सत्संग साधना के लिए खास रहता है। और इसी समय साथियों चातुर्मास भी लगता है, यानी कि 4 महीनों के लिए सभी मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। और कहा जाता है कि भगवान इन दिनों योग निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि हर मांगलिक कार्य बंद। वैसे साथियों देखिए, हमारे पूर्वजों ने इसके वैज्ञानिक आधार भी दिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये समय होता है वर्षा काल का, और पुराने समय में तो ना तो कोई पक्की सड़कें होती थी, ना कोई पक्का निर्माण होता था, और ना ही यातायात के साधन होते थे। तो वर्षा काल में हर तरफ पानी और सांप बिच्छू कीट पतंगों का प्रजनन काल भी रहता था। तो ऐसे में ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों में ही रहना पसंद करते थे, ज़्यादा इधर से उधर नहीं जाते थे। और उन लोगों को समझाने के लिए हमारे जो पूर्वज थे वो हर काल का धार्मिक आधार भी देते थे, ताकि सभी का जीवन

जीवन जो है वो सुरक्षित रहे। और भाई जब बात चल रही है सुरक्षा की, तो बारिश के मौसम में सुरक्षित रहने के कुछ सेहत टिप हमारे पास भी हैं। देखिए, बारिश में त्वचा संबंधी बहुत सी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं और उमस इतनी रहती है कि उसकी वजह से शरीर पर घमौरियाँ और खुजली होने की वजह से बहुत परेशानी होती है। तो ऐसे में नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर उसे ठंडा कर कर नहाने से त्वचा के ये जो सारे संक्रमण हैं वो खत्म हो जाते हैं। और फिर भी अगर फोड़े फुंसी हो जाए तो उस पर भी नीम की छाल को घिसकर लगाया जाए तो फिर तुरंत ही आराम मिलता है। तो भाई चलते चलते हम तो यही चाहेंगे कि आप सभी हर मौसम में सेहतमंद रहें, हर मौसम का आनंद उठाएं और ज़िंदगी को खुश रहकर गुनगुनाते हुए जिएं। और इसी बात पर विश्वास करती है मेरी घरेलू सहायिका भी। और भाई इस बार तो वादा भी करा लिया आज अपनी पसंद का गीत सुनवाने का। तो भाई आइए सुनते हैं बबली कुमारी और उसकी बहन पूजा कुमारी की पसंद का ये गीत।

तो साथियों, इसी तरह गाते गुनगुनाते हंसते मुस्कुराते आप सबकी जिंदगी बीते, इसी कामना के साथ इजाजत दीजिए। अपनी साथी पूनम जैन को नमस्कार।

अभी हमारे श्रमिक साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम मजदूर मंडल। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

0: साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना रचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर एक पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों और अन्य व्यवसाय

0: से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरण रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 अगस्त तक चलेगा। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री ट्रेन की टक्कर में दो स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे इस मामले में एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पे महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पे राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today laid the foundation stone and inaugurated multiple development projects in Jalandhar, Punjab, worth over 5,470 crore rupees. The projects worth over 5,470 crore rupees aimed at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. The Prime Minister inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said the NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier and providing them with new opportunities for progress. He said it is their endeavour to ensure that every family, whether poor or middle class, receives the best possible facilities, and this spirit of Nagarik Devo Bhava is reflected in the government's work.
2: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: Earlier today, the Prime Minister flagged off India's first hydrogen-powered train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station in Haryana. The Prime Minister also laid the foundation stone and dedicated development projects worth over 14,000 crore rupees, including national highway projects, including Delhi Amritsar Katra Expressway, which will reduce travel time between Delhi and Katra to about 6 hours. Speaking on the occasion, Railway Minister Ashwini Vaishnaw called the launch of the country's first hydrogen-powered train a historic achievement, saying it reflects India's resolve to develop indigenous hydrogen technology. The Prime Minister launched several development projects in key areas, including the health sector in Chandigarh, and addressed a gathering. Ahead of the monsoon session of Parliament, a meeting of the group of ministers was held in New Delhi today. Union ministers Amit Shah, Rajnath Singh, Rajiv Ranjan Singh, Kinjarapuram Mohan Naidu and Kiran Rijiju were present in the meeting. During the meeting, the leaders chalked out the strategy for the upcoming parliamentary session. The monsoon session of Parliament will commence

गुलशन चहकाए महकाए, भारत की सारी भाषाएं। गुलशन चहकाए महकाए, देश प्रेम का।

0: मिलकर भाषा धर्म निभाए।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में अभी आप सुन रहे थे शीलेंद्र कुमार वशिष्ठ से काव्य पाठ। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7:18 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में लखनऊ केंद्र से।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को किया रवाना। जालंधर से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शामली को दी 581 करोड़ रुपए की 89 परियोजनाओं की सौगात। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत लखनऊ से यूके के लिए आज भेजी गई 64 आमों की पहली खेप। और प्रदेश में उमस से लोगों को कल से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ भारतीय रेल के इतिहास में बड़ा कदम है।
2: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जिंद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अब ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो इसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे, और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
1: इसके बाद प्रधानमंत्री ने पंजाब के जालंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1570 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों समेत 20 राज्यों में पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें लखनऊ के ऐशबाग जंक्शन सहित पनकीधाम, विंध्याचल, फतेहपुर, शामली, मोदीनगर और धामपुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अमृतसर वाराणसी रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इस सेवा से भारत के 2 सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री के ग्रीन ग्रोथ के संकल्प को नई गति देने के साथ ही विकसित भारत की यात्रा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बिजनौर में 1003 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिजनौर की बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें 100% रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है।
3: आपने डबल इंजन सरकार के कार्य को पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा है। आपने देखा होगा पहली बार हो रहा है विकास और समृद्धि का लाभ कैसे मिलता है। इस डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आने के तत्काल बाद सबसे पहले काम किया था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का कार्यक्रम, कृषक दुर्घटना

0: बीमा योजना, भेदभाव कोई नहीं, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शामली के कैराना में 581 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 89 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने शामली और कैराना के बदलाव को रेखांकित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार के सुरक्षा मॉडल, एक्सप्रेसवे की रफ्तार और गन्ने की मिठास से यह क्षेत्र देश दुनिया में चमक रहा है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल्स पार्क शामली में बनने जा रहा है, जिससे 8,000 युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा।
0: यहाँ पे प्रदेश का पहला एकीकृत निजी टेक्सटाइल पार्क यहीं पे बनने जा रहा है और बहनों भाइयों 8,000 नौजवानों को उसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार प्राप्त होगा। कि ये कार्य इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि आपका समर्थन हमारी सबसे बड़ी आज की ताकत है।
1: मुख्यमंत्री ने गाजियाबाद में 868 करोड़ रुपए की लागत की 90 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले में पुलिस को आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की 39 घंटे की कस्टडी रिमांड मिली है। कल पुलिस लाइन में दोनों का मेडिकल चेकअप होगा। इसके बाद एसओजी कार्यालय में पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत उत्तर प्रदेश से यूनाइटेड किंगडम के लिए ताजा चौसा आमों की पहली निर्यात खेप को आज लखनऊ से रवाना किया गया। प्रदेश के उद्यान और कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एक फ्लैग ऑफ समारोह में इस खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस खेप में 1200 किलोग्राम चौसा आमों को यूनाइटेड किंगडम भेजा गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों की पहुंच अब विदेशी बाजार तक हो गई है।
2: योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर राज्य की उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचा करके किसानों का मूल्य संवर्धन किया जा रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि राज्य के किसानों की आमदनी दोगुनी की जाए। इस दृष्टि से भी उत्तरोत्तर हमारे उद्यान विभाग के द्वारा आम के साथ साथ अनेक फसलों को दुनिया की बाजारों तक पहुँचाया जा रहा है।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के लगभग 1500 से अधिक माई भारत युवा स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। सभा को संबोधित करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं से कर्तव्य भाव, सेवा और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से प्रेरित होकर 2047 तक विकसित भारत के निर्माता बनने का आह्वान किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज का 21वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को 26 पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि बेटियां नए भारत में नारी शक्ति का प्रतीक बन रही हैं।
3: यह सुखद है कि हमारी बेटियां निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। यह नए भारत की नई तस्वीर जहां नारी शक्ति भागीदार नहीं बल्कि नेतृत्व का प्रतीक बन रही। मैं सभी पदक विजेताओं, उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों और उनके टीचर्स को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।
1: आगामी श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन व्यापक तैयारियां कर रहा है। इसी क्रम में सुल्तानपुर की पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने बताया कि कांवड़ मार्गों पर शुद्ध पेयजल, सुचारू यातायात और ढाबों पर स्वच्छता के साथ प्रमुख शिवालयों और घाटों पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं।
4: जो तैयारियां उनको हमने 3 से 4 भागों में बांट रखा है, जैसे रूट्स की तैयारियां, घाट पे क्या तैयारियां रहेंगी और जो हमारे मुख्य शिवालय शिव मंदिर है उन सब में किस तरीके की व्यवस्था रहेगी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इत्यादि में हम क्या व्यवस्थाएं करनी है, जो सर्वे है उसको करके वर्तमान में अभी सभी थाना क्षेत्रों को सभी CEOs को अपने अपने SDM के साथ इसमें मीटिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है।
1: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में इंडियन पैरा जूडो

अकादमी द्वारा आयोजित जूडो महाकुंभ स्टेट चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने व्यायाम और खेल के महत्व पर प्रकाश डाला। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 1100 जूडो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रदेश में कल से मॉनसून के और सक्रिय होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ लोगों को उमस से राहत मिलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा से देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को किया रवाना। जालंधर से प्रदेश के 7 रेलवे स्टेशनों सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। शामली को दी 581 करोड़ रुपए की 89 परियोजनाओं की सौगात। भारत और यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत लखनऊ से यूके के लिए आज भेजी गई 64 आमों की पहली खेप। और प्रदेश में उमस से लोगों को कल से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हो चुके हैं। वक्त हो चुका है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, न्याय केवल एक शब्द नहीं बल्कि वह विश्वास है जिसके सहारे समाज खड़ा रहता है, और जब न्याय मिलता है तो केवल एक व्यक्ति नहीं जीतता बल्कि संपूर्ण मानवता मुस्कुरा उठती है। लेकिन जब न्याय देर से मिलता है तो केवल समय नहीं बीतता, कई सपने भी टूट जाते हैं। आज ये बातें हम क्यों कर रहे हैं जानते हैं श्रोताओं? क्योंकि आज है 17 जुलाई, और 17 जुलाई का दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में। तो श्रोताओं, आज है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, इसी विषय में हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। पहले आपको सुनवाएंगे ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, 17 जुलाई यानी अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, आज का ये दिन हमें याद दिलाता है कि कानून का उद्देश्य केवल अपराधी को नहीं बल्कि निर्दोष की रक्षा करना, मानव गरिमा की रक्षा करना और पूरी मानवता में न्याय के प्रति विश्वास को बनाए रखना है। श्रोताओं, 17 जुलाई का ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन 1998 में रोम संविधि को अपनाया गया, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा। और श्रोताओं, इसी की याद में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस दुनिया भर में न्याय, मानव अधिकार और कानून के महत्व की याद दिलाता है।

न्याय किसी अमीर या गरीब का नहीं होता, न्याय किसी जाति या धर्म का नहीं होता, किसी भाषा या होता। सच्चा न्याय केवल सत्य का होता है। न्याय उस माँ की उम्मीद है जो अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहती है। न्याय साहस है उस बेटी का जो अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है। न्याय आखिरी उम्मीद है उस गरीब की जो सच के सहारे जीता है। और न्याय पहचान है उस समाज का जहाँ हर व्यक्ति बराबर माना जाता है।

श्रोताओं कल्पना कीजिए, यदि इस दुनिया में न्याय न होता तो सच बोलने वालों को कौन सुनता, कमजोरों की रक्षा कौन करता। दोस्तों, न्याय केवल सजा देने का नाम नहीं बल्कि हर इंसान को उसका अधिकार दिलाने का नाम है। दोस्तों, जब किसी बेगुनाह की आंखों से आंसू

गिरते हैं तो पूरी मानवता रोती है। जब किसी पीड़ित को न्याय मिलता है तो पूरी मानवता मुस्कुराती है। न्याय केवल अदालतों में नहीं होता, न्याय हर उस दिल में जन्म लेता है जहां सत्य, संवेदना और समानता बसती है। जब सत्य की राह कठिन लगे, जब हर दिशा में अंधियारा जगे, तब न्याय एक दीपक बन जाता है, हर टूटा दिल फिर से मुस्कुराता है।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की। तो श्रोताओं, इस

दिन आइए आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर हम भी कुछ संकल्प लें। किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, अन्याय को देखकर चुप नहीं रहेंगे, सत्य समानता और मानवता का साथ देंगे, कानून का सम्मान करेंगे, रिश्वत और भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे। दोस्तों, तभी एक न्यायपूर्ण भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे।

दिशा देती है। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां किसी को अपने अधिकारों के लिए तरसना ना पड़े, जहां सत्य को सम्मान के लिए और न्याय हर व्यक्ति तक पहुंचे, क्योंकि न्याय के अभाव में किसी भी सभ्य समाज की कल्पना अधूरी है।

तो श्रोताओं, इन्हीं चंद बातों के साथ दीजिए अनुमति इस वादे के साथ, कल फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ। तब तक के लिए स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो साथी पूनम कुलश्रेष्ठ का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है फिल्म संगीत का। तो श्रोताओं, ये सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम महफिल कव्वाली, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे फिल्मों से कव्वालियाँ। श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली कव्वाली आइए सुनते हैं बरसात की रात फिल्म से। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, मन्नाडे और साथियों की। साहिर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है रोशन ने।

श्रोताओं, अल हिलाल फिल्म से ये गीत आपने सुना इस्माइल आजाद कव्वाल की आवाज़ में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मुगले आजम फिल्म से ये कव्वाली, लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ में। शकील बदायूनी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है नौशाद ने।

श्रोताओं, मुगले आजम फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ में। नौशाद के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे थे शकील बदायूं ने। कार्यक्रम में ये अब सुनते हैं दिल ही तो है फिल्म से ये कव्वाली, आशा भोसले और साथियों के स्वर में। साहिर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है रोशन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में बजरंगी भाईजान फिल्म से ये कव्वाली आपने सुनी इमरान अजीज की आवाज में। श्रोताओं, इन कव्वालियों के साथ ही कार्यक्रम महफिल कव्वाली यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, 8:30 हुए हैं, तो आइए एक बार फिर से आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का और सुनते हैं चित्रपट संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं बरसात फिल्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं समीर ने।

श्रोताओं, बरसात फिल्म से ये गीत आपने सुना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। समीर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, आइए फिर से एक बार सुनते हैं नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में, जीत फिल्म से।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में जीत फिल्म से ये गीत आपने सुना। इसके साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:45 में है हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से। आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
2: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
1: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
2: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
3: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल

0: में 1800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
2: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
1: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
3: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा

0: योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया

0: जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जिंद से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज नागरिक देवोभव के जज्बे के साथ हर शहरी के लिए जिंदगी गुजारने में आसानी और नए मौके फराहम करने के तई अहदबंद है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इतवार से मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। नीति आयोग ने सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया है। गुजरात आला तरीन कारकर्दगी करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। मायानाज वेस्ट इंडीज क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर्स का इंतकाल हो गया है। और भारत ने अगले महीने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में मुनक्किद होने वाले FIH खवातीन के हॉकी आलमी कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करना, मुसाफिर सहूलतों में इजाफा करना और खित्ते में माशी तरक्की को फरोग देना है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज शाम जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के मुख्तलिफ रेल और सड़क बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने तजीन नौ किए गए 75 रेलवे स्टेशनों का इफ्तिताह किया, जिनमें अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जालंधर कैंट स्टेशन भी शामिल है। जालंधर में अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत के हर शहरी की खिदमत करना, उनकी जिंदगियों को आसान बनाना और उन्हें तरक्की के नए मौके फराहम करना मरकज की NDA हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि ये NDA हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि हर कुंबा, चाहे वो गरीब हो या मुतवसित तबके से ताल्लुक रखता हो, उसे बेहतर से बेहतर सहूलतें मिलें और हुकूमत के कामकाज में नागरिक देवोभव के जज्बे की अक्कासी हो।
1: हम नागरिक देवोभव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवोभव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये रेलवे स्टेशन सभी जदीद सहूलतों से लैस हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन स्टेशनों की कायापलट का प्रोग्राम दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन तजीन नौ प्रोग्राम अमृत भारत स्टेशन स्कीम का हिस्सा है।
1: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेलवे और इत्तिलात और नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और दीगर सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिल्ली अमृतसर कटरा 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे और 6 लेन वाले जुनूबी लुधियाना ग्रीन फील्ड बाईपास की तरक्की का संग बुनियाद रखने जैसे कौमी शाहराहों के प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार के रोज पार्लियामेंट की सभी सियासी जमातों के ऐवान के रहनुमाओं की मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान हुकूमत सभी सियासी जमातों से ताउन चाहेगी ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का कामकाज खुश असलूबी से चलाया जा सके। पार्लियामेंट का मानसून इजलास 20 जुलाई से शुरू होगा जो 13 अगस्त तक जारी रहेगा। मानसून इजलास के दौरान कई अहम बिलों को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इस दौरान आज नई दिल्ली में वुजरा के ग्रुप की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में मरकजी वुजरा अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजू रंजन सिंह, किंजरापू राममोहन नायडू और किरण रिजिजू मौजूद थे। मीटिंग के दौरान लीडरों ने आइंदा पार्लियामानी इजलास की हिकमत अमली तरतीब दी।

सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 19 से 25 तारीख तक मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के सरकारी दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने बताया कि ये सरकारी दौरे जमहूरिया मोल्दोवा, जमहूरिया शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के सुदूर की दावत पर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दौरा तारीखी अहमियत का हामिल है क्योंकि किसी भी भारतीय सदर जमहूरिया के जरिए जमहूरिया मोल्दोवा और शुमाली मकदूनिया के अव्वलीन बाहमी दौरे होंगे। उन्होंने कहा कि रोमानिया का दौरा 3 से ज्यादा दहाइयों में किसी भारतीय सदर जमहूरिया का पहला सरकारी दौरा होगा। जनाब जॉर्ज ने मजीद कहा कि रोमानिया का आखिरी दौरा साल 1994 में हुआ था। जनाब जॉर्ज ने उजागर किया कि ये दौरा वस्ती और मशरकी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती हुई मसरूफियात की अक्कासी करता है। नीज खित्ते के ममालिक के साथ शराकतदारी को मुस्तहकम करने के भारत के अहद का अदा करता है। जनाब जॉर्ज ने कहा कि ये दौरा यूरोप के साथ भारत के वसीत तर ताल्लुकात और यूरोपीय यूनियन के साथ इसकी जामे शराकतदारी को भी उजागर करता है। सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस के इशारे 2026 में भारत की रियासतों और मरकज के जिर इंतजाम इलाकों के दरमियान गुजरात सबसे बेहतर कारकर्दगी करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा भी आला कारकर्दगी करने वाले के तौर पर उभरे हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया, जिसमें उन रियासतों को उजागर किया गया है जो सरमायाकारी को रागिब करने में बेहतरीन मकाम पर आए हैं। ये साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद की जानिब भारत के सफर को उजागर करता है। इशारे में तमाम 28 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 8 इलाकों का 8 सुतूनों का इस्तेमाल करते हुए तजिया किया गया, जिनमें बुनियादी ढांचा, कारोबारी माहौल, वसाइल, सरकारी पॉलिसी, जाब्ता जाति सहलकारी, इदारा जाति माहौल, मालियाती बेहतरी और माहौलियाती लचक शामिल हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला एम चंद्रबाबू नायडू के साथ 1,03,246 मुस्तफदीन को 3,216 करोड़ रुपए मालियत के कर्जे तकसीम किए। ये कर्जे आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में मुनक़िद क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ स्कीमों के तहत तकसीम किए गए। जिन शोबों के लिए ये इमदाद फराहम की गई है उनमें ज़राअत, MSMEs और हाउसिंग, तालीम, गाड़ियाँ और शमसी तवानाई के शोबे शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजारत खारजा ने आज कहा कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में भारत जापान के दरमियान बातचीत इत्मीनान बख्श तरीके से आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक सवाल का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये पोस्ट एक फर्द के राय की अक्कासी करती है और ये हकीकत से मुख्तलिफ है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जापान E20 ट्रेन सीरीज मुहैया कराएगा, लेकिन ये साल 2030 के अवाइल में ही होगा क्योंकि ट्रेन अभी तैयारी के मरहले में है। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के बारे में हुई पेशरफ को उजागर करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि तामीराती काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और साल 2027 में पहला सेक्शन ऑपरेशनल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि फरीकैन ने एक भारतीय हाई स्पीड ट्रेन से ऑपरेशन शुरू करने से इत्तेफाक किया है। नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का सफर मुनज्जम रजाकाराना खिदमत की ताकत और अपनी जात से पहले खिदमत के पायदार जज्बे की एक वाजह मिसाल है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की तस्नीफ करदा किताब RSS एट 100 ए सेंचुरी ऑफ सर्विस यूनिटी एंड सेक्रीफाइस के इजरा के मौके पर कही। तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि RSS ने खिदमत, इत्तेहाद और कौमी शऊर के नजरियात को मजबूत किया है और बेलौस खिदमत और कौम की तामीर के जरिए नस्लों को मुतासिर किया है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि तंजीम का 100 साल सफर इस बात को जाहिर करता है कि कौम की देरपा तरक्की सिर्फ हुकूमती इदारों के जरिए ही नहीं बल्कि फाल शहरी किरदार और रजाकाराना खिदमत के जरिए भी हासिल की जाती है। ईरान के पासदारान इनकलाब इस्लामी IRGC ने दावा किया है कि उसने आज शाम कुवैत और ओमान में अमरीकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाते हुए जवाबी हमले किए हैं। ईरान की सरकारी एजेंसी के मुताबिक IRGC ने एक बयान में कहा कि ये हमले ऑपरेशन नसर 2 के 11वें, 12वें और 13वें दौर के दौरान किए गए। उसने दावा किया कि ईरानी फोर्सेज ने शाम के अलतनफ खित्ते में अमरीका की खसूसी कार्रवाइयों के कमान के एक मरकज पर अचानक हमला कर दिया।

यूक्रेन में रात में किए गए रूसी हमलों में कम से कम 4 अफराद हलाक और दीगर 20 जख्मी हो गए। ओडेसा इलाकाई फौजी इंतजामिया के सरबराह ओले कीपर ने बताया कि ओडेसा के जुनूबी साहिली शहर पर रूस के एक मिसाइल हमले में 2 अफराद हलाक और दीगर 10 जख्मी हो गए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि जेप्रोजिया खित्ते में एक और हमले में मजीद 2 अफराद हलाक हो गए और 5 दीगर जख्मी हुए हैं। हुकाम ने रूसी हमलों में मुल्क के दीगर 5 खित्तों में लोगों के जख्मी होने की भी खबर दी है। चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत का इंतखाबी कमीशन ECI दुनिया के सबसे शफाफ और मोतबर इंतखाबी इदारों में से एक है, जहां दुनिया की कई जमहूरियतें भारत के इंतखाबी अमल को एक मॉडल के तौर पर देखती हैं। इंतखाबी कमीशन की जानिब से मुनक़िद ऑल इंडिया मीडिया कॉन्फ्रेंस 2026 से खिताब करते हुए आज ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में इंतखाबात आईन के तहत आजादाना तौर पर मुनक़िद कराए जाते हैं, जहां शहरियों को अपने नुमाइंदे चुनने की आज़ादी हासिल होती है। भारत के महकमे मौसमियात ने ज़ैली हिमालय मगरबी बंगाल और सिक्किम में आइंदा 2 दिनों के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश और कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में इतवार तक किसी किसी मुकाम पर शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। बिहार, मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा और शुमाल मशरकी रियासतों में कल शदीद बारिश की तवक्को है। वेस्टइंडीज के मायानास क्रिकेट खिलाड़ी सर गैरफील्ड सोबर्स का आज इंतकाल हो गया। वो 79 बरस के थे। मायानास क्रिकेटर की मौत की तस्दीक उनके फर्जंद डैनियल ने की है। मार्च 1954 से अप्रैल 1974 के दरमियान क्रिकेट के खेल में बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक सोबर्स ने 93 टेस्ट मैच खेले और 57.78 की औसत से 8,032 रन स्कोर किए। इनमें 26 सेंचुरीज और 30 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के फास्ट मीडियम बॉलर सोबर्स ने टेस्ट क्रिकेट में 235 विकेट हासिल किए हैं। उन्होंने एक वाहिद ODI भी खेला है, जिसमें उन्होंने एक विकेट लिया था। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर के दौरान 6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी थे। ये संग मील उन्होंने साल 1968 में ग्लैमॉर्गन के खिलाफ नॉटिंगम शायर के लिए खेलते हुए कायम किया था। भारत ने आज FIH खवातीन के हॉकी आलमी कप 2026 के लिए अपने 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। मिडफील्डर सलीमा टेटे इस पुरवकार टूर्नामेंट में भारतीय टीम की क्यादत करेंगी, जो 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नेदरलैंड्स में मुनक़िद होगा। गोलकीपर सविता और बिचू देवी खरीबाम ने टीम में अपना मुकाम बरकरार रखा है। इशिका चौधरी, सुशीला चानू, पुरखरमरम ज्योति और शिल्पी दाबास दिफाई पोजीशन संभालेंगी। मिडफील्ड की क्यादत सरीमा टेटे करेंगी और उनके साथ निकी प्रधान, साक्षी राणा, नेहा और दीपिका सोरेंग इस पोजीशन पर खेलेंगी। भारत की फॉरवर्ड लाइन ऋतुजा, ददोसा पिसाल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर और ब्यूटी डंगरडंग संभालेंगी। भारत को पूल डी में रखा गया है, जिसमें चीन, इंग्लैंड और जुनूबी अफ्रीका शामिल हैं। टीम 18 अगस्त को जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ और 20 अगस्त को इंग्लैंड के मुकाबले मैच से कबल हॉकी स्टेडियम में 16 अगस्त को चीन के खिलाफ अपनी मुहिम का आगाज करेगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जींद से भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज नागरिक देवोभव के जज्बे के साथ हर शहरी के लिए जिंदगी गुजारने में आसानी और नए मौके फराहम करने के तई अहदबंद है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के इजलास से कबल इतवार के रोज कुल पार्टी मीटिंग तलब की है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू इतवार से मोलदोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। नीति आयोग ने सरमायाकारी फ्रेंडलीनेस का इशारिया 2026 जारी किया है। गुजरात आला तरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली रियासत के तौर पर उभरी है। इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु आते हैं। और मायानाज वेस्टइंडीज क्रिकेट खिलाड़ी गैरी सोबर्स का इंतकाल हो गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

तो श्रोताओं, आइए शुरू करते हैं पत्रों का सिलसिला कार्यक्रम रजनीगंधा में। श्रोताओं, पटेल नगर मलोट पंजाब से ये पत्र हमें लिखा है रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने। श्रोताओं, एक और पत्र है जो हमें लिखा है सहावर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक ने। श्रोताओं, एक और पत्र है हमारे पास जो हमें लिखा है गांव कैरों पंजाब से। ये पत्र हमें लिखा है गुरुदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, बेबी अनहद और गुरु शब्बद ने। और आप सभी ने फरमाइश की है जीवन मृत्यु फिल्म के इस गीत की, जिसमें आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं जीवन मृत्यु फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, जीवन मृत्यु फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। आनंद बख्शी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में और बहुत से पत्र हैं हमारे पास, तो आइए शामिल करते हैं इन पत्रों को अपने इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, ये पत्र हमें लिखा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां ने, और आपने प्यार भरा आदाब हमें भेजा है। आपको भी हमारा प्यार भरा आदाब। श्रोताओं, एक और पत्र है फाजिलका पंजाब से। ये पत्र हमें लिखा है भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, जीवन सिंह बूक और समस्त खेड़ा परिवार। और श्रोताओं, एक और पत्र हमारे पास है जो हमें लिखा है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक और मीका विरक ने। और श्रोताओं, आप सभी ने फरमाइश की है ज्वेल थीफ फिल्म के इस गीत की, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की, गीत मजरूह का, संगीत एस डी बर्मन का। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, ज्वेल थीफ फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। मजरू की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था एस डी बर्मन ने। श्रोताओ, कार्यक्रम में और भी पत्र हैं हमारे पास जिन्हें ये शामिल करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। श्रोताओ, ये पत्र हमें लिखा है जिला धौलपुर राजस्थान से श्री नैना राम मीना, ग्राम सुनीपुर, पोस्ट उमरेह, वापा बाड़ी, जिला धौलपुर राजस्थान से। एक और पत्र है जो हमें लिखा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। ये पत्र हमें लिखा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। एक और पत्र है जो हमें लिखा है जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंडा बेलई जिला सागर से। ये पत्र हमें लिखा है लक्ष्मण रैकवार, श्रीमती विनीता रैकवार, कुमारी वैशाली वैष्णवी, अनरत रैकवार, हल्ले लल्लू, ऋषि रैकवार और बंडा ने। श्रोताओं, एक और पत्र है जो हमें लिखा है आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा ने। ये सभी फरमाइश करते हैं एक दूजे के लिए फिल्म के इस गीत की। आवाज़ें लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की हैं, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं एक दूजे के लिए फिल्म से ये गीत।

बताओ, एक तुझे के लिए फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और एचपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, वो लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में और भी कुछ खत हैं हमारे पास, तो आइए शामिल करते हैं इन पत्रों को हमारे इस कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ भटपारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा ने हमें ये फरमाइश भेजी है। एक और पत्र है जिसमें रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने अपनी फरमाइश भेजी है। श्रोताओं, ये पत्र हमारे पास है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य और परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की। और ये पत्र है अजीत नगर मलौट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह और सी एस बेगाना का। आप सभी ने फरमाइश की है जंगल लव फिल्म के इस गीत की। आवाज़ें अनुराधा पोडवाल की, समीर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं जंगल लव फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में जंगल लव फिल्म से ये गीत आपने सुना अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में। और श्रोताओं, कार्यक्रम में कुछ और पत्र हैं, जल्दी से आइए इन्हें भी शामिल करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। ये पत्र है दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी का। एक और पत्र है जो हमें लिखा है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर का। और श्रोताओं, ये पत्र है उत्तर प्रदेश लोनी से रजा अहमद, इसरत जहां, जमाल, कमाल, माहिर और बुशरा का। और ये अंतिम पत्र हमारे पास है गांव भड़भूजी आगर मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा का। तो आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत जंगली फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ में। शैलेंद्र की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

मधुरी और लता मंगेशकर फरमाइशी के आज आपके पत्र हमारे पास थे, उन सभी पत्रों को हमने शामिल किया अपने इस कार्यक्रम रजनी गंधा में और आपको सुनाया आपके फरमाइशी गीत। श्रोताओं अपने प्यारे प्यारे पत्र हमें यूं ही लिखते रहिए, हम आपकी फरमाइश गीत आपको हमेशा सुनाते रहेंगे। इसी साथ दीजिए विदा कार्यक्रम रजनी गंधा को समाप्त करने की। नमस्कार श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनी गंधा मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 10:30 हो चुके हैं, वक्त है शास्त्रीय संगीत का। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं देवाशीष चक्रवर्ती से गिटार वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग अभोगी, तो आइए सुनते हैं देवाशीष चक्रवर्ती से राग अभोगी में गिटार वादन।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे देवाशीष चक्रवर्ती से गिटार वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग अभोगी। श्रोताओं, इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारे ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होगा। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी समाचार। तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार। प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर

0: हाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक इलाके से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi launched multiple developmental projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh today. The projects aimed at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar this evening, the Prime Minister inaugurated and laid foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said,